0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नीपा चौधरी का गायन। आपने प्रस्तुत किया राग बैरागी। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेवो को 4-1 से जीत दर्ज की। जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organised. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Himanta Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. The swearing-in ceremony will be held at the Veterinary College playground in Khanapara and is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. West Bengal Chief Minister Suendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat Nabanna today. Portfolios are expected to be distributed among the 5 ministers who took the oath of office and secrecy along with the Chief Minister on Saturday at the Brigade Parade Ground. The new cabinet is expected to discuss the BJP's electoral promises. Newly elected MLAs are also expected to attend the meetings. A guard of honour will be presented to Chief Minister Subendu Adhikari at around 11 a.m. today, following which the cabinet meeting will take place. India now ranks third globally in installed renewable energy capacity. A new report by Morgan Stanley says India's renewable energy transition will help reduce external dependence, but its success will depend on how quickly the country localizes critical segments such as solar cells, wafers and polysilicon. According to data from the Ministry of New and Renewable Energy, domestic solar module capacity has nearly doubled from 38 gigawatts in March 2024 to 74 gigawatts in March 2025. Solar cell capacity has also increased from 9 gigawatts to 25 gigawatts. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav will release 2 cheetahs into the wild at Kuno National Park in the Gwalior Chambal region today. Prime Minister Narendra Modi launched Project Cheetah in September 2022 by introducing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. It was the world's first intercontinental big cat relocation project. This was followed by the arrival of 12 cheetahs from South Africa in 2023 and 9 more from Botswana in February this year. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by India Meteorological Department amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after tomorrow. Taking cognizance of the bad weather, Garhwal Divisional Commissioner Vinay Shankar Pandey has appealed to the devotees and tourists that they must get the latest information about the weather during their journey and plan it with utmost care. The Indian embassy in Madrid, Spain, has said that two Indian nationals aboard a hantavirus-hit cruise ship are safe and asymptomatic. The Dutch-flagged vessel MV Hondius, carrying around 150 people, including two Indians, arrived in Spain yesterday and anchored off the Canary Islands following the outbreak. According to the embassy, passengers disembarked in line with protocols issued by the World Health Organization and Spanish authorities. The Spanish National Center for Emergency Monitoring and Coordination said the two Indians who were working as crew members have been evacuated to the Netherlands, where they will undergo quarantine under health safety protocols. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in a last over thriller in Raipur last night. Put into bat first, Mumbai Indians posted 166 for 7 in 20 overs, riding on Tilak Verma's 57 off 42 balls. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:10 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ की आरती से। भोलेनाथ को सच्चे मन से याद करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। उनकी कृपा जीवन में सुख शांति और विश्वास भर देती है।

शिव भक्ति का रंग ही निराला है। श्रोताओं, भगवान शिव हमें सादगी, धैर्य और करुणा का संदेश देते हैं। जीवन में कठिन समय आए तो धैर्य रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति उस माँ की, जिनको भोलेनाथ अपनी जटाओं में स्थान देते हैं, जिनको अपनी जटाओं में ध्याते हैं। जी हाँ, गंगा माँ, जीवनदायिनी, हर पाप नष्ट करने वाली।

श्रोताओं, भगवान शिव का रूप शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। महादेव अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं।

0: इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं लघु वार्ता भीष्म साहनी के विचार। आलेख है डॉक्टर पूनम सिंह का और वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का।
2: हिंदी साहित्य का एक रोशन नाम भीष्म साहनी, एक अजीम लेखक जिनकी कलम ने ताउम्र जिंदगी नुमा वृक्ष के हर पत्ते बूटे पर सामाजिक यथार्थ इंसानी रिश्तों नातों की कहानियों को रचा। प्रेमचंद यशपाल परंपरा के नायाब कथाकार भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त को अविभाजित भारत रावलपिंडी में हुआ था। स्वाधीनता संघर्ष और विभाजन त्रासदी पिछली सदी के इन दो अतिवादी स्थितियों फड़फड़ाते वक्त की तमाम बेचैनियों ने उन्हें रफ्ता रफ्ता लेखक के रूप में गढ़ा। देश की परिस्थितियां और लेखक का मन कुम्हार के आवा जैसा होता है, जिसमें भीतर की मतती बेचैनियां अनेक विधाओं कहानी उपन्यास नाटक आत्मकथा के रूप में आकार लेती हैं। जमीनी संघर्ष से उपजा उनका समग्र साहित्य सांप्रदायिकता के विरुद्ध लामबंद है। कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, मुआवजे, ये इनके महज नाटक नहीं सांप्रदायिक ताकतों के प्रति उनकी शाब्दिक खुली चुनौती है। कबीर का होना भारत की सांस्कृतिक सामाजिक समरसता को पुनर्जीवित करना है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में भीष्म साहनी कहते हैं, मेरी समझ में कबीर का अध्यात्म मूलतः उनकी मनुष्य मात्र के प्रति समदृष्टि, प्रेम भाव, भक्ति भाव और व्यापक धर्मेतर दृष्टि से पनप कर ही निकला है। आजीवन प्रगतिशील विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध भीष्म साहनी लेखक के सामाजिक दायित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेखक के परिवर्तनकारी कर्तव्य बोध पर उनका कथन है, लेखक का संवेदन अपने समय के यथार्थ को महसूस करना और आंकना है, अंतर्द्वंद्व और अंतर्विरोध के प्रति सचेत होना है। इसी दृष्टि से उनकी पकड़ समाज के भीतर चलने वाले संघर्ष पर ज्यादा मजबूत होती है और परिवर्तन की दिशा का भी आभास होने लगता है। इसी के बल पर वो राजनीति से आगे होता है, पीछे नहीं। भाषाई राजनीति पर उनकी टिप्पणी है, सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देना, सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, संस्कृति के क्षेत्र में उदारता और आदर भाव, इस तरह से हम कुछ हद तक सांप्रदायिकता के जहर को फैलने से रोक सकते हैं। भीष्म साहनी अपनी लेखनी से हमारे भीतर सोए हुए रहम को जागृत करते हैं। शांति एक व्यापक मूल्य बोध है जिसे जनता और हुकूमत दोनों को अर्जित करना पड़ता है। ये अभिमत उनके पूरे कथा साहित्य का शिव तत्व है, जिसमें वो कहते हैं कि हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म जाति या सामाजिक स्तर कुछ भी हो। भेदभाव करना असभ्यता और अन्याय है। पिछली सदी ने भेदभाव और असमानता की बड़ी भारी कीमत चुकाई है। भेदभाव या असमानता एक जहरीला बीज है जो न केवल समाज को बल्कि इंसानियत को भी खोखला कर देता है। भीष्म साहनी साहित्य के महत्तर उद्देश्य को रेखांकित करते हैं। साहित्य तो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल तत्वों की तरह है जो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि सार्वभौमिक हैं। साहित्य में पाई जाने वाली ये सार्वभौमिकता उसमें निहित मानवतावाद से पैदा होती है। भीष्म साहनी के साहित्य का एक ही चटक रंग है, वो है लोक कल्याण।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 52।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार सुनेंगे, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुंभाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मंत्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः

0: च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इसी के साथ संगीतिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। संगीतिका कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भजन निशा से और संगत कलाकार थे सलीम अहमद तबले पर, विनय प्रसन्ना बांसुरी पर और दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ताजगी भरे सवेरे में। उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू हो गई होगी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग अनुराधा के साथ। और दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन सकता है। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में फिल्म मैरी कॉम का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है, उम्मीद की रोशनी की और नए सपनों की। और इसी भावना को सलाम करते हुए सुनते हैं ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, सुबह की ताजगी, थोड़ी ऊर्जा और भाई मीठे मीठे गीत, थोड़ी सी धुन, इन सब का मेल दिन को बनाता है कुछ खास।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक किताब है और रोज़ एक नया पन्ना हमें लिखना है, अपने साहस से, अपने विश्वास से।

0: आहत के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, थोड़ी देर में प्रसारित होगा समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार।

0: विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन

0: नोंग पोकांगबा, मेई तेई ओइना, प्रशांत, हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0112331 0481, 0112371 7117 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ़ करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सुचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह राजधानी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुरदनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाह अकीदत नजर करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तसव्वुर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय फजाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फजा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रुपये का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्बार।
0: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। BJP की क्यादत वाली NDA कानून साज पार्टी का मुत्तफिक तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब सरमा

0: और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजज़ीन इस में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरीट में वजीरों की कौंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: कल हलफबरदारी की तकरीब मुनाकिद हो गई, जिसके बाद अब मगरबी बंगाल की नई सरकार अपनी इंतजामिया का सफर शुरू करने को तैयार है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में अपनी पहली काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। इम्कान है कि मीटिंग में उन 5 नए वजीरों के कलमदान मुख्तस किए जाएं, जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। जराए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सरे फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजमीन के लिए 7वें तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट्स और सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साज़रकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महाज की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य आईच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज़ को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में 9 मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुपैया नए मुंतखब एमएलएज को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तिराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इन्हेसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन 2 गुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेशेनजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन पहाड़ी खत्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के

0: नाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मनसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक माहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ के तहत, जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाज़े को ख़त्म करना है, अपना जवाब भेज दिया है। ये जवाब पाकिस्तान के ज़रिए भेजा गया है जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की रना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाज़े के खात्मे और अबनाए हुरमुज़ में समंदरी इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, जो तेल ले जाने वाले जहाज़ों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सदर मसूद पेजिशियान ने कहा कि मगरिब के साथ मुज़ाकरात को हथियार डाल देने या फ़ौज वापस बुलाने के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात सदर ट्रंप से बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खीरों को ख़त्म करने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया, जो मुज़ाकरात का एक अहम मौजू है। सदर ट्रंप ने फौजी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ईरान को फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा करार दिया और दावा किया कि ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियतों को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका ईरान के ताकतवर यूरेनियम ज़खीरे पर करीबी नज़र रख रहा है। न्यूज़ डेस्क से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: फुटबॉल में आज सूचाऊ के मकाम पर 17 साल की उम्र तक के खवातीन AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेज़बान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा, जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। फुटबॉल में भारत को कल जद्दा में 17 साल की उम्र तक के AFC एशियन कप के ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की 17 साल की उम्र तक के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवाम पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल किफायत शियारी से करें। वजीर आजम ने ये बात हैदराबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की तकरीब में कही। तमिलनाडु में नौ मुंतखब वजीर आला और TVK के सरबराह विजय की हलफबरदारी से मुतालिक खबर भी अखबारों में मुश्तरका तौर से नुमाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, TVK चीफ के अलावा 9 दीगर अराकीन असेंबली की भी हलफबरदारी, कई बड़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूपी काबिना में तौसी से मुतालिक खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि यूपी काबिना में तौसी, 6 नए वुजरा शामिल, 2 नए वुजरा का प्रमोशन। एक बार फिर बतौर वजीर आला आसाम हेमंत बिस्वा सरमा 12 मई को हलफ लेंगे, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्वा सरमा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज़ के तहत ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान चीन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
3: ये या आकाश

नई दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्वरगंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विपुल कुमार राय से राग अहिरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद अख्तर हसन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विपुल कुमार राय से सितार पर राग अहिरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद अख्तर हसन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बेचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की।
3: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
2: प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर

0: पुष्पांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभाओं को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय प्रगति तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for a revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged from nearly $70 per barrel to around $126 per barrel due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
3: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
2: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the

श्रोताओं, आज आपके सफर की साथी हूँ मैं यानी मनीषा बोस। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कहना चाहूँगी कि भीड़ से अलग अपनी विशिष्ट पहचान हर दिल रखना चाहता है उसे तवज्जो मिले, भीड़ से अलग अपने नाम का मकाम मिले। तो किसी ने क्या खूब कहा है, भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनूंगा, अपनी मंजिल का मैं खुद।

जी हाँ, सूरज ने अपनी बाहें फैलाकर खूब सारी रोशनी के साथ हम सभी का स्वागत किया है और हम भी उनके इस स्वागत के साथ अपनी ज़िंदगी और अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं आज के दिन में। तो एक और लम्हा है आपके साथ बांटने के लिए और वो शब्द हैं कुछ इस तरह कि मेरी बोलियाँ गीत तेरे गुनगुनाने लगी हैं, तेरी गलियों से आने जाने लगी हैं, जिंदगी अब मुस्कुराने लगी है, जिंदगी अब मुस्कुराने लगी है। तो आपकी पसंद में और आपकी फरमाइश से लिया हुआ ये गीत है आपके लिए,

साथियों, भोर हो चुकी है और इस गीत ने भी हमें बता दिया है कि सुबह के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और देखिए, इसका इशारा हमें मिल चुका है हमारे ipradiodelhi@gmail.com जो हमारा मेल आईडी है, उस पर बहुत सारे श्रोता साथी हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है और हमें बताया कि वो हमारे कार्यक्रम के साथ बहुत मुस्तैदी से जुड़ चुके हैं। देखिए, हमारे साथ हैं पहले श्रोता साथी और वो हैं रेडियो श्रोता संघ से, नेहरू चौक पैठण से, डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद और सोनल जाधव जी। बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुड मॉर्निंग करते हुए हमारे अगले श्रोता साथी हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, ये हैं नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से। हमारे अगले साथी हैं पंजाब से, गांव नधाना से, उन्होंने हमें संदेश भेजा है, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और इन्होंने कहा है कि आपकी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसी तरह हमारे साथ हैं हमारे श्रोता साथी नेहरू नगर पांडर कवड़ा से, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बल्लार शाह और सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार डोंडी हैं, इनके साथ प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार हैं, ये कोई भी गीत सुनाने की बात लिखते हैं फ्रांसी हिसार से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया जुड़ चुके हैं। इसी तरह ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल, अविराज और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह जुड़े हुए हैं। कोई भी गीत सुनाने की फरमाइश की है जी, आपकी बात हम अपने सर आंखों पर रखते हैं। उत्तम सिंह जंघेल हैं, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल हैं। और ये हैं हमारे पास नागर कोहरा भिलाई से। बहुत शुक्रिया, इतनी दूर दूर से जब आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो सचमुच में हमें लगता है कि आप हमारे कार्यक्रम को इतने गौर से सुनते हैं और आपकी फरमाइश पूरी करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। देखिए, अगले श्रोता साथी हमारे साथ हैं, ये हैं उत्तम सिंह जंघेल। देखिए, आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने संदेश जब एक बार प्रेषित करते हैं तो बार बार ना करें, क्योंकि और भी श्रोता साथी हैं जो सुनना चाहते हैं।

है कि उनकी फरमाइश का गीत और उनके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। अगर आप दोबारा संदेश भेजते हैं तो बार बार इन बातों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार ये रिपीटेशंस होते हैं और वो श्रोता साथी जो प्रतीक्षा में हैं वो छूट जाते हैं। शाहजी बोखंडे, श्रीमती नंदा बोखंडे, हनुमान बोखंडे हैं, अम्बेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम के साथ और सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई गीत, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो बजाते हैं वो उन्हें खुद ही पसंद आता है। जी बहुत शुक्रिया, इस तरह से आप हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। बिमला अनेजा और सतीश अनेजा हैं चंडीगढ़ सिटी से, कोई भी गीत सुनने की फरमाइश आपने की है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया जी हैं, बहुत शुक्रिया। और भंवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन, देखिए बहुत सारे नाम हैं लेकिन उन नामों को हम शामिल करते जाएंगे एक के बाद एक। फिलहाल आपकी फरमाइश का ये गीत आपके लिए।

आशा भोसले की सुरीली सी आवाज़ में आप सुन रहे थे आपकी पसंद का ये गीत। और साथियों, आपकी बातों के साथ वो बातें, वो भावनाएं जो आप हमसे साझा करते हैं, वो कुछ मिलती जुलती हैं इस तरह से कि प्यार की हस्ती से रूबरू हर डगर है, कितना सुहाना अब मेरा सफ़र है, हाले दिल की तुझे खबर हो या ना हो मुस्तकिल है दिल गिला नहीं, यूँ जिंदगी अब हर जगह मुस्कुराने लगी है। देखिए, आपकी लिखी हुई ये बातें हम तक पहुंचती हैं और हम आपसे साझा करते हैं, तो इन्हीं बातों के साथ आपके संदेश भी हम शामिल करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक श्रोता साथी की पसंद पर ये गीत लीजिए।

जी हाँ श्रोता साथियों, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आपके अपने इंद्रप्रस्थ चैनल पर, और कार्यक्रम है आपकी अपनी पसंद, यानी आपकी पसंद और आपकी फरमाइश के गीतों का क्रम। और देखिए, जीवन में हमने प्यार की बात की, जीवन में हमने सकारात्मक विचारों की बात की, और दिन की, सुबह की प्यारी प्यारी अच्छी सी शुरुआत की बात की। लेकिन जब जीवन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, तो हमारे साथ एक भाव है जो हमेशा भीतर ही भीतर होता है। कई दफ़ा हम उसे बहुत गौर करते हैं और कई दफ़ा हम उसे अंदर ही अंदर रखते हैं, लेकिन हम दुनिया की आगे की दस्तूर में उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो देखिए, वो भाव होता है भक्ति का, वो भाव होता है आत्मशक्ति का। और ये आत्मशक्ति जब हमारे जीवन में होती है, जिसे हम अंदर ही अंदर तो रखते हैं, लेकिन जब बाहर से उसे महसूस करने लगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो गीत खिलता है वो होता है भक्ति का गीत। भक्ति से हमें शक्ति मिलती है और जीवन हमारा आनंद के कई छोर पाने लगता है। तो चलिए, हम भक्ति की इसी शक्ति को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत, आज के दिन में शुभारंभ करते हैं, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार का दिन हमारा समर्पित होता है भोले भंडारी को। तो ये गीत सुनकर निश्चित रूप से आप भी भक्ति के उस भाव में डूबने लगेंगे।

जी हाँ, हमारे भोलेनाथ भगवान शिव की महिमा अनंत है, अपरंपार है। और हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हैं जो भोले भंडारी के भक्त भी हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप आज के दिन इस भक्ति के भाव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि शिव आदि हैं और अंत से परे, सृष्टि के संहारक हैं और कल्याणकारी देव। तो देखिए, उनके बारे में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों में बांध सकें। शिव अपरंपार हैं, उनकी महिमा अनंत है। तो चलिए, उनकी भक्ति में डूबते हैं एक और फरमाइशी गीत के साथ आपके लिए।

भोलेनाथ की भक्ति से सजा हुआ हमारा आज का आपकी फरमाइश आपकी पसंद का ये कार्यक्रम, निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी भक्ति के इस भाव में डूब चुके हैं। वो सुनना चाहते हैं ऐसे भक्ति से जुड़े हुए और भी बहुत सारे गीत हैं जो हमारे पास आपके लिए हैं, लेकिन पहले हम अपने उन श्रोता साथियों का नाम शामिल कर लेते हैं, वो बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं। देखिए, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ग्राम चौधरी वास हरियाणा से हैं मंगतराम सतौड़, ऋतु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। जी हार्दिक अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गीत और भजन सब कुछ आपको हम सुनवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार करते हुए हमें एक संदेश आया है, ये है खेल बाजार पानीपत से। भावना, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, जी शुक्रिया आपको शामिल करने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इसका भी आपको धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ मारहरा दरवाज़ा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तम सिंह जंघेल जी हैं, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल हैं, इन्होंने हमारे साथ जुड़कर हमारे कार्यक्रम की का हौसला बढ़ाया है और हमारे कार्यक्रम को सुनकर ये बताया कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, हमें ये जानकर भी अच्छा लगता है कि आप जुड़ते हैं और कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपने जीवन के आनंद के हर पल में हमें शुमार करें और आप हमारे साथ शामिल हों। नमस्कार कहते हुए हमारे पास अगला संदेश है चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे पास अगला संदेश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, PS नभानकर, निर्मला नभानकर, विशाल नभानकर।

मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहरके। तो चलिए हम आपके इसी तरह संदेश शामिल करते रहेंगे। फिलहाल भक्ति के संगीत में हम गोते लगाते हैं और एक गीत और आपको सुनवाते हैं।

हरिहरन की आवाज़ में आप शिव महिमा से ये गीत सुन रहे थे और इस गीत को सुनते सुनते ये महसूस हो रहा था कि सचमुच में शिव का नाम लेने से दिन हमारा सार्थक और साकार हो जाता है। देखिए, आपकी फरमाइशें कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आईपी रेडियो यानी कि इंद्रप्रस्थ चैनल में, और आपकी होस्ट मनीषा है आज आपकी दोस्त आपके इस सफ़र में। तो सोमवार का दिन है, दिन खास है, शिव पे समर्पित है, और साथ ही साथ हमारे श्रोता साथी जिनके जीवन में भक्ति के भाव जगा रहे हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में भक्तिमय गीतों के साथ भी और उनकी फरमाइश के गीतों के साथ। तो देखिए, भोलेनाथ की बात है क्योंकि आज सोमवार का दिन है। भगवान शिव, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जल्दी से प्रसन्न होने वाले, वे केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से अर्पित किए गए बेल पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे वर्णन आते हैं जहां हमें पता चलता है कि सचमुच में भोले भंडारी कितने भोले हैं। तो चलिए, हम भोले भंडारी की भक्ति में फिर से डूबते हैं और एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, शिव की भक्ति में डूबा हुआ हमारा आज का ये कार्यक्रम, हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं जो इस भक्ति की धारा में बह चले हैं, और उनमें एक श्रोता साथी हमारे साथ हैं, वो हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, और ये धमधा ग्राम सुखारी कला से हमें संदेश भेज रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ श्रोता साथी जुड़े हुए हैं, और वो हैं चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नजियाना सिर, साजिद शाहिद कोई भी गीत सुनाने की बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हम आपके इस बात को ध्यान में रखेंगे। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, और हमारे साथ हैं भंवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और राजू नेहा जगदीश देवांगन। इसी तरह दतरंगी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, और इन्हीं के साथ हमारे एक और श्रोता साथी हमारे साथ हैं, और वो हैं संतोष भाखरे, ये हैं सुनैना सुकन्या और सविता भाखरे, देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कण कण में शिव का वास है, ये हम सभी जानते हैं साथियों, और जो जीवन का उतार चढ़ाव है, यदि मन में विश्वास हो पक्का, तो शिव की भक्ति का साथ हमें मिल ही जाता है, क्योंकि कण कण में वो समाहित हैं, और उनकी शक्ति से हम अपने जीवन में आनंदित होकर बहुत सारी ऐसी दुविधाओं को पार पा

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के सोमनाथ में हैं। वे सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वेत्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भट्ट

0: यात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए गए थे, जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति की यात्रा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is participating in the Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbh Abhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow is also being organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel around 6 p.m. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and an auditorium. Prime Minister Narendra Modi has urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work-from-home practices. The remarks come against the backdrop of record-high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged from nearly $70 per barrel to around $126 per barrel due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
2: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
1: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Hemant Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy.

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्ये तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be

0: participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026. And Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned, that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: Namaskar. Aap sabhi ko aaj ke is vishesh mahotsav ki bahut bahut shubhkamnaye. जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पर सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात त्रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो यह प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए। इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी

0: कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप
1: जी
0: को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है।
1: जी
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियाँ आप तक पहुँच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊँचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार चार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है, जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाए गए वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है, जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. empires rose and fell.

0: श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूपमंडनम, प्रसादमंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आँख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा,

0: त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं। ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं। इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे। इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएं।
1: एंड यस नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, द Red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance.

0: used by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early, we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
1: जी बिल्कुल. और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे.
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं इसमें बोला, एकानन चतुरानन पंचानन राजे. तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं. और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है. उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म. तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है. वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है. और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है. तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं. और
0: ध्वजारोहण

0: शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? उस अंधकार में हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है।
1: जी, तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियाँ बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहाँ उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened

0: में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएँ वहाँ रहें, पेयजल की सुविधा रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांगजन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार
1: लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
3: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई

0: हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: In Himachal Pradesh, six tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. Four others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, five were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department, IMD, amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today. Amid weak global cues, the Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
3: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में

0: जुड़ चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उसे नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौ लोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले।

0: अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है। लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता, आप ये भी तो देखें। तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतमतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह
1: जी
0: मयोभुवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो
1: जी
0: एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो
1: जी
0: अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है,
1: जी
0: इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now. And meanwhile, we bring you some devotional bhajan.

0: The Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honourable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Bhai Patel and the Honourable Deputy Chief Minister of Gujarat Shri Harsha Sanghvi are also present, and the Honourable Prime Minister has performed a puja at the Shri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge

0: वंदे मातरम जय जय गरवी गुजरात.
1: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath corridor, the Sri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Sri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India. And the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp. And also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
2: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी. और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय.
1: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
2: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने. और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
1: द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग.
0: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ

सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस

मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है।

समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम,

कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया।

पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे

ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत

0: जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Hara Hara Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया। इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में।

श्रोताओं, 90 के दशक में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने प्यार को इतनी खूबसूरत अंदाज में दिखाया कि लोग आज भी उसके गाने, उसके डायलॉग को भूल नहीं पाए। एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी आज़ादी की लड़ाई के दौर से सांस ले रही है, जहां एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज थी और दूसरी तरफ एक प्यारी सी प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस दौर में इस फिल्म ने तकनीकी मामले में भी इतिहास रचा, क्योंकि ये भारत की पहली फिल्म थी जो डॉल्बी एसआर साउंड के साथ रिलीज हुई थी। शानदार सिनेमेटोग्राफी, दिल को छू लेने वाला संगीत और हर फ्रेम में महसूस होने वाली नज़ाकत, जो लोगों के लिए थिएटर का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया बना गया।

श्रोताओ, विदु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस कहानी को संजय लीला भंसाली, कामना चंद्रा और खुद विधु विनोद चोपड़ा ने लिखा था। कहा जाता है कि इसकी मूल कहानी 1992 की कन्नड़ फिल्म मैसूर मलिंगे से प्रेरित थी। और श्रोताओ, अब हम फिल्म का नाम बताने से पहले जरा इसका एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं और उसके बाद बताएंगे इस फिल्म का नाम। तब तक आप लोग भी इस फिल्म का नाम गेस कीजिए और हमें IPRADIODELH@gmail.com पर मेल करके बता दीजिए।

श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जिसका संगीत आज भी हवाओं में खुला हुआ है, महसूस होता है, 1942 अ लव स्टोरी। आइए अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। नरेन के किरदार के लिए सबसे पहले आमिर खान का नाम सोचा गया था, लेकिन डेट्स की समस्या की वजह से बात आगे बढ़ नहीं पाई। वहीं विनोद चोपड़ा शाहरुख खान को भी एक अहम रोल देना चाहते थे, जो बाद में रघुवीर यादव ने निभाया। इसके बाद ये रोल अनिल कपूर तक पहुंचा। शुरुआत में अनिल कपूर इस फिल्म को करने को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो उस समय इस तरह के यंग रोमांटिक किरदार स्क्रीन पर सही तरह से निभा नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने इस रोल के लिए अपने लुक पर काफ़ी काम किया। आज एक्ट्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन की खूब बातें होती हैं, लेकिन 90 के दौर में अपने किरदार के हिसाब से लुक बदलने वालों में अनिल कपूर भी काफ़ी आगे थे। लम्हे के लिए इन्होंने मशहूर मूछें हटवाई थी और 1942 अ लव स्टोरी के लिए बाल छोटे करवाए और मूछों को भी थोड़ा हल्का करवाया। उनका यह नया और फ्रेश लुक दर्शकों को खूब पसंद आया। मनीषा कोइराला के लिए इस फिल्म तक पहुंचना काफ़ी दिलचस्प रहा। दरअसल फिल्म का मशहूर गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जावेद अख्तर ने माधुरी दीक्षित को ध्यान में रखकर लिखा था और रज्जो का जो किरदार था वो भी पहले माधुरी दीक्षित के हिसाब से ही तैयार किया गया था। लेकिन मनीषा ने शुरुआत में फिल्म में रज्जो की छोटी बहन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, और लेकिन बाद में जब माधुरी दीक्षित की डेट्स नहीं मिल पाई, तब विनोद चोपड़ा ने मनीषा का ऑडिशन टेप दोबारा देखा और उन्हें रज्जो के किरदार के लिए फाइनल कर दिया। बाद में छोटी बहन वाला किरदार भी कहानी से हटा दिया गया। वहीं फिल्म में आशीष विद्यार्थी, रघुवीर यादव, सुषमा सेठ, अनुपम खेर, डैनी मनोहर सिंह और ब्रायन ग्रोवर जैसे कलाकारों ने भी अपने किरदार से फिल्म को और मजबूत बना दिया। और इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि पूरी फिल्म में जैकी श्रॉफ के किरदार शुभंकर और अनिल कपूर के किरदार नरेन के बीच एक भी डायलॉग नहीं है, फिर भी दोनों के किरदारों की मौजूदगी कहानी में बराबर महसूस होती है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है 1942 अ लव स्टोरी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, अब जरा चलते हैं इस फिल्म की कहानी की ओर। 1942 अ लव स्टोरी की कहानी आज़ादी के आंदोलन के दौर की एक खूबसूरत प्रेम कहानी है। फिल्म में नरेन एक अमीर परिवार का लड़का है जिसके पिता अंग्रेज़ों के वफादार अधिकारी होते हैं, वहीं राजेश्वरी एक क्रांतिकारी की बेटी है जिसका परिवार अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं लेकिन उनके परिवारों की सोच और रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब नरेन के पिता चालाकी से राजेश्वरी के पिता का ठिकाना अंग्रेज़ों को बता देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद राजेश्वरी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ जाती है और नरेंद्र को भी अपने पिता की सच्चाई का एहसास होता है। नरेंद्र फिर अंग्रेज़ों और अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। प्यार, धोखा, बलिदान और देशभक्ति के बीच कहानी आगे बढ़ती है। आखिरकार में कई संघर्षों और कुर्बानियों के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जीत की ओर बढ़ती है। नरेंद्र और राजेश्वरी फिर एक हो जाते हैं और फिल्म भारतीय तिरंगे के साथ एक भावुक और देशभक्ति से भरे अंत पर ख़त्म होती है जो प्यार और आज़ादी दोनों की जीत का एहसास कराती है। तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गाना जो आज भी लोगों के दिलों में उसी ताजगी के साथ बसता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है 1942 अ लव स्टोरी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की। 1942 अ लव स्टोरी का संगीत सिर्फ सुपरहिट नहीं था, ये वो एल्बम था जिसे सुनकर लोगों को प्यार महसूस होने लगा था। इस फिल्म के गानों को पंचमदा यानी आर डी बर्मन ने अपने संगीत से सजाया था, और खूबसूरत बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, लता मंगेशकर, कुमार शानू, शिवाजी चट्टोपाध्याय और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों ने इन गानों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन इस संगीत के पीछे एक भावुक कहानी भी जुड़ी है। यह आर डी बर्मन की आखिरी फिल्म थी। कहा जाता है कि फिल्म का काम पूरा करने के कुछ समय बाद ही पंचमदा इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। यह फिल्म उनके निधन के 4 महीने बाद रिलीज हुई, और विनोद चोपड़ा ने यह फिल्म उन्हें ही समर्पित किया था। कुमार शानू से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। वो एक दिन रिकॉर्डिंग के लिए बिना शेव किए हुए स्टूडियो पहुंच गए। उन्हें देखकर पंचमदा ने कहा कि ये बड़े मुस्कुराते हुए पंचमदा ने उनसे कहा कि गाना रोमांटिक है तो ज़रा फ्रेश होकर आओ, और यही बारीकी उनके संगीत को इतना खास बनाती है। ये फिल्म उस दौर में ऐसा छाया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अपने नाम 9 फिल्म फेयर अवॉर्ड किया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा और खूबसूरत सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है 1942 अ लव स्टोरी। श्रोताओं, आपके प्यारे प्यारे मेल हमारे पास आ गए हैं। ये मेल आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबलू डब्लू का, और ये है संदीप, मक्कर, ज्योति, मन्नत, कमल हैं, और ये हैं संजय साहू पोटली करला दुर्ग से, और इनके पूरे परिवार के सदस्य हैं इनके साथ जुड़े हुए, और ये हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनरूर, गुनलाल और अविराज सिंह। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते चलते इस फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मशहूर मेट्रो स्टेशन में रखा गया था। शो रात 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 9:35 हुए, निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा खुद उठे और थिएटर के दरवाजे बंद करते हैं, उन्हें समय पर पहुंचना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि कई बड़े सितारे, निर्माता और निर्देशक बाहर ही रह गए क्योंकि वे देर से पहुंचे थे। विधु नहीं चाहते थे कि लेट आने वालों की वजह से फिल्म देख रहे लोगों का ध्यान भटके। चलिए इसी फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक अश्विनी चौधरी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ये फिल्म देखने गए थे। फिल्म में जैकी श्रॉफ के निभाए किरदार शुभांकर ने उन पर इतना गहरा असर छोड़ा कि उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम शुभांकर ही रखेंगे। आज उनके बेटे का नाम शुभांकर चौधरी है। यानी कभी कभी एक फिल्म और उसका एक किरदार लोगों की ज़िंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ जाता है कि वो सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, लोगों की यादों और रिश्तों का हिस्सा बन जाता है। तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से ये आखिरी गीत। यही वजह है कि 1942 अ लव स्टोरी आज भी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल की जाती है। उम्मीद है कि आपको फिल्म से जुड़ी ये बातें पसंद आई होगी। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। फिलहाल इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक और शानदार फिल्म और उससे जुड़े दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए गीत और गुनगुनाते रहिए संगीत।

0: सकलानी ने दस्या कि हादसे समय इलाके च भारी मीह पै रहा सी। उन्होंने कहा कि घटना तो तुरंत बाद बचाव ते राहत कार्ज शुरू किए गए ने। मौसम विभाग ने अज पंजाब दे वख-वख हिस्सों च हनेरी झक्खड़ नाल बिजली लिशकण बारे ओरेंज अलर्ट ते इस तों बाद 14 मई तक येलो अलर्ट जारी कीता। इस समय दौरान पंजाब च वख-वख थावां ते हल्की तों दरमियानी बारिश भी हो सकती है। हालांकि अगले 3 तों 4 दिनां दौरान वध तों वध तापमान च कोई वड्डी तब्दीली आउण दी संभावना नहीं है। आईपीएल क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स दा मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल होवेगा। ते आखर च खास खबरां इक वार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात विच सोमनाथ अमृत पर्व समारोह नूं कीता संबोधन। कहा सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 साल देश की प्रेरणा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वालों पछम एशिया संकट दौरान राष्ट्र नूं मजबूत करने विच देशवासियों नूं भाईवाल बनने का सद्दा। अज राष्ट्रीय तकनालोजी दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले विच काकिरा लाहरू सड़क से एक कार हादसे च 6 सैलानियों की मौत, 4 होर गंभीर जख्मी। अते आईपीएल क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स का मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल होवेगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा 1:10 दा प्रदेशिक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे 2:30। नमस्कार,
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व के दौरान महापूजा की और कुंभ अभिषेक की रस्म अदा की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नज़रिए को तरगीब मिलेगी। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए वजीरों की गैर रस्मी बाख्तियार ग्रुप की मीटिंग की सदारत की। मरकज ने विकसित भारत जीराम जी एक्ट के निफाज को नोटिफाई कर दिया है जो 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है और अगले माली साल में शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में खसूसी महापूजा की। जनाब मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक रस्म अदा की। मंदिर की तारीख में पहली मर्तबा 11 तीर्थ स्थानों का पवित्र जल इस्तेमाल करते हुए मंदिर के शिखर पर जल अभिषेक किया गया। जनाब मोदी ने परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। इस दौरान भारतीय फिजाइया ने एयर शो का अहतमाम किया जिसमें सूर्यकिरण टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में शानदार फिजाई करतब का मुजाहरा किया। इस मौके पर हेलीकॉप्टरों से मंदिर के ऊपर फूल बरसाए गए। इसके बाद जनाब मोदी खसूसी नुमाइश देखने गए। सोमनाथ मंदिर की तामीरों के अफ्तताह के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर पुख्ता अकीदे रूहानियत और मुल्क की दायमी रूह की एक पवित्र अलामत के तौर पर कायम है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व माजी का जश्न मनाने के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि ये आइंदा 1000 बरस के लिए मुल्क की तहरीक का बायस है। वो गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर आवाम से खिताब कर रहे थे।
2: पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोमनाथ हमें ये याद दिलाता है कि एक मुल्क उस सूरत में ही मजबूत और मुस्तहकम रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से मरबूत रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को ना झुका सकती है ना दबा सकती है। उन्होंने कहा कि 11 मई को पहले 3 न्यूक्लियाई तजुर्बे किए गए और मुल्क के साइंसदानों ने पूरी दुनिया को भारत की सलाहियतों से बावर कराया। उन्होंने कहा कि इन तजुर्बात से दुनिया भर ये जाहिर हुआ कि मुल्क की सियासी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत है।
2: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म अर्थात सृष्टि का हर एक घटक इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है,

0: समय भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर की दायमी तहजीबी अहमियत और मजबूती को उजागर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के देरपा जज्बे को तकवियत पहुंचाते हुए सोमनाथ एक मंदिर से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि खंडराज से आहिया तक इसके सफर से मुल्क के शानदार मजबूत विरासत और विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में मुल्क को मजबूत बनाने में साझेदार बने। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मुल्क के लोगों से सात अपीलें की। जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के इस्तेमाल के जरिए दरामदशुदा ईंधन की खपत कम करके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने में मदद करें। वजीर आजम की अपील एक ऐसे वक्त सामने आई है जब मगरबी एशिया बहरान और आबनाए हुरमुस में तातुल जारी रहने की वजह से खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चल रही हैं। गुज़श्ता महीने के आखिर में खाम तेल की कीमतें $126 फी बैरल तक पहुंच गई थीं, जो पिछले 52 हफ्ते में सबसे ज्यादा है।
0: वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
1: वजीर आजम ने वर्क फ्रॉम होम के सिलसिले को बहाल किए जाने की जरूरत भी उजागर की। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो खुरदनी तेल का इस्तेमाल कम करें। साथ ही उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुल्क के बाहर से मंगाई गई कीमियावी खाद पर इन्हिसार कम करें। वोकल फॉर लोकल तहरीक को उजागर करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए खुद किफालत और नामियाती खेती बाड़ी जरूरी है।
0: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश से मुत्तसिल सरहद पर बाड़ लगाने के लिए आरजी बीएसएफ को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जमीन की मुंतकली का अमल पीर से शुरू हो जाएगा और 1.5 महीने के अंदर अंदर इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। चुनाव के बाद मगरबी बंगाल में नई सरकार की तश्कील के बाद आज काबीना की पहली मीटिंग में यह फैसला किया गया। जनाब अधिकारी ने रियासत में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम नीज मरकजी सरकार की कई दीगर स्कीमें नाफिज करने का भी ऐलान किया।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है, वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया की सूरत हाल की निगरानी के लिए तश्कील करदा बाख्तियार वजरा के गैर रस्मी ग्रुप की एक मीटिंग की आज

2027 के दौरान मईशत की शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नज़रिए को तरगीब मिलेगी। जनाब मोदी ने मंदिर के अहिया को 75 साल मुकम्मल होने पर महापूजा की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने सरहद पर बाढ़ लगाने के लिए आराजी बीएसएफ को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। मरकज ने विकसित भारत जीरामजी एक्ट के निफाज को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing, also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And in IPL cricket, Punjab Kings to take on Delhi Capitals in Dharamshala this evening. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He said, Somnath Amrit Parv is not just a festival to celebrate the past. It will be the country's inspiration for the next 1,000 years.
1: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: The Prime Minister said Somnath reminds the people that any nation can remain strong for a long time only when it stays connected to its roots. He said no power in the world can make India bow down or suppress it. On National Technology Day, Prime Minister said on this day the first 3 nuclear tests were conducted and the country's scientists showcased India's capabilities to the entire world. He said these tests demonstrated to the world just how unwavering the country's political will truly is.
1: देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था

0: In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की।

0: उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान

0: करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज 2 मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। तो आज के जो हमारे कलाकार हैं उनका नाम है बॉबी देओल। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि असल में उनका नाम बॉबी देओल नहीं बल्कि विजय सिंह देओल है। बॉबी देओल तो उनका स्टेज नेम है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और हमारे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के छोटे बेटे भी हैं। इनका जन्म 27 जनवरी 1969 में मुंबई में हुआ था। तो बातें तो और भी होंगी। फिलहाल इनकी पहली फिल्म बरसात, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, साल 1995 में बरसात फिल्म से डेब्यू करने वाले बॉबी देओल ने गुप्त, सोल्जर और हमराज जैसी कई हिट फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। उन्हें फिल्म बरसात के लिए बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बॉबी देओल ने बाल कलाकार के रूप में साल 1977 में धर्मवीर फिल्म से में भी काम किया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने तमिल एवं तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया है। इनकी दूसरी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुप्त, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसमें इनकी ऑपोजिट मनीषा कोइराला एवं काजोल नजर आईं। इस फिल्म के सारे गीतों की भी काफ़ी सराहना की गई।

श्रोताओं, बॉबी देओल की अगली सुपरहिट सन 2002 में आई फिल्म हमराज थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल साबित हुई। नतीजा ये निकला कि यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में उनके ग्रे शेड वाले कैरेक्टर और दमदार अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म में उन्होंने राज सिंघानिया की मुख्य भूमिका निभाई, जो काफ़ी लोकप्रिय रही। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना थे। हमराज फिल्म के लिए बॉबी देओल फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट हुए। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म के गाने को भी खूब सराहा गया।

श्रोताओं, 2007 में आई फिल्म अपने एक ऐसी फिल्म रही जहां बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद्र के साथ नजर आए थे। ये फिल्म बॉबी देओल के दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि इस फिल्म का जो टाइटल है वो अपने आप में ही उनकी निजी जिंदगी में मायने रखता है। आखिर अपने तो अपने होते हैं।

श्रोताओं, देखा जाए तो बॉबी देओल एक ऑलराउंडर अभिनेता हैं जिन्होंने एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रोल एवं सीरियस रोल के साथ साथ इमोशनल कैरेक्टर भी बखूबी निभाए हैं। इन्होंने सफलता एवं संघर्ष दोनों दौर देखे हैं, पर कभी ना तो हिम्मत हारी ना ही कभी सफलता को अपने सर चढ़ने दिया।

इस अंतिम गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आशा करती हूँ कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: आकार में समुद्र के सब

0: सबसे बड़े जीव का नाम बताइए
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
0: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast.
3: Sometimes slow.
2: But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet. And I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
3: Yes, sir. It's lovely.
2: So now, let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl, just like you.
11: Just like us.
2: Yes. And you can also hum along with this song while listening to it. Okay?
3: Yes, sir!
2: So here comes the song on bicycle. Listen and enjoy.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We like it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को

0: अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही

0: ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समझ नहीं पा रहा था, बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: मंटू के बारे में बात शुरू होती ही ये भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातों के बहाव में इस छोटी सी बात का तस्करा रह जाए जो हम चाहते हैं कि आपको जरूर बताएं। तो वो बात कुछ यूं है कि हम उस ऑल इंडिया रेडियो से जिससे मंटू की कामयाबी की कहानी का आगाज हुआ था, तकसीम से पहले के दौर में इस रेडियो स्टेशन में अदीबों शायरों की एक पूरी कहकशां रोशन रहती थी जिसमें दीगर सितारों के साथ साथ सादत हसन मंटो भी शामिल थे।
1: वो दिन मंटो के अच्छे दिन थे। उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो की इमारत में सादत हसन मंटो का अपना एक अलग दफ्तर हुआ करता था, जहां वो खुद अपना अफसाना खट खट खट कमाल चाबुक दस्ती से उर्दू के टाइपराइटर पर लिखा करते थे।
0: और अफसाना मुकम्मल होते ही एक स्टाइल से खर की आवाज के साथ आखिरी कागज खींच कर निकालते और अपने दोस्त उपेंद्र नाथ अश्क को चिल्लाकर बताते थे कि लो भाई अश्क, तुम अश्क बहाओ और चाहो तो नून मीम राशिद को भी बताओ कि यारों का एक और अफसाना हो गया। जब मंटो दिल्ली से बंबई गए तो उनका वो टाइपराइटर भी उनके

0: थम रहा गया। बंबई में भी अपने ज्यादातर अफसाने और फिल्मी कहानियां मंटो ने इसी टाइपराइटर से लिखे।
1: जब बंबई उनसे छूट गई, हिंदुस्तान उनसे छूट गया, तो भी उनका वो देरीना रफीक, वो टाइपराइटर उनके साथ रहा। ये टाइपराइटर आखिरी वक्त तक मंटो के साथ रहा। कहते हैं कि मंटो के इंतकाल के बाद जब उनका सामान मंटो की बेगम सफिया ने जिंदा रहने की जुस्तजू में बेचना शुरू किया, तो मंटो के ऑल इंडिया रेडियो के दौर के साथी और मुमताज शायर नून मीम राशिद ने वो टाइपराइटर मंटो की बेगम से खरीद लिया। फिर नून मीम राशिद जब दुनिया से मंटो के पास चले गए, तो मशहूर शायर साकी फारूकी ने उस टाइपराइटर को बेगम शैला राशिद से हासिल कर लिया और उसको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को दे दिया, ताकि अगली नस्ल उस तहजीबी और सकाफती विरसे का दीदार कर सके जिस पर मंटो ने न जाने कितने शाहकार अफसाने लिखे। और फिर बाद में नून मीम राशिद याराने वतन की बेबसी का इंतकाम लेते रहे। कई बरसों तक ऑल इंडिया रेडियो का वो टाइपराइटर वहां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक शोकेस में सजा दावते फिक्रो नजर देता रहा। फिर वो टाइपराइटर कहां गया, किसी को नहीं मालूम।
0: जब मंटो दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे, उस जमाने में राजा मेहदी अली खां अक्सर उनके मेहमान हुआ करते। फिर जब मंटो बॉम्बे यानी मुंबई गए, तो उन्होंने कई फिल्म साजों से राजा मेहदी अली खां का तारुफ कराया और फिर अपनी लगातार मेहनत से राजा मेहदी अली खां फिल्मी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम बन गए। मंटो की बेवक्त मौत ने राजा मेहदी अली खां को बहुत मुतासिर किया। मंटो की मौत पर कलम बर्दाश्ता उन्होंने एक तवील नज्म लिखी जिसका उन्वान था जन्नत से मंटो का खत। चुनांचे आज हम सिर्फ और सिर्फ उसी नज्म की मदद से सादत हसन मंटो को याद करेंगे। नज्म एक खत के पैराए में है जो मंटो ने जन्नत से राजा मेहदी अली खां को लिखा है। खत में मंटो पूछते हैं,
2: मैं खैरियत से हूं, लेकिन कहो कैसे हो तुम राजा मेहदी अली खां? बहुत दिन क्यों रहे तुम फिल्म की दुनिया में गुम राजा मेहदी अली खां? ये दुनियाए अदब से क्यों किया तुमने कनारा था? अरे अरे बेअदब, क्या शेर से जर तुमको प्यारा था? जो नज़में तुमने लिखी थी कभी जन्नत के बारे में, छपी थी वो यहां भी खुल्द के पहले शुमारे में। अदब की शेर की दुनिया में तुम लौट आए, अच्छा है। अरे लिखवा लो नज़में फिर से तुम चिल्लाए, अच्छा है। मगर फिर सोचता हूँ शेर लिखकर क्या करोगे तुम? ये अंदाजा है मेरा गालबन भूखे मरोगे तुम। ये बेहतर है किसी अच्छी सी मिल में नौकरी कर लो, करो तुम शायरी तफरीक को और पेट यूं भर लो।
1: इसके आगे मंटो राजा मेहदी अली खान से कहते हैं,
2: ये वो दुनिया है जिसने केस चलवाए अदीबों पर, बहुत की बारिशें मशक़े सितम हम खुश नसीबों पर, हुआ पैदा यहाँ जो नुक्तदां सदियों में सालों में, मरा सड़कों पे वो या सड़ गया फिर हस्पतालों में। हो जिंदा हम तो नाक और भौं चढ़ाकर नाम धरते हैं, जो मर जाएं तो फिर देखो ये कितनी कद्र करते हैं। यकायक एक दिन रोएंगे, ये बरसी मना लेंगे, ये गाजी हम शहीदों के लिए झंडे उठा लेंगे, पढ़ेंगे मरसिए तड़पेंगे, कर डालेंगे तकरीरें, हमारा नाम करने की करेंगे लाख तदबीरें, हमारे बाल बच्चों से न पूछेंगे कि कैसे हो। अदीबों शायरों की कद्रदानी हो तो ऐसे हो, करें क्या हम न ये दुनिया न वो दुनिया अदीबों की, ये दुनिया है सजाओं की, वो दुनिया है खतीबों की।
0: इस नज्म के सियाक व सबाक को समझने के लिए यह बताना जरूरी है कि बॉम्बे यानी मुंबई की सड़कों पर तकसीम से पहले के दौर में जब मंटो किसी शाम चहलकदमी के लिए निकला करते थे, तो राह चलते लोग उनके बारे में अक्सर दरियाफ्त करते थे कि वो कौन है, क्योंकि उस जमाने में उनकी शख्सियत बहुत पुरकशिश हुआ करती थी। यूं भी कश्मीरी नस्ल से ताल्लुक रखने की वजह से उनका रंग सुर्ख और सफेद तो था ही, लेकिन मजमूई एतबार से भी मंटो एक खूबसूरत और

0: स्टाइलिश इंसान थे। वो फैशनेबल और साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते थे और उनका मखसूस अंदाज का सुनहरी फ्रेम का चश्मा उनकी शख्सियत में चार चांद लगाता था। लेकिन अफसोस के इस शानदार इंसान को मुल्क की तकसीम और हिजरत से रूनुमा होने वाले मसाइल और नफरतों की यलगार ने खत्म कर दिया। अपने नए वतन पाकिस्तान में उम्र का आखिरी दौर मंटो ने बहुत कसमापुरसी के आलम में गुजारा। नए मुल्क में नए नए दुश्मनों की नफरतों और साजिशों से बरसरे पैकार मंटो आखिरकार 18 जनवरी सन 1955 को 43 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गए। राजा मेहदी अली खां की नज़्म में मंटो आगे कहते हैं,
1: जमी वाले हो कैसे भी वो हरदम याद आते हैं, जो दुनिया में उठाए वो हंसी गम याद आते हैं। जमी वालों की सोहबत में कभी जो दिन गुजारे थे, कलम लिखने से कासिर है वो दिन कितने प्यारे थे। वो गलियां बाई कल्ले की दूर से मुझको बुलाती हैं, वहां के घर की यादें दिल में अब तक गुनगुनाती हैं। मुझे उस घर में सफिया की मोहब्बत याद आती है, मुझे जन्नत में भी वो घर की जन्नत याद आती है, जहां बच्चों की सूरत देखकर मैं मुस्कुराता था, जहां आकर मैं दुनिया का हर एक गम भूल जाता था। बिलाना जहां हर शाम तुम मिलने को आते थे, जहां सब दोस्त आकर एक नई जन्नत बसाते थे। वो जन्नत लुट चुकी दिल में मगर आबाद है अब तक, फजा उस घर की वक्फे मातमो फरियाद है अब तक। तुम अक्सर अब भी उस घर की सड़क पर से गुजरते हो, वो सब कुछ लुट चुका बेकार, तुम क्यों आहें भरते हो। यही उजड़ा हुआ घर फिर बसाना चाहता हूँ मैं, बुलंदी छोड़कर पस्ती पे आना चाहता हूँ।
2: मंटो की तख्लीकी सलाहियतों और ईमानदाराना जुर्रत इजहार ने उनको शोहरत के साथ साथ लातादाद दिक्कतों और रुसवाइयों से भी दोचार कराया। वो जिस मुआशरे को उसकी अपनी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुआशरा दरअसल हकीकत से आंखें चार करने की हिम्मत नहीं रखता था। वजह ये थी कि पाकिस्तान के नाम नेहाद शुरफा का बा अल्फाज दीगर पढ़ा लिखा मुआशरा इस बात के लिए कतई तैयार न था कि उसको कोई आईना दिखाए। अगर मरीज इस बात के लिए राजी न हो कि उसके फोड़े फुंसियों का इलाज किसी नश्तर की चीरा दस्तियों से किया जाए, तो चाहे वो कोई मुसन्निफ हो या मौलिज, उसकी हर कोशिश ला हासिल ही रहेगी।
0: मजहब की बुनियाद पर कायम की गई एक ममलिकत में अगर कोई इंसान ऐसे मौजूआत पर कलम उठाए जो अरबाब मजाज की तबीयत पे गरा गुजरे, तो जाहिर है कि इस गुस्ताखी का नतीजा अच्छा नहीं होगा। मंटो ने पीठ पीछे गीबत करने वाले अफराद की कभी परवाह नहीं की। मंटो ने तवाइफों से लेकर दलालों और समाज के हाशिए पर पड़े ला तादाद गुमनाम और जलीलो खार किरदारों को अपने अफसानों में जगह दी, ताकि वो समाज के नामनेहाद ठेकेदारों की जानिब से मजीद नजरअंदाज न किए जाएं। हम सभी जानते हैं कि हर वो चीज गुनाह हो जाती है जो अरबाब मजाज के मकासिद की तकमील में हायल महसूस हो। मंटो की जसारतों पर पहले तो नए मुल्क में खूब लानतान हुई और फिर जल्द ही मंटो की ज्यादातर तहरीरों को आसारे कयामत करार दिया गया। हम सभी जानते हैं कि मंटो ने इंसानी फितरत को अपना मौजू बनाया और खासतौर से ऐसे हकायक पर लिखा जिन पर जेर लब लाहौल पढ़ने के अलावा और कोई रद्दअमल मुनासिब तसव्वुर न किया जाता था। मंटो के बहुत से अफसाने ऐसे हैं जिनमें शामिल मौजूआत गुनाहों की तशहीर के मुतरादिफ समझे गए। राजा मेहदी अली खां की तहरीर करदा नज्म में मंटो आगे राजा साहब से कहते हैं,
1: फलक पर मैं हूँ और तुम हो जमी पर, जी नहीं लगता। जहां भी जाऊं जन्नत में कहीं पर जी नहीं लगता। मैं चाहूं भी तो अब दुनिया में वापस आ नहीं सकता। खुशी बनकर तुम्हारी महफिलों में छा नहीं सकता। जमी वालों से ऐ मलून कब तोड़ोगे तुम नाते। बा आसानी तुम आ सकते हो जालिम क्यों नहीं आते। फलक से रोज मैं

0: आवाज देता हूँ तुम्हें राजा, तुम्हें मालूम है राजा कहे काफिया आ जा। जमी से बोरिया बिस्तर उठाओ और चले आओ, मेरे घर आओ, मेरा बेल बजाओ और चले आओ। करोड़ों मर गए चुपचाप, लेकिन तुम नहीं मरते। जो मर्दे नेक हैं, जीने पे इतनी जिद नहीं करते। अगर कुछ उम्र बाकी है तो करके खुदकुशी आओ। मैं हूँ जब तक यहाँ, खौफे जहन्नम से न घबराओ। मैं जुर्मे खुदकुशी को लड़ झगड़ के बख्शवा लूंगा। तुम्हारा नाम हर जन्नत के पर्चे में उछालूंगा। चले आओ, चले आओ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। चले आओ, चले आओ, यहाँ राहत ही राहत है।
1: ये तो हम सभी पढ़ते आए हैं कि अपनी तहरीरों के 22 मंटों को अदालतों में घसीटा गया, लेकिन ये बात हमको बिल्कुल नहीं बताई जाती है कि ममलिकते खुदादाद के खुदाई खिदमतगारों ने मजमूई एतबार से ऐसा माहौल बनाया जिसमें कोई भी हसास शख्स अदम तहफ़ का शिकार हो जाए। मंटो की बदकिस्मती ये थी कि वो एक ऐसे मुआशरे में सांस लेने पर मजबूर थे जहां हर किस्म के गुनाहों के लिए ला तादाद गुंजाइशें और तरगीबात मौजूद थीं। बस शर्त ये थी कि सब कुछ खामोशी से होता रहे। मंटो ने जब मुआशरे की ढकी छुपी जलालतों और पसे पर्दा खबासतों की नकाब कुशाई शुरू की तो ये मुआशरा तड़प उठा। ना तो अरबाब इख्तदार और ना ही मजहब के ठेकेदार इस बात को बर्दाश्त कर पाए कि कोई उनको ये बताने की जुसारत करे कि उन जैसे शरीफों का साले समझा जाने वाला मुआशरा अंदर से दरअसल कितना गंदा और कितना घिनौना है। मंटो के फन में उन्हें मुआशरे की तल्ख सच्चाइयां नहीं बल्कि सिर्फ अपनी तजहीक नजर आई।
0: नहीं, मैं खुद गरज, सुन लो, तुम्हें मैं क्यों बुलाता हूँ। मेरे राजा, तुम्हें मैं एक खुशखबरी सुनाता हूँ। खबर ये गर्म थी कुछ दिन से जन्नत के हसीनों में, तुम्हारा नाम भी शामिल है जन्नत के मकीनों में। ये सुनकर मैं नई आबादियों में दौड़ता आया, जो की इंक्वायरी तो इस खबर को मैंने सच पाया। तुम्हारा महल भी देखा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये समझो जगमगाते नूर और चीनी की मूरत है। तुम्हारी मुंतजर हूरें वहां बेख्वाब रहती हैं, चमन की अंदलीबों की तरह बेताब रहती हैं। वो मुझसे पूछती रहती हैं, बतलाओ वो कैसे हैं, फरिश्ते हैं कि शैतान हैं, वो ऐसे हैं कि वैसे हैं। तुम्हारी झूठी तारीफों के पुल मैं बांध देता हूँ, खुदा से बाद में रो रो के माफी मांग लेता हूँ। जवां हूरें कहीं बूढ़ी ना हो जाएं, चले आओ, ये जंगल में मोहब्बत के न खो जाएं, चले आओ। बचा लो इनको ऐ राजा, कि वो इन सब पे मरता है। ये चंचल हिरनियां तकते ही उसको भाग जाती हैं, मेरी हूरों का आकर हाल अपना सब बताती हैं।
2: मंटू की परेशानियों की शुरुआत तब हुई जब सन 1948 के अवाइल में वो बंबई छोड़कर लाहौर गए। तकसीम से पैदाशुदा मनफी माहौल की वजह से और बतौर खास फिरके वराना फसादात के बाइस मंटो को अपने बीवी बच्चों को अपने कजन हामिद जलाल के साथ लाहौर भेजना पड़ा। मंटो और उनके मुंबई के दोस्तों की कोशिश यही थी कि वो बंबई से ना जाएं, लेकिन काफी फिक्र तरद्दुद के बाद आखिरकार उन्हें भी बंबई से जाना पड़ा। उस दौर के हालात, लाकानूनियत और अदम तहफ्फुज का अक्स हम मंटो के कई अफसानों में देख सकते हैं।
1: याद रखने की बात यह है कि मंटो को ख्वाबों की नगरी मुंबई तब छोड़नी पड़ी जब वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना चुके थे और एक कहानीकार के तौर पर उनकी मांग और इज्जत रोज अफजों बढ़ रही थी। बंबई के उस दौर के अहम अदाकार और फिल्मसाज उन्हें आंखों पर बिठाते थे और मालो दौलत की उन्हें कोई कमी ना थी। बॉम्बे क्या छूटा, मंटो की तो दुनिया ही उजड़ गई।
2: लाहौर पहुंचकर मंटू ने देखा कि वहां की फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे की इंडस्ट्री का पासंग भी न थी। मुंबई जैसा तख्लीकी और साजगार माहौल वहां उनका था। दूसरी जानिब माशी जुबूहाली के बाइस लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उस वक्त पाई पाई के मोहताज थे।
1: बदकिस्मती से ये वही दौर भी है जिसे मंटो की जिंदगी का सबसे तख्लीकी

0: तरक्की दौर भी कहा जा सकता है। उनका कलम इस दौर में एक के बाद एक शहपारे रकम कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का मुआशरा इस लायक न था कि मंटो जैसे फनकार के फन की कद्र कर सके। काफी कोशिशों के बाद, बल्कि कई दोस्तों की मदद से मंटो के अफसानों को कुछ रसाइल में जगह मिलने लगी।
1: दाग दाग उजाले की शबगजीदा रोशनी में अवाम शिकस्ता ख्वाबों की खराशों पे नौहाजन थे। दूसरी जानिब जख्म खुर्दा पाकिस्तानी सियासत और उसके लीडरान खुद को मजलूम करार देने पर न सिर्फ बजीद थे बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाए थे। सहाफत और जराय अबलाग की जानिब से भी तकसीम से पहले और बाद के सियासत की एक तरफा तस्वीर ही अवाम के सामने रखी जा रही थी। बल्कि ये कहना गलत न होगा कि हर मसले के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को मुर्द इल्जाम ठहराने के बाद की पाकिस्तानी आदत और रिवायत की इब्तदा इसी दौर में हुई। नौ मौलूद पाकिस्तानी मुआशरे को नए दुश्मनों और नए हरीफों की तलाश थी और हमसाया मुल्क से मौजू इस काम के लिए भला कौन हो सकता था। ऐसे माहौल में मंटो के हसास कलम ने जब तकसीम मुल्क के मौजू पर खोल दो जैसा खुद एहतसाबी अफसाना लिखा तो दरपर्दा नफरतों का एक सैले रवा मंटो के खिलाफ उमड़ पड़ा।
0: मंटो मजहबी शिद्दत पसंदों के निशाने पर आ गए और उनके खिलाफ महाजाराइयां शुरू हो गईं। ठंडा गोश्त जैसे अफसानों ने चौधरी मोहम्मद हुसैन किस्म के लोगों की एक पूरी फौज को सामने ला खड़ा किया। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ एक तन्हा मंटो और दूसरी तरफ दुश्मनों का जम्मे गफीर था। उस दौर में मंटो बीमारी और माशी तंगी के भी शिकार थे। शाह खर्ची उनकी फितरत का हिस्सा थी और बम्बई में ऐशो इशरत के दिन देख चुके मंटो के लिए रसाइल और अखबारात के एडिटरों से बार बार मेहनताने का तकाजा करना तकलीफ दे काम था। दूसरी जानिब उनके दुश्मन उन्हें तबाहो बर्बाद कर देने का अज्म किए बैठे थे। नफरतें इस कदर बढ़ी कि उर्दू रसाइल के दरवाजे तक मंटो पर बंद कर दिए। फिर मंटो ने मसूद अशर की इदारत में निकलने वाले एक रोजनामे के लिए चंद कहानियां लिखी, लेकिन ये सिलसिला भी जल्द खत्म हो गया। इसके बाद मंटो ने अपने बम्बई के दौर के एक दोस्त एहसान बीए और मुर्तजा जिलानी के अखबार के लिए चश्मे रोजन के नाम से कॉलम नवीसी शुरू की। चश्मे रोजन अभी छपना शुरू ही हुआ था कि फिर कुछ दिन बाद मंटो का ये कॉलम बगैर उनवान के खाली छापा गया। साफ जाहिर है कि अखबार के मालिकान पर अरबाब मजाज की जानिब से जोर डाला जा रहा था कि ये कॉलम ना छापा जाए। उसके बाद मंटो ने एक और अखबार में जाने माने लोगों के खाके लिखना शुरू किए, जिसमें अशोक कुमार, नरगिस, नूरजहां और नसीम बेगम वगैरह के साथ साथ अदबी शख्सियतों जैसे कि मीरा जी, आगा हशर काश्मीरी और असमत चुगताई वगैरह के खाके लिखे, जो बाद में गंजे फरिश्ते के उनवान से शाये हुए।
1: मंटो के खिलाफ पसपर्दा नफरतों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लाहौर की एक अदबी महफिल में मंटो चराग हसन हसरत की एक तहनियती महफिल में उन पर एक खाका पढ़ रहे थे जिसका उनवान था बैल और कुत्ता। मंटो ने अपने मखसूस अंदाज में चराग हसन हसरत की शख्सियत के चंद पहलुओं की अक्कासी अभी शुरू ही की थी कि इंतजामिया ने मंटो को दरमियान में ही रोककर स्टेज से उतर जाने को कहा। मंटो ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। वहां मौजूद शुरफा मरने मारने बल्कि गालियों पर उतर आए और कुल मिलाकर वहां काफी बदमजगी हुई। मंटो की बीवी सफिया भी इस जलसे में मौजूद थी और उनकी मुदाखलत पर मंटो स्टेज से उतारे गए।
0: पाकिस्तानी मुआशरे के इसी मुखासिमाना रवैये की वजह से मंटो की परेशानियों में इजाफा होता चला गया। मंटो के लिए मौजूद हर रास्ता बंद किया जाता रहा। अपनी परेशानियों और उलझनों को उन्होंने डुबो देने की कोशिश की। माली दिक्कतों और इज्तिमाई मुनाफरत की वजह से मंटो अंदर से टूटते चले गए। एक साल के अंदर अंदर जब मंटो हल्का अरबाब जौक की महफिल में अपना नया अफसाना सुनाने आए तो कोई पहचान तक न सका था कि ये वही स्टाइलिश मंटो थे जो कभी अपने घने सुर्खी माइल बालों और गबरडीन की ब्राउन शेरवानी के साथ जब सलीम शाही जूते पहनकर निकलते थे तो राह चलते लोग रुककर उनके बारे में इस्तफसार करते थे। इस बार जब लोगों ने हल्के अरबाब जौक की महफिल में मंटो को देखा

0: मंटू का चेहरा कुमला चुका था। चेहरे पर जर्दी के आसार नुमाया थे और बाल लगातार जहनी तनाव की वजह से सफेद हो चुके थे। वो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो चुके थे। जब मंटू ने अपनी जर्द जर्द वीरान आंखों से अपने मखसूस जामाई जीरो बम के साथ अपना अफसाना टूबा टेक सिंह सुनाया तो वहां मौजूद तमाम लोग जज्बाती हो गए और बहुत से लोगों ने अपनी आंखें पोंछी।
1: अपनी जिंदा मुस्कुराहटों और खुदादाद बजला संजी के लिए जाने महफिल समझे जाने वाले मंटो धीरे धीरे दीवानों और मदहोशों की सफ में आ गए। उनके पुराने दोस्त तक उनसे कतरा कर गुजर जाते थे कि कहीं वो उनसे उधार ना मांग बैठे। इस दौर में कई बार उन्होंने मुंबई के दोस्तों को लिखा कि उन्हें किसी तरह हिंदुस्तान बुला लें, लेकिन ये बात न बन सकी। लाहौर में मंटो तन्हा होते चले गए और गुमसुम रहने लगे। शाम होने पर वो खामोशी से किसी न किसी अखबार या रिसाले के दफ्तर जाते और वहां एक अफसाना लिखकर 10 रुपए लिए 8 आने तांगे वाले को देकर घर जाते और बाकी 4 रुपए अपनी बीवी सफिया के हाथ पर रखते ताकि चूल्हा जल सके।
0: जैसे जैसे जहनी और माली परेशानियां बढ़ती गईं, मंटो की सेहत भी बिगड़ती गई।
1: 18 जनवरी सन 1955 की एक सर्द सुबह मजबूर और नादार फाकाकश मंटो इस दुनिया से चला गया। मंटो की मौत दरअसल इज्तमाई तौर पर किया गया एक कत्ल था।
0: राजा मेहदी अली खां की नज़्म में मंटो आखिर में मेहदी अली खां से कहते हैं,
2: बहुत जो याद आते हैं अब उनके नाम लेता हूँ। जमी के दोस्तों के नाम कुछ पैगाम देता हूँ। बहन इस्मत से कहना, कब तलक फिल्में बनाओगी? ये हालत हो गई है आह, क्या अब भी ना आओगी? जो याद आ जाए इस्मत की तो शाहिद भी चला आए। वो जिद्दी आते आते अपनी फिल्में सब जला आए। महेंद्र नाथ को और कृष्ण को भी खत ये दिखलाओ, जो मुमकिन हो तो दोनों भाइयों को साथ ले आओ। अगर दुनिया ना आती हो मुआफिक फैज और राशिद को, तो उनसे पूछ कर लिखो मैं भेजूं अपने कासिद को। ना आए गर तो कहना कि पतरस ने बुलाया है। तुम्हारी याद में तासीर तड़पा दिल मिलाया है। तुम्हें हर रोज हसरत और सालिक याद करते हैं। तुम्हें ये दोनों अखबारों के मालिक याद करते हैं। मुझे उम्मीद है ये सुनकर दोनों दौड़े आएंगे, मेरी जन्नत में आकर एक नई जन्नत बसाएंगे। दुआ है ये खुदाया सब जमी के दोस्त मर जाए। ये जन्नत के चमन, ये घर, ये सड़कें उनसे भर जाए।
0: मंटो के आखिरी लम्हात का हाल उनके भांजे हामिद जलाल ने लिखा है।
3: मंटो मामू को जिंदगी के आखिरी लम्हों में अस्पताल ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस के आने से पहले सिर्फ एक या दो बार मामू ने अपने मुंह से रजाई हटाई। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, इतनी सर्दी शायद कब्र में भी नहीं लगेगी, मेरे ऊपर 2 रजाइयां डाल दो। कुछ देर तवक्कुफ के बाद उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे कोट की जेब में 3.5 रुपए पड़े हैं, इनमें कुछ और पैसे मिलाकर थोड़ी सी वो मंगा दो। मंटू मामू की आंखों में उस वक्त भी अपने लिए कोई शायबा मौजूद नहीं था।
0: अपनी एक तहरीर में मंटो ने लिखा है, सादत हसन फानी है लेकिन मंटो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। और बिलाशुबा उनकी तहरीरें सादत हसन मंटो को आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं।

एक तख्लीक़कार सादत हसन मंटो। अभी आपने ये फीचर सुना। सदाकार थे ए एम रज़ा, मोहम्मद आयतुल्ला, शुमाइला परवेज़ और दानिश इकबाल। इस प्रोग्राम को आपके लिए तर्तीब दिया था इंतज़ार अली सैफ़ी ने। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 4 बजने ही वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अमरनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है, देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। इस बीच वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बम्बई में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भू विज्ञान से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि अतीत में कार्बन कैप्चर के कई सफल प्रयोग हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे, जबकि चालक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का निवासी था। ये दुर्घटना आज तड़के काकीरा लाहरू सड़क पर हुई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 4:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। खोए हुए व्यक्ति का नाम आरिफ, उम्र है 45 वर्ष, ये पुरुष हैं, कद इनकी लगभग 6 फिट है, शरीर की बनावट सामान्य है और रंग इनका सांवला है। इनको अंतिम बार देखा गया था 25/3/2026 को सुबह 11 बजे जमशेद गार्डन ग्राम इचौली में। और इनके जो पिताजी का नाम है वो है नशरीन, इनके पिताजी का नाम है नशरीन। और इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त हो तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना इचौली मेरठ। और आरिफ जी का जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा ठीक नहीं है, और इन्होंने सफ़ेद कुर्ता और कहाई लोवर पहना हुआ है। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है अलीशा, पुत्री गुलेश्वर, निवासी ग्राम बजौट जामिया के सामने, थाना लोहिया नगर। ये महिला हैं, इनकी उम्र 18 वर्ष है, रंग गेहुआ है, कद इनका लगभग 5 फीट है, चेहरा अंडाकार है, शरीर की बनावट इनकी सामान्य है। इन्होंने सफ़ेद फ्रॉक और काली सलवार पहन रखी है और ये मानसिक तौर पे थोड़ी सी कमज़ोर हैं। इनको अंतिम बार 12/3/2026 को घर पे देखा गया है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको प्राप्त हो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना लोहिया नगर मेरठ। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम गौरव जैन, पुत्र जीवन कुमार जैन, निवासी 398 गली नंबर 6, नेहरू नगर थाना नौचंदा मेरठ। इनकी उम्र है 38 वर्ष, ये पुरुष हैं, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा भी इनका सामान्य है। इन्होंने पिंक कलर की कमीज़ व डार्क ब्राउन पैंट और पैरों में स्लीपर पहन रखा है। इनके बारे में किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी प्राप्त है तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। थाना नौचंदी मेरठ। और इनको अंतिम बार देखा गया था 17/3/2026 को, अपने घर से गया था और वापस नहीं आया। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है मीनाक्षी, पुत्री कृष्णपाल, निवासी इनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, शरीर की बनावट पतला है, चेहरा भी इनका पतला है, रंग गेहुआ है। और इनको अंतिम बार देखा गया था 11/3/2026 को ग्राम झुनझुनी से। और इन्होंने आसमानी कलर का सूट पहना है, पाँव में इनके चप्पल है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। थाना SHO बहसुमा जनपद मेरठ। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम विकास, पुत्र मिंटू, निवासी ग्राम जटपुरा थाना रोहटा जिला मेरठ। इनकी उम्र है 22 वर्ष, ये पुरुष हैं, कद 5 फीट 5 इंच है, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट औसत है, आंख नाक कान औसत है। इन्होंने हरे रंग की शर्ट, नीले रंग का लोअर, हरे रंग की हवाई चप्पल पहन रखी है और इनको अंतिम बार देखा गया था 16/3/2026 को ग्राम जटपुरा, थाना रोहटा, जिला मेरठ में। इनके बारे में किसी प्रकार की भी जानकारी अगर आपको प्राप्त हो, कृपया हमें इस पते पर संपर्क करें। SHO थाना रोहटा, जनपद मेरठ। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम श्रीमती तान्या शर्मा, पत्नी श्री अमित कुमार शर्मा, निवासी ग्राम कैथलवाड़ी, थाना रोहटा, जिला मेरठ। इनकी उम्र 35 वर्ष है, ये महिला हैं। कद इनका 5'2" है, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट आँख नाक कान औसत है, चेहरा सामान्य है। इन्होंने सफ़ेद रंग के सूट सलवार, नीले रंग की हवाई चप्पल पहन रखी है। इनको अंतिम बार देखा गया था 16/3/2026 को। इनके बारे में किसी प्रकार की भी जानकारी अगर आपको मिले तो हमें संपर्क ज़रूर करें। थाना SHO रोहटा, जनपद मेरठ। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम सुधीर त्यागी, सन ऑफ श्री कैलाश चंद्र त्यागी। इनकी उम्र 55 वर्ष है, ये पुरुष हैं। कद 5'9" है, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट सामान्य है। बाईं आंख पर इनके चोट का निशान है। इनको अंतिम बार अगस्त 2018 में देखा गया था और घटना स्थल है 122 न्यू मोहनपुरी। इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त हो तो हमें ज़रूर सूचित करें। थाना SHO थाना न्यू मोहनपुरी, मेरठ। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम मनसवी गुप्ता, पुत्री विजय कुमार गुप्ता। इनकी उम्र 19 वर्ष है, ये महिला हैं। कद 5'2", रंग काला है, शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा गोल है इनका और इन्होंने जीन्स और टॉप पहन रखा है। और अंतिम बार इन्हें CCS यूनिवर्सिटी में देखा गया था। इनके बारे में किसी प्रकार की भी जानकारी प्राप्त हो तो हमें कृपया इस पते पर सूचित करें। SHO थाना पुरानी मोहनपुरी, मेरठ। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
3: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, has invited applications for two positions of young professionals under the AICRN on potential crops project. The engagement is purely temporary up to 30th September 2026 with a consolidated salary of 30,000 rupees per month. Candidates with a graduate degree in science, commerce or computers and knowledge in IT applications, MS Office and virtual meeting platforms are eligible to apply. The walk-in interview will be held on 18th May 2026 at ICAR NBPGR New Delhi. For details, kindly go on to the website, that is at www.nbpgr.org.in. The Engineering Department, Chandigarh Administration, has invited applications for one post of Executive Engineer Horticulture on deputation basis from officers of central or state governments, public sector undertakings, semi-government, autonomous or statutory organizations. The post carries pay level 11. The deputation period will initially be for 1 year, extendable up to 3 years. Eligible and willing officers may submit their applications through proper channel within 60 days from the date of publication in the Employment News. Detailed eligibility criteria, prescribed format and related documents are available on the official website, that is at www.chandigarh.gov.in. National Institute of Design, Madhya Pradesh, an institution of national importance under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has invited offline applications for faculty positions including Principal Designer Professor and Senior Faculty Designer Associate Professor on direct recruitment basis. The posts are in pay levels 13 and 12 as per the 7 CPC. Eligible candidates possessing postgraduate qualifications in design along with relevant experience may apply. Detailed advertisements, specialization requirements, eligibility criteria and application forms are available on official website, that is www.nidmp.ac.in/careers. The last date for receipt of hard copies of applications through registered or speed post is 1st June 2026. The Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India, has invited applications for filling up 30 posts of stenographer grade 1 in level 6 as per the 7 CPC pay metrics on deputation basis. The deputation will be governed by the terms and conditions prescribed by the Department of DOPT from time to time. Detailed eligibility criteria, deputation guidelines and application performa is available on the official website. Do visit www.cga.nic.in. National Medical Library under the Directorate General of Health Sciences has invited applications to fill up 5 posts of Assistant Library and Information Officer Group B gazetted Level 7 on deputation or short-term contract basis. Eligible and interested candidates may submit their applications in the prescribed format through proper channel to the Deputy Director, National Medical Library, Ansari Nagar, Ring Road, New Delhi, 110029 within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. Detailed eligibility criteria, terms and conditions, and application format is available on the Directorate General of Health Services. Kindly visit the website, that is at www.dghs.gov.in, and do apply within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. I repeat the website, that is at www.dghs.gov.in, or you could also go on to www.main.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार।

0: नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड इन पदों के लिए संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। ये संविदा वार्षिक आधार पर होगी, जिसे 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पद का नाम है पीजीटी गणित 1 पद, काउंसलर 1 पद, नर्सिंग सहायक 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक 1 पद, पीटीआई सह मैट्रन महिला और PEM 2 पद तथा सामान्य कर्मचारी 2 पद। आवेदन करने हेतु पात्रता शर्तें स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.sainikschoolpungalwa.nic.in। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 18 मई 2026, जबकि इंटरव्यू 22 और 23 मई 2026 के बीच किए जाएंगे। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इन पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं। TGT अंग्रेजी अनारक्षित, काउंसलर अनारक्षित, आर्ट मास्टर अनारक्षित और संगीत शिक्षक का पद भी अनारक्षित है। TGT अंग्रेजी का वेतनमान रहेगा 25,000 रूपए से 50,000 रूपए। इसी प्रकार काउंसलर के पद का वेतनमान भी 25,000 से 50,000 रूपए रहेगा, जबकि आर्ट मास्टर और संगीत शिक्षक के लिए वेतनमान 20,000 से 25,000 रूपए का रहेगा। यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। होटल प्रबंधन खानपान एवं पोषण संस्थान अहमदाबाद शिक्षण सहयोगी के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 1 पद सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समेकित वेतन रहेगा 25,000 रूपए प्रतिमाह। पूरी जानकारी के लिए देखिए होटल प्रबंधन खानपान और पोषण संस्थान अहमदाबाद की ये वेबसाइट www.ihmahmedabad.com। 200 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य IHM अहमदाबाद के नाम आवेदन के साथ भेजना होगा। ऐसा न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के अंदर। सैनिक स्कूल सतारा में इन रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। TGT गणित 2 पद, TGT हिंदी 2 पद, TGT सामाजिक विज्ञान 1 पद, TGT मराठी कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान और विद्यालय चिकित्सा अधिकारी, इन सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है, जबकि वार्ड बॉय मैट्रन छात्रावास के लिए 3 रिक्तियां उपलब्ध है। ये सभी पद अनारक्षित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा PO बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार सतारा महाराष्ट्र में अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainiksatara.org। अर्नेट इंडिया इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक समूह का 1 पद, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी समूह का 1 पद, तकनीकी सहायक समूह ख 1 पद और निजी सहायक समूह ख 1 पद। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र और अन्य विवरणों के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ernet.in। कोई भी संशोधन परिवर्तन आदि अर्नेट वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट न्यूज। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्व को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के संस्करण में मैं हूं आपके साथ अतहर सईद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो अतहर, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट अतहर सईद। वेल लिसनर्स, रेगे म्यूजिक एंड बॉब मार्ली गेन इमेंस ग्लोबल पॉपुलैरिटी। यस, बॉब मार्ली बाय कंबाइनिंग यूनिक म्यूजिकल एलिमेंट्स, पावरफुल सोशल मैसेजिंग एंड रेबेलियस आर्टिस्ट्री made reggae music famous. Today we observe his death anniversary. We will talk about him later in our program, but first we begin with the news headlines first.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की।
1: West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state.
0: केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की।
1: SBI research says country's economy remains resilient amid global headwinds. Projects growth is 6.6% in the current fiscal.
0: IPL क्रिकेट में आज शाम पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Technology Day. Well, Athar, today we bring you a very special extending program on the occasion of National Technology Day. Every year on the 11th of May, India celebrates this important day to honor the remarkable achievements of our scientists, engineers, innovators and researchers who continue to shape the nation's future through science and technology. And today's program is a journey through India's scientific milestones, inspiring innovations and the dreams that are transforming a nation into a global technological powerhouse. And dear listeners, National Technology Day is observed every year to commemorate one of the proudest moments in India's scientific history. On this day in 1998, India successfully conducted a series of nuclear tests in Pokhran, Rajasthan, under Operation Shakti. And this test demonstrated India's scientific capability and technological strength before the world.

0: निश्चित रूप से शाबाशियां उन वैज्ञानिकों को जो कि आज के दिन को सफल और सार्थक बनाते हैं। अभिषेक, इस सफल मिशन ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों के दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और समर्पण को दर्शाया। ये केवल एक वैज्ञानिक घटना मात्र नहीं थी, बल्कि ये राष्ट्रीय आत्मविश्वास का एक क्षण था। ये परीक्षण भारत के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक के कुशल नेतृत्व में किए गए, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जो लाखों युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये अभियान असाधारण सटीकता, गोपनीयता और टीम वर्क के साथ संचालित किया गया था। वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया और ये सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी स्वदेशी विशेषज्ञता के माध्यम से विश्व स्तरीय तकनीकी सफलता हासिल कर सकता है।
1: Yes, but Arthur and listeners, that's not all. National Technology Day also commemorates another historic achievement, the successful flight of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. And this aircraft represented India's growing capabilities in aviation technology and self-reliance in aerospace engineering. And the same period also witnessed important advancements in missile development and defense research, strengthening India's position globally. And so every year, National Technology Day,

0: reminds us that innovation, science and determination can transform the destiny of a nation. So dear listeners, have you ever imagined life without technology? No smartphones, no internet, no online classes, no digital banking, no GPS navigation, no advanced medical treatments. Well, Athar, can you imagine such a scenario?
1: हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने अभिषेक. प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर हिस्से में गहराई से जुड़ी हुई है. आप महसूस करके देखें कि जिस पल हम सुबह उठकर अपना फ़ोन देखते हैं, अपना स्मार्टफोन देखते हैं, उस पल से लेकर रात को बल्ब बुझने तक, यानी बल्ब के ऑफ होने तक, टेक्नोलॉजी हर जगह हमारे आसपास मौजूद है. किसान की अगर बात करें तो किसान अब मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले ऐप्स और स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं. डॉक्टर्स रोबोट की मदद से जटिल सर्जरी करने में सक्षम नज़र आते हैं. छात्र दूर दराज के गांवों से वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं. डिजिटल पेमेंट ने खरीदारी को बेहद आसान और बेहद तेज़ बना दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो व्यवसायों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन टीमों की भी वो मदद करता है. अभिषेक, टेक्नोलॉजी महज मशीनों के बारे में नहीं है बल्कि ये मानव जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है. ये समय बचाती है, अवसर पैदा करती है, लोगों को जोड़ती है और समस्याओं को हल करती है. आज के दिन हम देखते हैं कि भारत तेजी से दुनिया के अग्रणी इनोवेशन हब में से एक बनता जा रहा है. है कि नहीं अभिषेक?
0: Absolutely, Athar and friends, India's journey in science and technology has been truly remarkable. From launching satellites into space to becoming a global IT leader, India has shown the world what determination and talent can achieve. Now let us take a look at some milestones that made every Indian proud. Athar, you know, India Space Agency, Indian Space Research Organization, successfully launched missions like Chandrayaan 3, which made India the first nation to land near the Moon's South Pole. Then, of course, the Mars Orbiter mission, making India the first Asian nation to reach Mars orbit successfully on its first attempt. Do you remember, Athar?
1: बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक. प्रौद्योगिकी के सहारे भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है. अब भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन और रिसर्च का एक वैश्विक केंद्र भी बन गया है. आज भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक दुनिया की कुछ सबसे उन्नत तकनीकों में सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं. सिलिकॉन वैली से लेकर अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं तक भारतीय प्रतिभा हर जगह अपनी चमक बिखेर रही है. और शताब भविष्य तो और भी उज्ज्वल नजर आता है. क्यों अभिषेक?
0: Yes, Athar, and India is now focusing strongly on artificial intelligence, which is of course the in thing, isn't it? And then quantum computing, semiconductor manufacturing, biotechnology, renewable energy, electric vehicles, robotics, cyber security, green technologies. Well, this sector is expected to transform the world in the coming decades, and India is preparing to lead.
1: बिल्कुल अभिषेक. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वैज्ञानिकों, उन इनोवेटर्स को श्रद्धांजलि दी जिनके समर्पण ने देश को मजबूत बनाया है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 1998 के सफल पोखरण परीक्षणों के पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को गर्व के साथ याद करता है. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है. उन्होंने कहा कि इनोवेशन अवसरों का विस्तार कर रहा है, विकास की गति बढ़ा रहा है और सभी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त बना रहा है.
0: Yes, and he also emphasized the government's continued focus on encouraging research, supporting innovation, empowering young talent, developing indigenous technologies and creating solutions that benefit society.
1: अभिषेक, एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों को राष्ट्र के गौरव और आत्मसम्मान का सच्चा निर्माता बताया. श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान देने में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभा को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और ऐसे समाधान तैयार करने पर केंद्रित है जो राष्ट्रीय प्रगति और नागरिकों की आकांक्षाओं दोनों को पूरा करे. देखा जाए तो वास्तव में हर तकनीकी सफलता के पीछे वर्षों का मौन समर्पण, कड़ी मेहनत और त्याग छिपा होता है. अभिषेक.
0: Yes, and now something different, Athar. Now, this dear young listeners, this segment is especially for you. National Technology Day is not only celebrating achievements of the past, it is also about inspiring the innovators of tomorrow. Who knows? The next revolutionary app, maybe the next scientific breakthrough, the next life-saving invention could come from one of you listening today. Curiosity is the beginning of innovation, Athar. And every great inventor wants

0: started with a simple question: why, how, what if? And India's future depends on young minds that are creative, courageous and determined.
1: और अभिषेक, आज हम देखते हैं कि देश भर के छात्र रोबोट बना रहे हैं, नए नए ऐप्स डिज़ाइन कर रहे हैं, विज्ञान मेलों में हिस्सा ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहे हैं और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कई स्कूल और कॉलेज प्रयोगशालाओं, हैकाथॉन और शोध परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी ऐसे दरवाजे खोल रही है अभिषेक, जिनके बारे में पिछली पीढ़ियाँ केवल सपना ही देख सकती थी, और आज के डिजिटल दौर में ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है।
0: Yes, so dear students, here are some simple tips. Read more, ask questions, experiment boldly, learn continuously, and never stop dreaming. Because innovation begins with imagination. And listeners, one of the most beautiful aspects of technology is its ability to improve society. Technology can help solve real-world problems. For example, clean energy technologies help fight climate change. Medical technologies improve healthcare access. Educational apps bring learning to remote villages. Disaster warning systems save lives. Digital governance increases transparency and efficiency. And Athar, today India is using technology not just for economic growth, but also for social transformation. And the true success of innovation lies not only in profit or power, but in making life better for people. And that is the spirit of National Technology Day celebrates.
1: बिल्कुल अभिषेक, आज जब हम प्रगति और इनोवेशन का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी एक पल रुककर सलाम करें जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान और खोज के लिए समर्पित कर दिया है। कई लोग लेबोरेटरी के दरवाज़ों के पीछे चुपचाप काम करते हैं, कई लोग मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में वर्षों बिता देते हैं, कई लोग विज्ञान की उन्नति के लिए अपने आराम का त्याग कर देते हैं, तभी उनका योगदान राष्ट्रों के भविष्य को आकार देता है। भारत की वैज्ञानिक यात्रा ऐसे दूरदर्शी लोगों के प्रयासों से बनी है। मिसाल के तौर पर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सतीश धवन ऐसे कई सारे नाम हैं। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है अभिषेक।
0: यस, सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन अथर, साइंस इज द लाइट दैट रिमूव्स डार्कनेस एंड टेक्नोलॉजी इज द ब्रिज दैट कैरीज ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। We wish all our listeners a very happy and inspiring National Technology Day. Keep innovating, keep learning, keep dreaming. Jai Hind.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है आज अभिषेक।
0: And we start off with a story from West Bengal. And in West Bengal, Subhendu Adhikari took the oath of office as Chief Minister on Saturday. We have more from a correspondent.
2: In a historic shift for West Bengal, Shubhendu Adhikari took the oath of office as Chief Minister on Saturday at the Brigade Parade Ground in Kolkata. The ceremony coincided with Pochishe Boishakh, the birth anniversary of Rabindranath Tagore, adding cultural weight to the political transition. Shubhendu Adhikari, who defeated former Chief Minister Mamata Banerjee in Bhavanipur Assembly constituency, leads the state's first BJP government. Among others who took oath as Minister designate included Dilip Ghosh and Ognimitra Paul, Ashok Kirtania, Khudiram Turu and Nishit Pramanik. The event was a major show of strength for the NDA, attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and several others. Also, numerous chief ministers from NDA and BJP ruled states and party president Nitin Naveen alongside other leaders were present on the occasion. The program began with a floral tribute to Tagore, signaling a blend of regional pride and national unity. Shushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
1: Kolkata ke baad ab rukh karte hain Agartala ka, Abhishek.
0: Yes, and it began as a dream, fragile, ambitious and deeply rooted in a passion for culture. Well, in 1972, a group of young enthusiasts in Agartala set out on a journey under the banner of Chandanir, envisioning a platform for diverse cultural expressions. And like many dreams, the path was not easy. The initiative struggled to find its footing and eventually slipped into prolonged pause. Yet the hunger remained quite persistent and powerful. And then in 1976, Athar, that inner calling found its voice once again with renewed energy and conviction. Chandanir returned this time with a vibrant celebration of the birth anniversary of Rabindranath Tagore on the 25th of Boishakh. We have a report.
3: What began then was not merely an event.

आज ही पुण्यतिथि है अपने समय के लोकप्रिय गायक तलत महमूद की, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने स्वर के जादू जगाए। फिल्म राखी, अनमोल रत्न और आरजू से उनके करियर को विशेष चमक मिली। फिल्म आरजू की गज़ल, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपार लोकप्रियता हासिल की। फिलहाल उनकी आवाज़ में ये एक तोहफा सुनते हैं, तेरी आँख के आंसू पी जाएं।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अतः सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकटकाल के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात 76.78% रहा। किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरक शामिल किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपये का हो गया है, वहीं रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 में देश में लगभग 350 स्टार्टअप थे, लेकिन आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। पुदुचेरी में बुधवार को एनडीए नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीम के लिए ये मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और देखो सरिता, आज की लोक रंजनी कार्यक्रम में हम विविध तरीके से जो हमारी परंपराएं होती है, जो हमारी संस्कृति होती है, उसकी झलक दिखाने के लिए कुछ ऐसे हम लोग गीत लेकर के आए।
1: बिल्कुल, तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूबिया भारती के गाए लोकगीत के साथ।

0: तो अभी हम सुन रहे थे रूबिया भारती से ये लोक संगीत।
1: लोकगीत की अगर हम बात करें तो लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी सरिता अगर देखा जाए तो गांव की जो परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, उसको वो चलाते रहते, आगे वो चलता रहता है जन्म जन्मांतर तक। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ये बातें होती हैं जो हमारी, चाहे खेती किसानी से संबंधित हो, चाहे हमारे गीत गौनही से संबंधित हो, या जो शादी में सारी चीज़ें परंपराएँ होती, उन सब को ले करके एक शब्दों को एक पिरो देते हैं धागे के रूप में, एक लोकगीत के रूप में, तो सुनना भी बहुत ही आनंदित करता है मन को।
0: बहुत ही खूबसूरत वर्णन यमुना बहन। और अब हम सुनते हैं बबीता चौधरी से ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे बबीता चौधरी से ये लोक गीत। और यमुना बहन, जैसा कि हम अपने लोक गीत का वर्णन कर रहे थे, इसमें निश्चल प्रेम, विरह, उल्लास, ऋतु परिवर्तन, विवाह, त्योहार के साथ साथ हमारी मिट्टी की भी महक दिखती है और हमारी इस मिट्टी में ना जाने कितने वीर भी जन्म लिए हैं।
1: बिल्कुल, तो देशभक्ति गीत की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, सुनते हैं रोली बरुआ की आवाज़ में ये लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे रोली बरवा की आवाज़ में ये लोकगीत। और अब जब हम बात कर रहे हैं लोकगीत की, तो लोकगीत में कोई ऐसी वजह नहीं है जहाँ से वो धुन, वो गीत निकल के ना आए। बात अगर घर में नए मेहमान या छोटे बच्चे की जब किलकारी बजती है ना यमुना महल, तो उस पे भी धुन और गीत निकलते हैं।
1: बिल्कुल, बिना उसकी तो बधाई की तो बिना काम ही नहीं चलता। और जच्चा की जब तक खिंचाई नहीं होती तब तक तो मज़ा ही नहीं आता।
0: तो आइए सुनते हैं हम अब बबीता से ये लोकगीत।

0: कविता की गाए इसी लोकगीत के साथ लोक रंजनी कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन चलते चलते आपको भी बता दें कि अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा 6:30 से लेकर 7 तक ग्राम संसार, और 7:05 से लेकर के 7:30 तक आप सुनेंगे कृषि जगत।
1: और आज लोक रंजनी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल।
0: सभी सुनने वालों को हमारा
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, मैं अभिषेक कपिल।
1: और मेरा नाम है दर्पंती क्या, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी।
0: खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि आखिरी पल तक कहानी बदल सकती है। आज जो आगे है, कल वही संघर्ष करता दिख सकता है, और जिसे लोग कम आंक रहे हों, वही अचानक पूरा मुकाबला पलट दे। वक्त खेल में भी बदलता है, जिंदगी में भी। इसलिए खिलाड़ी आखिरी सीटी तक लड़ना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक उम्मीद बाकी है।
1: जी हाँ, आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है, जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, कभी लोग आपको पीछे मान लेंगे, लेकिन कई बार थोड़ा सा और टिक जाना, थोड़ा और कोशिश करना पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि खेल हो या जिंदगी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसलिए जब तक खेल बाकी है, तब तक खुद को कभी बाहर मत समझिए। इसी के साथ आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे फुटबॉल, साथ के साथ क्रिकेट पर बात करेंगे, बैडमिंटन पर बात करेंगे और थोड़े से कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ घट रहा है रेसलिंग, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में।
1: वेट लिफ्टिंग की बात करें तो हम बात करेंगे आज एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, उसके बाद हम जाएंगे एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप पे, और उसके बाद बात होगी सीनियर ओपन रैंकिंग रेसलिंग के बारे में।
0: आईपीएल के बारे में चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि कल दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिले इंडियन प्रीमियर लीग में, आज भी एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है शाम को, लेकिन उससे पहले बातचीत करेंगे फुटबॉल पर क्योंकि एक महीना, जी हाँ 11 जून से फीफा विश्व कप शुरू होने वाला है और उसके अलावा कुछ और फुटबॉल से जुड़ी खास खबरें हैं, भारत से जुड़ी खास खबरें हैं, वो आपको सुनाएंगे, तो सुनते रहिए अगले आधे घंटे खेल खिलाड़ी।

0: तो जैसा हमने बताया 11 जून से शुरू होने वाला है फीफा विश्व कप 2026। केवल एक महीना शेष है। बात करते हैं फीफा विश्व कप पे।
1: Yes, he's round the last defender, onto his right foot.
2: एक छोटा सा बच्चा अपने कमरे की दीवारों पर फुटबॉलर्स के पोस्टर लगाए हर रात सोने से पहले एक ही सपना देखता है कि एक दिन वो भी वर्ल्ड कप खेलेगा। अब सोचिए वैसा ही एक ना जाने कितने खिलाड़ियों का सपना 2026 में सच बनने जा रहा है।
0: अब से ठीक एक महीने बाद शुरू हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026, इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप। पहली बार 48 टीमें, 104 मुकाबले, 3 देशों यानी यूएसए, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में पूरी दुनिया साक्षी बनेगी।
2: ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं जो अपने देश को उस सुनहरी ट्रॉफी को उठाते देखना चाहते हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बड़ी टीमों की नहीं है, ये कहानी है उन देशों की जिन्होंने सालों तक इंतजार किया, हार झेली, आलोचनाएं सुनी, लेकिन कभी सपना देखना नहीं छोड़ा। इराक, उज़्बेकिस्तान और कई नए चेहरे इस बार मैदान पर उतरेंगे अपनी पहचान बनाने के लिए। और दूसरी तरफ इटली की टीम का बाहर होना सबसे बड़ा उलटफेर रहा। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम लगातार तीसरी बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। यही तो फुटबॉल है, यहाँ इतिहास नहीं मुकाबले वाले दिन का जज्बा जीतता है।
0: दुर्भाग्यवश भारतीय टीम विश्व कप में क्वालिफिकेशन हासिल करने के आसपास भी नहीं पहुंची। ऐसे में हम सभी के मन में यह सवाल उठता है कि क्यों भारत फीफा विश्व कप में

0: क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाता है। इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश की हमने और बातचीत की जाने माने फुटबॉल कोच केशव दत्त से, जो बताते हैं,
1: ये प्रश्न जब से मैं खेल रहा हूँ और खेलने के बाद जब खेल से संन्यास लिया और कोचिंग में आया और अब कोच एजुकेटर भी हूँ, टीमों के साथ भी जाता हूँ, ये तब से ही चल रहा है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते। अगर आप नियत हो और आप वाकई इसको उस दृष्टि से देखते हैं कि हमें भारत को वर्ल्ड मैप में लाना है, फीफा में क्वालिफाई कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि जो ग्रास रूट लेवल है उस पर तवज्जो देनी होगी। जब जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, है ना। हम बबूल का पेड़ बो के तो आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मैं किसी को कोस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्टों को तवज्जो देते हैं स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, उसी तरह की तवज्जो फुटबॉल को देनी होगी। ये नहीं कि आप कोई भी फुटबॉल सिखा रहा है या स्कूलों में उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो बेसिक तो जहाँ पे मास पार्टिसिपेशन है वो स्कूल है। हर बच्चा जो है एकेडमी में नहीं जा सकता, हर माँ बाप इतने समर्थ नहीं होते कि वो इतना पे करके एकेडमी में भेज सके। बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहीं पे अगर उसको उस तरह की अच्छी कोचिंग मिले, क्वालिफाइड कोचेज हों जो लाइसेंसधारी हों, जिनके पास AIFF और AFC फीफा का सर्टिफिकेट हो और वो कोचिंग कराने के सक्षम हो, तो उनको उनकी वहां पे नियुक्तियां होनी चाहिए। कॉलेज और क्लब के बीच काफी गैप। स्कूल के बाद बच्चा पास आउट होता है तो कहाँ जाए, कहाँ ट्रेनिंग ले। पहले से मैं कहूंगा कि प्लेटफॉर्म्स कोचिंग के बड़े हैं, लेकिन क्या सिखाने वाले उतने सक्षम हैं, क्या उस तरह का सपोर्ट उनको मिल रहा है, ये इस पे हमें ध्यान देना होगा।
2: 11 जून 2026 से 19 जुलाई के फाइनल तक दुनिया की हर सड़क, हर घर, हर दिल बस फीफा की एक ही धुन पर चलेगा। सीनियर फीफा टूर्नामेंट में जहां भारतीय चुनौती नहीं होगी, लेकिन भारतीय फैंस के लिए भी एक बड़ी खबर है। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम इस वक्त एक बड़े मौके के सामने खड़ी है। लेबनान के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत के बाद यंग टाइग्रेस पहली बार AFC अंडर 17 वुमेन्स एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, जहां अब उनका सामना मजबूत चीनी टीम से होगा। चीन ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन भारतीय टीम का आत्मविश्वास भी इस समय काफी ऊंचा है। भारत अगर चीन को हराने में कामयाब रहता है तो टीम सीधे फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 का टिकट हासिल कर लेगी। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय महिला फुटबॉल के इतिहास का सबसे अहम पल बन सकता है।
1: जो अंडर 17 गर्ल्स का वर्ल्ड कप है ये मोरक्को में होना है इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में, तो एक अच्छा उनके लिए मौका है। काफी लंबे समय बाद यहाँ पे एक उनको मौका मिला है। और देखिए, जो चार टीमें एशिया से क्वालिफाई होंगी वो चारों ही टीमें सेमीफाइनल वाली जो है सीधे क्वालिफाई करेंगी, जहां 24 टीमें भाग ले रही है, तो एक अच्छा मौका है। लेकिन मौके से काम नहीं होगा, एक अच्छा प्रदर्शन जो इनको एज ए टीम होल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मतलब पिछला मैच ये जापान से हारे हैं 3-0 से, लेकिन लेबनन से 4-0 से जीते भी हैं। तो जापान के साथ पहले तो ठीक खेले थे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे हाफ में वो स्ट्रगल करे और वहां पे गोल कंसीड किए। हालांकि जो इनकी हेड कोच है पामेला कॉन्टी, इटली से हैं, वहां की इटली को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उनकी नेशनल टीम प्लेयर रही हैं, और जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट भारतीय टीम के साथ इन गर्ल्स टीम के लिए किया था। तो उम्मीद करते हैं आज एक अच्छा फाइट देगी, और जिस पद्धति से ये खेलते हैं भारतीय टीम, इनकी 4-1-4-3-3 की पद्धति से खेलती है, अच्छी फॉर्मेशन है अगर डिसिप्लिन रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हर एक को अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम हो और एक कंसिस्टेंसी उनके उसमें रहे एफर्ट में, और कलेक्टिव एफर्ट्स अगर उनके रहें तो काफी अच्छी टक्कर वो दे सकती चाइना को। ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है, और जैसा हमने देखा कि पिछले मैचों में मारे हैं कृतिका बर्मन ने, अलवरा ने मारे हैं, जोया है, वहीं अनुष्का कुमारी जो है वो भी अच्छी खिलाड़ी है। तो अगर टीम आज एकजुट होके खेले और अपना संयम बना के रखे तो कोई बड़ी बात नहीं कि आज एक अच्छी उलटफेर ये कर दें और चाइना को मात दे सकती हैं।
0: यहाँ मात दे सकती हैं, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। खैर अभी आपको बता दें कि ये मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है और इस मुकाबले में करीब करीब 40 मिनट का समय हो चुका है और अब से कुछ पलों पहले ही इस मुकाबले का पहला गोल हुआ है। चीन ने वो गोल दागा है, यानी उससे पहले करीब 38 मिनट तक भारतीय टीम ने कड़ी चुनौती चीन को दी, 0-0 पर रोक कर रखा था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके हिसाब से चीन ने पहला गोल कर दिया है, 1-0 से चीन आगे है। क्या भारतीय टीम मजबूत वापसी कर सकेगी, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। खैर निगाहें हमारी पुरुषों के अंडर 17 AFC एशियन कप पर भी बनी हुई है, जहां पर कल भारतीय चुनौती का समापन हो गया। अभिषेक कपिल आपको और डिटेल दे रहे हैं।
2: इससे विपरीत जेदा में खेले गए पुरुष AFC अंडर 17 एशियन कप के मुकाबले में भारत को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-3 की हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने का सपना भी टूट गया। पहले ऑस्ट्रेलिया से 0-4 की हार और फिर उज्बेकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए सीख और संघर्ष दोनों लेकर आया। उज्बेकिस्तान ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और भारत को वापसी का मौका नहीं दिया। सबसे पहले लाजिंस अब्दुरमोई ने 32वें मिनट में गोल किया। इसके बाद 60वें मिनट में भारत के ही बांखेम डेनिस सिंह से बॉल लगकर भारत के ही गोल में चली गई, जिससे स्कोर 2-0 हो गया। फिर उज्बेकिस्तान के अकरोर बेक ने 78वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया और उज्बेकिस्तान की जीत को पुख्ता कर दिया।
0: जी तो ये तो बात थी AFC अंडर 17 एशिया कप की, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा है। बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी ग्लोबल फुटबॉल की।
3: वहीं विश्व प्रसिद्ध ला लीगा में बार्सिलोना ने अपना परचम लहरा दिया है। बार्सिलोना ने अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी रियाल मैड्रिड को 2-0 से हराकर 29वां ला लीगा का खिताब जीत लिया है। और खास बात यह रही कि यह जीत एल क्लासिको जैसे बड़े मंच पर आई, इसकी जरूरत नहीं है ये लाइन की। मैच की शुरुआत होते ही मार्कस राशफोर्ड ने शानदार फ्री किक से गोल दाग दिया और कुछ ही मिनट बाद फेरान टोरेस ने दूसरा गोल कर रियाल की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। दूसरी तरफ रियाल मैड्रिड का प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक रहा। इस जीत के बाद बार्सिलोना ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाई, उन्होंने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि जब बार्सिलोना अपनी लय में होती है तो फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं लगता, एक कला लगती है।
2: फुटबॉल में अब बात करते हैं इंडियन सुपर लीग की। टूर्नामेंट में कल दो बड़े मुकाबले खेले गए, जहां केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदान फुटबॉल क्लब को 3-1 से हराया, जबकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने चेन्नईन FC पर 4-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब सभी की नजरें आज के मुकाबले पर हैं, जहां ईस्ट बंगाल का सामना पंजाब से होगा। ईस्ट बंगाल इस समय 21 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और शानदार फॉर्म में चल रही है। ऐसे में आज की जीत उन्हें टाइटल रेस में और मजबूत बना सकती है। वहीं मोहन बगान भी 21 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है, जमशेदपुर तीसरे, बेंगलुरु चौथे और गोवा 5वें स्थान पर है।
4: Yes, he's round the last defender, under his right foot. Yeah!

0: अब बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की। भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 से बड़ी खबर आई है। भारत की युवा वेटलिफ्टर कोमल कोहर ने महिलाओं के 48 किलो वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। गांधीनगर में चल रही इस चैंपियनशिप में कोमल ने दबाव के बीच बेहतरीन लिफ्ट्स लगाई और भारत को पोडियम फिनिश दिलाई। कोमल का ये मेडल इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में चीन, नॉर्थ कोरिया और कजाकिस्तान जैसी मजबूत वेटलिफ्टिंग देशों के खिलाड़ियों के बीच पदक जीतना आसान नहीं होता। पूरे मुकाबले में कोमल ने शानदार संतुलन और आत्मविश्वास दिखाया और आखिर में भारत के लिए ब्रॉन्ज सुनिश्चित किया। भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए ये प्रदर्शन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में से पहले काफी अहम माना जा रहा है। मीराबाई चानू के बाद अब नई पीढ़ी की खिलाड़ी भी लगातार बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं और कोमल कोहर का ये मेडल उसी उभरते हुए आत्मविश्वास की बड़ी तस्वीर दिखाता है।
1: जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो प्रतियोगिता है महात्मा मंदिर एग्जीबिशन हॉल गांधीनगर गुजरात में चल रही है और इसमें स्वर्ण पदक जो हासिल किया है 48

किलोग्राम महिलाओं के वर्ग में उसमें हुआंग यी चिन ने पहला स्थान हासिल किया यानी स्वर्ण पदक हासिल किया, और उसी के साथ साथ फांग वान लिंग, ये दोनों ही खिलाड़ी चाइनीज ताइपे से आते हैं, उन्होंने रजत पदक हासिल किया। कुल 193 किलो गोल्ड मेडलिस्ट ने उठाया, कुल 192 किलो उठाया सिल्वर मेडलिस्ट ने। तो वहीं भारत की कोहार कोमल, जिनके बारे में हमने बताया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आज नहीं है, उन्होंने कुल 177 किलोग्राम स्नैच इवेंट और क्लीन एंड जर्क दोनों को मिलाकर उठाया। इसके बाद आपको बता दें कि आज ही पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के ऋषि कांता सिंह भी अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। खैर, चुनौती हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी भी पेश करने वाले हैं कल से शुरू होने वाले थाईलैंड ओपन में, उसकी बात कर लेते हैं।

जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की और थाईलैंड मास्टर्स की शुरुआत होने जा रही है कल से। जी हाँ, जहां पर भारत के टॉप खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। थाईलैंड ओपन की हम बात कर रहे हैं। थाईलैंड के शहर पटुमवान में स्थित निम्बुबुत्र स्टेडियम में ये मुकाबले खेले जाने वाले हैं, जिसमें भारतीय बैडमिंटन के हैवी वेट्स यानी बड़े बड़े नाम शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में थॉमस कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष टीम के सदस्य आयुष शेट्टी, श्रीकांत कदम भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मेन सिंगल्स में तो वहीं थरुण मनेपली नामक युवा खिलाड़ी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लक्ष्य सेन, जो कि सेमीफाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए थे चोट के चलते थॉमस कप में, वो भी कल वापसी करेंगे और फर्स्ट राउंड में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं वुमेन सिंगल्स में नजर होगी पीवी सिंधु पर, लेकिन उसके साथ साथ उन्नति हुड्डा पर भी नजरें होने वाली हैं, क्योंकि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद हाल ही में वो पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने टॉप 20 रैंकिंग में अपना नाम शुमार किया। इसलिए इस युवा खिलाड़ी पर नजर रखिएगा। एक और युवा खिलाड़ी, एक टीनेजर जो कि सेंसेशन बन के उभरी हैं, तन्वी शर्मा, उन पर भी नजरें होंगी। इसके अलावा ईशानी बरुआ, देविका सिहाग, अनमोल खर्ब भी भारतीय चुनौती पेश करेंगी वुमन सिंगल्स में। और साथ के साथ आपको यह बता दें कि मालविका बंसोद भी खेलते हुए नजर आएंगी। पिछले साल एक इंजरी होने के बाद इंडोनेशिया ओपन में उनको घुटने में इंजरी हुई थी, जिसके बाद करीब एक साल तक वो बैडमिंटन सर्किट से बाहर रही थी, लेकिन अब पूरी पूरी उम्मीद है कि वो एक मजबूत वापसी की ओर बढ़ रही हैं। इस साल भी उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स में शिरकत की है, उन पर नजरें रहेंगी। तो इसके अलावा डबल्स में भी अलग अलग वर्गों में चुनौती होगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो पर नजर रहने वाली है। तो वहीं बात करें मेंस डबल्स में, तो जाहिर सी बात है गोल्डन बॉयज की जोड़ी कहलाए जाने वाले चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी पर नजर होगी। तो भारतीय शटलर्स को थाईलैंड ओपन 2026 के लिए हमारी शुभकामनाएं।

0: अब आगे बढ़ते हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तरफ। ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार जज्बा दिखाया। 30 से 33 किलोग्राम वर्ग में यश कुमार ने यूए के कियान इकबाल को 5-0 हराया, जबकि 37 किलो वर्ग में सस्ता वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजीरते अली को दूसरे राउंड में आरएससी से हराकर फाइनल में जगह बनाई। 43 किलो वर्ग की बात करें तो समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के आदिबेक को 4-1 से हराया। 52 किलोग्राम वर्ग में सुदर्शन वासुदेवा चंदक ने ईरान के अमीर मेहदी शाद को पहले ही राउंड में आरएससी से हराकर दमदार जीत दर्ज की। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के मोसा को 4-0 से हराया, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुहम्मद अली बेदुरकुलोव को पहले राउंड में आरएसएस से मात दी। ये तो हुई कामयाबी की बात। अब इस टूर्नामेंट में जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं उनकी तरफ रुख करते हैं। हालांकि कुछ भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना भी करना पड़ा। रोहिन पोथिना कजाकिस्तान के यर्मेकुली से हार गए। नितिन को उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने 3-2 से हराया। नोकपोंगपा मेइती ओइना, पारशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयनी भी अपने अपने मुकाबले नहीं जीत सके। इसके बावजूद भारतीय टीम ने कई वर्गों में फाइनल में जगह बनाकर टूर्नामेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।
1: जी, और फिर बात करते हैं स्क्वॉश की। हमने आपको बताया था कल की वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जो कि खेली जा रही है इजिप्ट के गीजा में, वहां पर भारत के वीर चौटानी ने हायर रैंक्ड

0: भे सिंह को हराकर राउंड टू में जगह बनाई थी, लेकिन विश्व नंबर एक इजिप्शियन खिलाड़ी के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय चुनौती का समापन हो गया। लेकिन भारत से उम्मीदें रेसलिंग में हमेशा रहती हैं। सीनियर नेशनल रेसलिंग रैंकिंग चैंपियनशिप हो रही है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है अभिषेक बता रहे हैं?
1: हाँ, ये मुकाबला हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। उसमें सीनियर ओपन रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट 2026 में देश भर के पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन किया। इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में करीब 593 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, जो एक बड़ी संख्या है, जहां खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग के साथ साथ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में जगह बनाने का भी बड़ा मौका है। पहले दिन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट दीपक पुनिया, जिन्होंने 92 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। वहीं 125 किलो वर्ग में रोहित ने भी लगातार जीत दर्ज कर अपनी दावेदारी मजबूत की। कई युवा पहलवानों ने भी अनुभवी खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब सभी की नजरें फाइनल मुकाबलों पर हैं, जहां भारत के कई बड़े पहलवान अपनी रैंकिंग और राष्ट्रीय टीम में जगह मजबूत करने के लिए मैट पर उतरेंगे।
0: जी हां, तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं क्रिकेट की थोड़ी सी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में क्या कुछ घट रहा है, आइए उस पर बात करते हैं।

0: बातचीत कर रहे हैं हम अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की, जहां पर प्लेऑफ्स की जो दौड़ है वो गर्माती जा रही है। आपको याद दिला दें कि 70 मुकाबले कुल लीग स्टेज में खेले जाते हैं, लेकिन अब उसमें से 54 मुकाबले हो चुके हैं और कल दो टीमें बाहर हो चुकी हैं।
1: ये टीमें थी एलएसजी और मुंबई इंडियंस। तो एलएसजी का प्रदर्शन तो शुरू से ही खराब रहा जो हम देख रहे थे, लेकिन उसके अलावा मुंबई इंडियंस का बाहर हो जाना सबको काफी खल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े खिलाड़ी, ऐसे में इस टीम का बाहर हो जाना थोड़ा सा उनके फैंस के लिए परेशानी का मौका है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मुंबई इंडियंस वो टीम है जो कि 5 बार की चैंपियन रही है, और अगर आप टीम शीट पर नजर डालेंगे तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तमाम वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा बने हैं। इसीलिए टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ये हमेशा से टीम फेवरेट्स रही थी। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा 11 मुकाबलों में 8 बार, और केवल 6 अंक वो हासिल कर सके। 3 मुकाबले रहते ही वो बाहर हो चुके हैं। हेड कोच महिला जयवर्धन कहते हैं कि ये सीजन हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया।
2: The season, it's disappointing. We've had our opportunities. We were not good enough. We were not consistent enough with the ball, with the bat, and that showed the margins. I think, you know, we were probably 2-3 wins away from being in the same group of contenders to get into that playoff, but we didn't get those wins, and today was another classic example that, you know, we were short. So it's difficult for me to sum up a season right now. I have to give it some thought as well, and then figure out exactly. But yeah, I mean, we were not good enough with our skills and execution this season.
0: जी हाँ, वी वर नॉट गुड विद आर स्किल्स एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि कोई भी उन्होंने लीपा पोती करने की जरूरत नहीं समझी और बिल्कुल बेबाक तरीके से कहा कि हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। वही हाल कुछ टॉम मूडी का भी था, जो कि हेड कोच है लखनऊ सुपर जायंट्स के। आपको याद दिला दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की भी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी उनकी बैटिंग लाइनअप की टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि टीम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन शामिल थे, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही। हालांकि गेंदबाजी ने प्रभावित किया, मोहम्मद शामी ने अच्छा प्रदर्शन किया, प्रिंस यादव एक नई उम्मीद की तरह सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं भारतीय टीम के लिए उभरे हैं, और उसके अलावा बाकी खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन सराहनीय रहा गेंदबाजी में। लेकिन टॉम मूडी कहते हैं बैटिंग लेट अस डाउन।
3: आई थिंक इफ वी लुक एट आवर सीजन फ्रॉम अ ब्रॉड लेंस, आई थिंक आवर बैटिंग हैज लेट अस डाउन, देयर इज नो क्वेश्चन, पर्टिकुलरली आवर मिडिल ऑर्डर हैजंट फायर्ड and shown the consistency that's required to have that, you know, success on a consistent basis. You know, bowling has been pretty good. You know, if you look, you know, over the whole season, it's been, you know, we've been good in the power play. We've generally taken wickets and put pressure on the opposition, and we've struggled to maintain that pressure in the middle phase of the game. That's where generally the game has drifted. But overall, bowling has been pretty solid. Fielding, apart from tonight, has been pretty good. But it really, if you're being really critical, I think it's our batting that's let us down, and we haven't managed to put that perfect game together.
1: और अगर बात करें कल के मैच की, चेन्नई बनाम लखनऊ के बीच जो खेला गया मुकाबला, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें लखनऊ ने पूरी कोशिश करी, स्कोर बोर्ड पे 3 रन बनाए और 204 का लक्ष्य दिया, लेकिन उसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट शेष रहते हुए जीत लिया।
0: जी हाँ, लखनऊ की जो बल्लेबाजी थी वो मानो किसी रोलर कोस्टर की तरह आगे बढ़ी। पहले 5 ओवर में 77 रन बनाए, लेकिन उसके बाद अगले 10 ओवर में 6 विकेटें गवा कर केवल 77 रन और ही बना सके। आखिरी में शाहबाज अहमद ने एक अच्छी पारी खेलकर उनको अच्छा स्कोर जरूर बनवाया, लेकिन स्टार की तरह कल उभरे उर्विल पटेल, चेन्नई के युवा बल्लेबाज, जिन्होंने केवल 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जो आईपीएल के इतिहास का जॉइंट सबसे तेज शतक है। यशस्वी जायसवाल ने इससे पहले 13 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, और कल उर्विल पटेल ने भी अर्धशतक बनाया 13 गेंदों में, और इसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स को एक अच्छी शुरुआत मिली। हालांकि अंत तक लखनऊ सुपर जायंट्स लड़ती रही, क्योंकि कल करो या मरो का मुकाबला था। अंत तक वो आखिरी ओवर तक इस मुकाबले को लेकर गए। आखिरी ओवर में ऋषभ पंत के पास एक उलझन थी कि क्या वो अनुभवी शाहबाज अहमद को गेंद थमाए या फिर लेफ्ट हैंडर के सामने ऑफ स्पिनर एडिन माकरम को गेंद थमाए। उन्होंने एडिन माकरम का रुख किया और मुकाबला वो नहीं जीत सके। तो दूसरा मुकाबला भी इसी तरह का सांप सीढ़ी का खेल रहा, जिसमें भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या स्टार बन के उभरे। कृणाल पांड्या ने कल एक ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 167 के स्कोर को चेस किया। कृणाल पांड्या ने कल एक शानदार अर्धशतक बनाया। हाँ, उनके स्कोर पर आप नजर डालेंगे तो स्कोर कार्ड बताएगा 46 गेंदों में 73 रन बनाए, लेकिन इन 73 रनों की कीमत शायद और भी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि पूरी पारी में वो क्रैम्प्स से जूझ रहे थे और एक समय ऐसा आया जब वो दौड़ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए सिंगल डबल को मना कर केवल छक्के लगाने पर जोर दे रहे थे।
4: Cramps was very, very painful. I mean, it started from calf, went hamstring, glutes, and both the legs I was cramping. But again, I was very clear that I'm not going to go out. I'll fight through that pain and I'll make sure that whatever I can contribute for the team, I'll do it. Plus, you know, this was very, very, very crucial game for us, you know, especially how the this is fag end of the tournament, right? Every game matters. So it was very clear that, you know, I'll fight it through that pain and make sure that whatever and whichever way I can contribute, I'll contribute in that. But
0: जी हाँ, अंत तक लड़ते रहे कृणाल पांड्या और हालांकि वो भी आउट हो गए। एंड में 10 रन चाहिए थे आखिरी चार गेंदों में, जब भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पहले गेंद से चार विकेट निकाली थी, उन्होंने एक छक्का लगाकर मैच को पलटा और आखिरी गेंद पर आरसीबी ने जीत हासिल की। खैर, इस बल्लेबाजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसके लिए कृणाल पांड्या क्रेडिट देते हैं बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक को।
4: कार्तिक को बहुत बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से आरसीबी पिछले दो साल से, यू नो, एज अ बैटिंग यूनिट हम लोग ने जैसा परफॉर्मेंस किया है कंसिस्टेंटली, अगर आप देखो लास्ट ईयर भी जिस तरीके से एंटायर बैटिंग यूनिट ने जैसा परफॉर्मेंस किया, इस साल भी अगर देखो, ऑब्वियसली वी हैव हैड अवर अप्स एंड डाउन्स, बट एज अ बैटिंग यूनिट आई मीन लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू डी के। ही हैज स्पेंड लॉट ऑफ इंडिविजुअल टाइम विथ ईच प्लेयर एंड यू नो उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उस पर काम किया है, एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर द बैटर्स, एंड यस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू डी के हाउ वी हैव बैटेड एज अ बैटिंग यूनिट।
0: इसी जीत के साथ आरसीबी अब पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर पहुंच चुकी है। आज का मुकाबला दिल्ली बनाम पंजाब धर्मशाला में खेला जाएगा, इस पर हमारी नजरें होंगी। खैर, नजरें हमारी एएफसी अंडर 17 महिलाओं के एशियन कप पर भी है, जहां पर चीन ने हाफ टाइम में 2-0 की लीड ले ली है। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। मेरा नाम है दर्पण,
1: मैं अभिषेक कपिल
0: और हम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे इजाजत लेते हैं।
5: खेल खिलाड़ी खेल।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ

0: भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में 1ले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history,

0: केन्द्र प्रशासन पंचविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियम वीबीजी रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढ़ा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मंदिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजां अकरोत्। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मंदिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणुत्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भूहस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्ये केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम्।

संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम। और भाई जैसा कि यमुना बहन हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में,

0: शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं
1: और उस कोशिश का फल होता है कि हमारे किसान भाई बहन उसका फायदा उठाएं। और बहुत से लोग उठा भी लेते हैं, बहुत से लोगों को जानकारी का अभाव रहता तो नहीं उठा पाते हैं, तो समय समय पर अपने कार्यक्रम के जरिए हम उनको अवगत कराते रहते हैं। तो आज जो खास बात है उस पर हम बात कर लें। आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस माने नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
0: जी, और ये दिन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। और 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी तकनीकी शक्ति दिखाई थी। हमें विज्ञान और तकनीक का उपयोग देश की प्रगति और मानव कल्याण के लिए हम करते आए हैं और हम
1: बिल्कुल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की और वैज्ञानिक सुख सुविधाओं की, तो खास करके अगर खेती किसानी से जोड़ करके देखा जाए टेक्नोलॉजी कितनी आ चुकी है और कितने यंत्र आ चुके हैं जिसके जरिए हमारे जो किसान भाई बहन है उसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं। और ये जो तकनीकी जो एक जरूरी चीज थी वो आ गई है, तो उससे क्या होता है, हर चीज अच्छे तरीके से हो जाता है, फसल का पैदावार भी अच्छा होता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, समय की भी बचत होती है और जो युवा जो पलायन कर रहे थे अब वो ठहराव पे आ गए हैं और कृषि संबंधित जो भी वैज्ञानिक तरीके होते हैं उसको जानकारी लेकर के और उससे जो है वो खेती किसानी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं।
0: बहुत सही यमुना बहन का, एक समय होता था कि काफी श्रम लगता था, समय लगता था और किसान जो भाई थे बहुत मेहनत करते थे सुबह शाम दिन रात, और जो उनकी आने वाली पीढ़ी थी वो इस चीज से बचना चाहते थे। लेकिन जैसा आपने बोला अनेक प्रकार के यंत्र आ गए हैं और कि जो खेती किसानी है ना थोड़ा आसान हो गया है और अब पैदावार का भी भरपूर लाभ भी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो लाभ लेना भी चाहिए,
0: ये तकनीक का कमाल है। और जैसा कि हम बोल रहे थे कि आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो भाई ये दिवस देश में विज्ञान अनुसंधान और तकनीक विकास के महत्व को दर्शाता है
1: और देश के जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो इंजीनियर हैं उनके योगदान को भी सराहा जाता है।
0: जी हाँ, और छात्रों युवाओं को नई खोज रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रेरित किया जाता है। और भाई ये दिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलुओं को मजबूत करने का भी संदेश देता है।
1: और संदेश तभी सफल होगा कि जब हम उसको जागरूक होकर के सुनेंगे, अमल में लाएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। और देखो जो हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम है इसमें हमें भी ध्यान रखते हैं अपने खास करके भाइयों बहनों का कि उनका मनोरंजन करें। तो चलते हैं गोपाल सिंह वर्मन की आवाज में सुनते हैं ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे गोपाल सिंह बर्मन से ये रागिनी।
1: और सही कहें सरिता, तो बचत जो है बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। जब हम छोटी छोटी बचत करते हैं तो उससे हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, और संकट के समय में वो हमारा जो संचय किया हुआ धन है वो काम आता है।
0: बहुत सही कहा। और आज हम बात करेंगे ऐसी सरकारी योजनाओं की जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करती है, और जन धन खाता बीमा और पेंशन योजनाएं। तो आज आप सुनेंगे जन धन खाता बीमा और पेंशन योजना का उपयोग, और आज की जो विशेषज्ञ है जो जानकारी दे रही हैं वो है ममता गांधी।
1: तो चलिए सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं ममता गांधी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जन धन खाते बीमा एवं पेंशन योजनाएं महिलाओं के लिए उपयोग एवं लाभ। आज की महिला केवल घर तक सीमित नहीं है, वो परिवार की आर्थिक शक्ति भी बन रही है। चाहे गृहिणी हो, किसान महिला हो, मजदूर हो, स्वरोजगार करने वाली महिला हो, नौकरी पेशा महिला हो या छोटी दुकान चलाने वाली, हर महिला के लिए आर्थिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु समस्या ये है कि हम लोगों को उन योजनाओं के बारे में, हम महिलाओं को कुछ अधिक पता नहीं होता, इसलिए हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम योजनाओं की चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। तो जो मुख्य सरकार की योजना है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं भी हैं और पेंशन योजनाओं के बारे में भी बताऊंगी। और बहुत ही सरल भाषा में आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना की। पहले देश में बहुत से लोगों, विशेषकर महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं होता था। पैसा घर में रखा रहता था, जिससे सुरक्षा की समस्या रहती थी। सरकारी सहायता भी सीधे नहीं मिल पाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के प्रयासों से आज करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। जन धन खाते के जो मुख्य लाभ हैं, सबसे बड़ा जो इसमें लाभ है, शून्य बैलेंस खाता। अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने खाते में कुछ मिनिमम बैलेंस रखना है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो पैसे कट जाएंगे, इस चीज की चिंता अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस खाते में न्यूनतम राशि रखना जरूरी नहीं है। और गरीब से गरीब महिला भी अपना खाता खुलवा सकती है, क्योंकि शून्य बैलेंस खाते में कोई भी न्यूनतम बैलेंस की वजह से पैसा नहीं कटता है। और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, ये इसका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। जैसे गैस सब्सिडी है, पेंशन है, या छात्रवृत्ति है, या मनरेगा मजदूरी, इस तरह का कोई भी जो लाभ सरकार हमें देती है वो सीधे ही हमारे खातों में आ जाता है। इससे बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो जाती है। इसमें बस करना क्या होता है, आपको बैंक में जाकर लिंक करना होता है, जो अपना खाता है उसको अपने फोन नंबर से और बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है, तो ये सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप जनधन खाता खुलवाते हैं तो आपको रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। ये हमें खाते के साथ ही मिलता है, जिससे कि ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा दुर्घटना बीमा सुविधा भी है। इसी खाते में रुपे कार्ड के साथ ही दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो लाभ है वो है बचत की आदत। महिलाएं छोटी छोटी बचत कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, क्योंकि इस खाते में ये जरूरी नहीं है कि आपको कम से कम कुछ 100 रुपए या 200 रुपए जमा कराने, आप कितने भी रुपए कभी भी जाकर अपने खाते में जमा कर सकती हैं। फिर ओवरड्राफ्ट सुविधा, इस खाते में कुछ शर्तों के साथ। ओवरड्राफ्ट होता है कि आपके खाते में बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जरूरी कुछ काम पड़ गया और पैसा निकालना है, तो कुछ शर्तें हैं बैंक की। अगर आप वो शर्तें पूरी करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो उनको देते हैं, तो अतिरिक्त राशि निकालने की सुविधा भी मिल सकती है। अब मैं आपको बीमा योजनाओं के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो यही हम बात करेंगे कि जरूरी क्यों है। जीवन तो अनिश्चित है ना, कभी दुर्घटना, बीमारी या कमाने वाले सदस्य की अचानक किसी भी वजह से मृत्यु हो जाए तो परिवार आर्थिक संकट में आ सकता है। ऐसे समय में बीमा सुरक्षा हमारे लिए कवच का कार्य करती है। सरकार ने कम प्रीमियम में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं शुरू की हैं। तो सबसे पहली योजना जो मैं आपको बताना चाहूंगी, उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या गंभीर विकलांगता हो जाती है तो इसमें आर्थिक सहायता मिलती है। और प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए प्रति वर्ष आपको प्रीमियम देना होता है, यानी प्रति माह लगभग 2 रुपए से भी कम। और आयु सीमा जो इसकी है, आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और बीमा राशि दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए की राशि आपको मिलती है और अगर भगवान न करे आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख रुपए की राशि आपको प्राप्त होती है। इस बीमा की और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि बैंक खाते से प्रीमियम स्वतः ही कट जाता है, यानी आपको बार बार बैंक जाकर पैसे नहीं जमा कराने पड़ते। अगर आप एक बार बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो हर साल आपके खाते से खुद ही प्रीमियम कट जाता है। महिलाओं के लिए भी लाभ है, क्योंकि घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं, घरेलू कामगार, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, स्वरोजगार करने वाली महिलाएं, सभी के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी है। अब मैं बात करूंगी एक और बीमा योजना की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह एक जीवन बीमा योजना है। यदि किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। इसमें जो प्रीमियम है वो लगभग 436 रुपए प्रति वर्ष का है, यानी लगभग 36 रुपए प्रति माह। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष तक है। इस आयु के बीच में आप कभी भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं और इसका जो कवरेज है वो 55 वर्ष तक रहता है और मृत्यु होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलती है। और इसके लाभ क्या है, जो कम आय वाले परिवार हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं पेंशन योजनाओं की। जी हाँ, वृद्धावस्था की सुरक्षा। पेंशन योजनाएं क्या है? वृद्धावस्था की सुरक्षा देती हैं, इसलिए पेंशन योजना बहुत ही आवश्यक है। जो सबसे महत्वपूर्ण पेंशन योजना सरकार की है वो है अटल पेंशन योजना। ये वृद्धावस्था में नियमित आय देने वाली योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना। इसकी जो आयु सीमा है वो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। तो इसमें जो पेंशन की राशि है वो 60 वर्ष की आयु के बाद मिलनी शुरू होती है। आप हिसाब से अपना प्रीमियम तय करेंगे, आपको 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, इतने अमाउंट की, इतनी राशि की प्रति माह तक के पेंशन विकल्प मिलते हैं। कितना योगदान देना होता है आपको, आप जानना चाहेंगे तो ये जो व्यक्ति की वर्तमान आयु पे 18 साल में ले रहे हैं या आप 40 साल में ले रहे हैं, इस पे निर्भर होता है कि आपकी आयु कितनी है, उसके हिसाब से और चुनी गई पेंशन राशि, जैसे आपको 1000 चाहिए, 2, 3 या 4 या 5, जितने हजार की पेंशन चाहिए 1 से 5 हजार के बीच में, और आपकी आयु के हिसाब से आपका जो प्रीमियम है उसकी राशि तय की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि कोई अगर महिला 25 वर्ष की आयु में जुड़ती है और वो 5000 रुपए मासिक पेंशन चाहती है तो उसको लगभग 376 रुपए प्रति माह

0: माह जमा करने होंगे। और यदि वही महिला 1,000 रुपये पर माह की पेंशन चुनती है तो उसका योगदान इससे भी कम होगा, यानी 376 रुपये से भी कम होगा अगर उसको 5,000 नहीं 1,000 रुपये महीना चाहिए। तो अटल पेंशन योजना की और विशेषताएं जो मैंने आपको बताई, एक तो 60 वर्ष के बाद निश्चित मासिक आय है आपकी, और खाता धारक की मृत्यु के बाद जीवन साथी को पेंशन मिलती है, ये एक इसका बहुत बड़ा लाभ है। और इसके अलावा यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो दोनों की मृत्यु के बाद जो नामांकित व्यक्ति होता है उसको भी संचित राशि मिलती है। इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारी, ये योजना उसके द्वारा संचालित की जाती है और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और दूसरी बात, आज तो डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। आप सब जानते होंगे कि आजकल आपकी जो बैंकिंग है वो आपके हाथ में होती है, तो इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। आज मोबाइल बैंकिंग, UPI और डिजिटल भुगतान का समय है। महिलाएं यदि डिजिटल बैंकिंग सीख लें तो वो घर बैठे पैसे भेज सकती हैं, बिजली पानी के बिल जमा कर सकती हैं, सुरक्षित लेन देन कर सकती हैं, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी जो आपको डिजिटल बैंकिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, आपने बार बार सुना होगा अपना OTP किसी को ना बताएं। OTP का मतलब होता है 1-time password, तो OTP आपको किसी को नहीं बताना। दूसरा, आपका जो ATM कार्ड है, रुपे कार्ड अगर आपने लिया जनधन खाते के साथ मिला, तो वही आपका ATM कार्ड होता है, उसका एक पिन होता है। पिन आप जब चाहें बदल सकती हैं और समय समय पर आपको बदलना भी चाहिए, और उस वो जो पिन है उसको आप कभी भी साझा नहीं करना है। और फर्जी कॉल से सावधान रहें, किसी की बातों में ना आए। कोई बैंक का बनकर फोन कर रहा है तो ये जान लें कि बैंक का कोई भी अधिकारी आपको बिना बात के फोन नहीं करता है। तो कोई अगर फर्जी फोन है उससे सावधान रहें, केवल अधिकृत बैंक से संपर्क करें। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार का ही काम नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेवारी है। परिवार वाले अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी बताना चाहूंगी कि वे महिलाओं के बैंक खाते खुलवाएं, उन्हें बैंकिंग सिखाएं, बचत और बीमा के लिए प्रेरित करें। जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी तभी परिवार और देश मजबूत होगा। योजना से जुड़े, भविष्य के लिए पेंशन योजना अपनाएं। छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ी सुरक्षा देती है। अंत में यही कहना चाहूंगी, सशक्त महिला सुरक्षित परिवार और समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। इसी संदेश के साथ नमस्कार।
1: जनधन खाता, बीमा और पेंशन योजना का उपयोग, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी विशेषज्ञ थी, इस बारे में जो जानकारी दे रही थी ममता गांधी। और अपने कार्यक्रम में हम समय समय पर किसी की जयंती, किसी की पुण्यतिथि पर भी हम जोर देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को।
2: बिल्कुल यमुना बहन, और आज हम बात करेंगे आसफ अली। जी हां, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध वकील, सांसद और राजनयिक थे। उनका जन्म 11 मई 1888 को दिल्ली में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी जयंती हर वर्ष 11 मई को श्रद्धा और सम्मान के साथ हम मनाते हैं। अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी दिल्ली में प्राप्त की, और उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक सफल वकील बने। वे अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी के अच्छे जानकार थे और उनमें देशभक्ति की भावना भी थी।
1: बिल्कुल, और आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और स्वतंत्र भारत के पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत भी बने। उनकी पत्नी अरुणा आसफ अली भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी।
2: जी हां, देश में हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने समर्थन किया, और उनको हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों का अदालत में पक्ष रखा। उस समय अंग्रेजी सरकार क्रांतिकारियों को कठोर सजा देना चाहते थे, लेकिन आसफ अली ने पूरी ईमानदारी और साहस के साथ उनकी पैरवी की।
1: देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली जी को उनकी जयंती पर हम शत शत नमन करते हैं।
2: और भाई यमुना बहन, इसके बाद हम क्यों ना अपने भाई बहनों का मनोरंजन कर दें।

0: अभी आप कनपाल शर्मा से सुन रहे थे देशभक्ति रागिनी।
1: और देखो मजदूरों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। खास करके हम बात कर रहे हैं मजदूर, किसान और गांव, तीनों को ताकत देगा नया ग्रामीण रोजगार कानून। ऐसा हमारे जो है जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। और भारत के ग्रामीण विकास इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित करते हुए केंद्र सरकार ने आज 11 मई 2026 को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी एक्ट के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है सरिता।
0: जी हाँ, और इससे क्या होगा, इस योजना का जो उद्देश्य है ना यमुना बहन, कि ग्रामीण मजदूरों को अधिक रोजगार देगा, गांव में स्थायी विकास कार्य कराना, किसान महिलाओं और स्वयं सहायता जो समूह है ना उनको मजबूत बनाना, और गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना, गरीब परिवार की जो आय है उसकी सुरक्षा को बढ़ाना।
1: बिल्कुल, और खास बात करें तो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा ये। और जैसे आपने कहा कि ये कानून ग्रामीण गरीब श्रमिक परिवार, महिला स्वयं सहायता समूह और किसान की जो है बात करें तो उनकी जो सहायता करनी हो, और अधिक आय सुरक्षा और गांव में बड़े पैमाने पर टिकाऊ विकास कार्यों का मार्ग खोलेगा।
0: और यमुना बहन, अब ये बात करें तो ये 100 दिन की नहीं 125 दिन की रोजगार की अब गारंटी है। पहले मनरेगा के तहत साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवार को ना साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी कम होगी।
1: बिल्कुल, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि मजदूरों को भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर के खातों में किया जाएगा, और कोशिश यही होगी कि 3 दिन के अंदर उनको भुगतान मिल जाए, लेकिन अधिकतम 15 दिन के भीतर भी प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिन के भीतर पैसा नहीं आने पर मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र होंगे, और देरी से भुगतान करने पर अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी।
0: और एक बात और है यमुना बहन की, अगर काम नहीं मिला ना तो बेरोजगारी भत्ता, अगर कोई मजदूर काम मांगता है तो उसे रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा, और ये मजदूरों के अधिकार को मजबूत भी बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और गांव में कौन कौन से काम होंगे ये भी हम बता दें।
1: बिल्कुल,
0: जल संरक्षण जैसे तालाब, कुएं, चेक डैम, वर्षा जल संरक्षण, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रामीण सड़कें, पुल और पुलिया, नाली निर्माण, और शिक्षा और पोषण की बात करें तो स्कूल भवन, आंगनवाड़ी भवन, कृषि और किसान कार्य में खेत सुधार, सिंचाई कार्य, खेत तक सड़क, महिलाओं को SHG के लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्किंग शेड।
1: बिल्कुल, तो अब आज का जो हमारा ग्राम संसार है इतनी जानकारी तक ही सीमित। और अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा कृषि जगत 7:05 पर होगा, और उसमें भी हम आपको बातचीत सुनवाएंगे बागवानी से संबंधित। और इसी के साथ हम तो कहेंगे हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन अगला जो कार्यक्रम है कृषि जगत वो जारी रहेगा। और आज के जो कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है बता देते हैं
0: जी, आज
1: तुषार पारा सर,
0: कार्यक्रम के संयोजक है शिव नंदन लाल। और इसी के साथ यमुना और सरिता को दीजिए इजाजत, आप सभी को भाई राम को राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया

0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23,816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम,
1: राम। यमुना बहन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो अपने प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष मना रहा है, जो राष्ट्र को जोड़ने, संस्कृति को बढ़ावा देने और समाचार पहुंचाने के 9 दशकों को चिन्हित करता है। और ये 90 वर्ष आकाशवाणी उत्सव की बहुत ही खास महत्वपूर्ण चीजें हैं।
0: बिल्कुल। और जो 90 वर्ष की बात करें तो जो दिन था 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। इस उपलक्ष्य में देश भर में वाकथन, मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसा कि अभी दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें।
1: और विषय वस्तु समारोह की बात करें तो आवाज, संस्कृति और जुड़ाव के 90 वर्ष विषय पर प्रकाश डाला गया था।
0: बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आकाशवाणी की जो ये आवाज़ है कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, जहाँ न

0: उसे वाणी वहां पहुंचे आकाशवाणी। तो आज जो हमारी वाणी है आकाशवाणी के जरिए कहाँ कहाँ पहुंचती है और कितने लोग जुड़े हैं, अगर देखा जाए तो ये जो रेडियो है ये बहुत ही लाभदायक है। कारण ये है कि खेत, अगर खेती का काम अगर किसान कर रहा है अपने खेत पर, तो वहां
1: वो
0: पर
1: भी
0: रेडियो लगा के वो सुनता रहता है और उससे काम भी होता है। और काम कोई ये नहीं कि हम उसी को बैठ के अगर हम देखें कोई चीज़ तो उससे हानि होती है, लेकिन वो काम करते करते कान में आवाज़ गूंज रही थी। आकाशवाणी का सबसे बड़ा लाभ है
1: जी
0: हमारी
1: हाँ
0: रेडियो का।
1: जी हाँ। और अगर डिजिटल परिवर्तन की बात करें तो अपने एनालॉग अतीत का सम्मान करते हुए 90वीं वर्षगांठ का ये समारोह न्यूज़ ऑन एयर ऐप, पॉडकास्ट और यूट्यूब के माध्यम से आकाशवाणी के डिजिटल युग में प्रवेश को भी उजागर करता है।
0: बिल्कुल,
1: अब आप
0: आकाशवाणी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर 90 वर्षों का हम सफर श्रृंखला मना रहा है। तो हम भी थोड़ा सा ही कहेंगे कि हमारा देश कितना तरक्की कर गया है, सभी
1: बिल्कुल
0: लोग तरक्की कर रहे हैं। तरक्की की बात मस्तराम यादव भी कर रहे हैं अपने इस रागन के जरिए।

0: अभी आप मस्तराम यादव से सुन रहे थे ये उपदेश
1: और बातचीत के सिलसिले में हम चलते हैं और आज हम जानकारी दिलवाते हैं बागबानी फसलों मतलब आम और लीची में सिंचाई और सुरक्षा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मधुबाला ठाकरे जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
2: किसान भाइयों नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से किसानों का योगदान है उसी तरीके से हमारी जो फसलें हैं उनका भी उतना ही योगदान है, चाहे हमारे अनाज वाली हों या बागवानी। और जब बागवानी फसलों की हम बात करते हैं तो बागवानी में जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आम फसलें हैं उनसे ज़्यादा आमदनी लेते हैं। और जहाँ तक बात है कि बागवानी फसलों में आम और लीची की, आम एक ऐसी फसल है जिसके बारे में सभी जानते हैं और एक बार ऐसी आती है कि हर व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, और लीची का भी समय चल रहा है और लीची भी एक महत्वपूर्ण फसल है कुछ क्षेत्रों के लिए और वहाँ के जो बागवान भाई हैं उनके लिए एक आय का अच्छा साधन है। तो आम और लीची फसलों में किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन किया जाए, किस तरीके से उसकी तुड़ाई की जाए और उसमें क्या देखभाल की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मधुबाला ठाकरे जी को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, इस समय जो हमारे बागवान भाई हैं और जिनके आम के बाग हैं और पहले से अच्छे तैयार हैं, इस समय उसमें तो फलत आई हुई है, तो उसमें उनको क्या कुछ खास करने की आवश्यकता है?
3: किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसमें बैगिंग की है या नहीं की है, क्योंकि बैगिंग एक बहुत ही सामान्य सा उपाय है जिससे कि किसान भाई अपने आम के फलों को कीटों से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ बैगिंग करने का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि जो फलों की सतह होती है वह चमक युक्त रहती है और उसमें किसी तरह के दाग धब्बे नहीं आते। परिणाम स्वरूप किसानों को उसका बहुत अच्छा मूल्य मिलता है जब वो मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। तो इस वजह से बैगिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, तो किसान भाई बैगिंग अवश्य करें।
2: बैगिंग करने का तरीका क्या है कि उसको किस समय किया जाता है और कैसे करें?
3: जी देखिए, बैगिंग का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो जो फल मक्खी होती है उससे फलों का बचाव करना होता है। तो आपके क्षेत्र की जो वर्षा का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए बैगिंग का समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो फल मक्खी आकर आपके फलों में बैठकर अंडे दे उससे पहले ही आपको बैगिंग का कार्य कर लेना है। अब ऐसी आम की किस्में जिसमें कि जो लाल रंग युक्त नहीं होती, सामान्यतः जो पीले रंग का आम होता है उसमें आप बैगिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरह के बैग मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो ऐसी किस्में हैं जिसमें रंग आता है उसमें बैगिंग का जो प्रकार है उसका चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने उसको ऐसे किसी अपारदर्शी पदार्थ के बैग से कवर कर दिया तो उसमें वो रंग नहीं आ पाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज की जो आपकी आमदनी और मुनाफा का जो आपका गुणा भाग जोड़ घटाना है उसको भी जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि बैगिंग की लागत इतनी ज्यादा आ जाए कि जितना मुनाफा किसान भाइयों को हो रहा है उतना ना हो और वो अतिरिक्त बोझ बने, तो इसका जो गणना है इसे भी किसान भाइयों को पहले कर लेना चाहिए।
2: तो ये तो बैगिंग की बात रही जी, और बैगिंग का समय क्या होता है, कब से कब तक?
3: बैगिंग का समय ये होता है कि जब आपके फल बन चुके हैं।
2: साइज कितना है?
3: साइज लगभग जैसे आप अभी का समझ लीजिए, उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो अभी का समय बिल्कुल सही है बैगिंग करने के लिए, या थोड़ा पहले भी की जा सकती है।
2: और जैसे आम के बाग हैं, कभी कभी उनमें इस समय आप देखते हो कभी बारिश हो जाती है, कभी तूफान भी आ जाते हैं, तेज हवाएं चल जाती हैं, तो उससे आम जैसी फसल को बहुत नुकसान होता है,
3: बिल्कुल,
2: फसल
3: बिल्कुल।
2: उनकी फलत काफी गिर जाती है, तो उसको बचाने का कोई उपाय है?
3: देखिए, अभी का जो समय चल रहा है वो जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय बहुत तेज हवाएं चलती है और बहुत सारा आम जो फलों पर लदा होता है वो जमीन पर गिर जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो आम के बगीचे हैं उसके आसपास हम विंड ब्रेक्स लगाएं। उसमें ऐसे वृक्षों को या ऐसी झाड़ियों को लगाया जाता है जिससे कि हवा की गति को कम किया जा सके। तो होता यह है कि जब आम का आप बगीचा लगा रहे होते हैं, उसी समय आपको साथ ही साथ में अपने जो बगीचे की बाउंड्री है उसके किनारे किनारे ये विंड ब्रेक लगा देना चाहिए, जिससे कि जो हवा की गति है वह कम हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान कम होता है।
2: लेकिन किसी कारण से उस समय उन्होंने नहीं लगाया है
3: जी,
2: और इस समय उनकी फलत बाग में तैयार है
3: जी,
2: तो इस समय क्या
3: इस समय ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो सिंचाई का बहुत ध्यान रखें
2: जी।
3: ऐसा ना करें कि मिट्टी बहुत ज्यादा सूख गई है और उसके बाद आप अचानक में सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, यह एक तरह का जिसे कहते हैं स्ट्रेस को क्रिएट करती है। यदि आप पानी रोक दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं और फिर अचानक दे रहे हैं, तो वो एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करती है प्लांट को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फल होते हैं, फलों का जो डंठल से जुड़ाव होता है, वहां से वो कमजोर होते हैं और जैसे ही हवा आंधी आती है तो वो बहुत जल्दी गिरते हैं। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि मृदा में एक उपयुक्त नमी की अवस्था को बनाए रखा जाए, ना तो बहुत अधिक सिंचाई की जाए और ना ही बहुत कम।
2: तो जैसे आम एक फसल तो है नहीं
3: जी,
2: लेकिन आम बड़े बड़े पौधे होते हैं
3: जी,
2: तो सिंचाई का क्या तरीका अपनाया जाए, कितने दिनों बाद की जाए?
3: देखिए, सिंचाई जो पुराने बगीचे होते हैं वहाँ तो किसान भाई चैनल जो होते हैं उसकी सहायता से ही सिंचाई करते हैं, और जो नए बगीचे लगा रखे हैं उसमें वो ड्रिप की सहायता से करते हैं, जो टपक विधि होती है। तो अंतराल जो निर्भर करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तापमान क्या चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो तापमान को ध्यान में रखिए और जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है मौसम विभाग द्वारा, उसको ध्यान में रखकर ही इरिगेशन का सिंचाई का आप समय निर्धारित करें। यदि आपको पता है कि आगे आने वाला एक हफ्ते में ज्यादा तापमान होने वाला है, लू चलने वाली है, तो आप सिंचाई के जो अंतराल है उसको कम करेंगे और मृदा की नमी को व्यवस्थित बना के रखेंगे।
2: हमने देखा है कि कुछ किसान भाइयों के जो पानी के फव्वारे होते हैं उससे भी पौधों के ऊपर से सिंचाई करते हैं।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसको स्प्रिंकलर विधि के द्वारा सिंचाई करना बोलते हैं। तो होता क्या है, ये लीची में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो लीची के केस में क्या होता है कि जैसे अभी लीची तुड़ाई के पास आ चुकी है, तो लीची में एक समस्या होती है फलों के फटने की, जिसको फ्रूट क्रैकिंग कहते हैं, और वह इतनी महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि यदि फ्रूट क्रैकिंग हो गई है तो उसके बाद लीची के फलों का कोई भी उपयोग नहीं रह जाता, पूरा वेस्ट हो जाता है।
2: कारण क्या है उसका?
3: उसका कारण यह होता है कि लीची का जो छिलका होता है, जब बहुत ज्यादा मृदा में नमी की कमी होती है तो उसकी वजह से जो छिलका होता है उसकी इलास्टिसिटी, जो खिंचावपन तनावपन होता है, वो कम हो जाता है। अब होता यह है कि मृदा में नमी कम है और अचानक आप सिंचाई कर रहे हैं या अचानक से बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से जड़ों को पानी की उपलब्धता अधिक हो रही है, तो पानी अचानक से पौधा लेता है, फलों में पानी अधिक आता है और वह ज्यादा फैलता है, और जैसे ही फल फैलने की कोशिश करता है, चूंकि छिलका जो है उसमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं है, तो वो उस परिमाण से बढ़ नहीं पाता है, और इस डिफरेंस की वजह से फल का जो छिलका होता है वो फट जाता है और फलों में क्रैकिंग होती है। तो इसलिए यह बहुत

0: आवश्यक है कि लीची में भी स्पेशली ये जो 15-20 दिन होते हैं इसमें नमी की मात्रा को बहुत ही अच्छे से नियंत्रित किया जाए। और जो स्प्रिंकलर की आप बात कर रहे थे, यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप लीची में क्रैकिंग को प्रबंधित कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई, क्योंकि आम को एकदम पूरा तो पकाया नहीं जाता तोड़ने से पहले, और एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं क्योंकि उसको बाजार में भी भेजना होता है, तो उसमें कितना गैप होना चाहिए तुड़ाई में, और तुड़ाई करते समय क्या सावधानी रखें?
0: देखिए, आम एक, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में हम बोलते हैं, क्लाइमेक्टिक फल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो मैच्योर हो जाता है और उस मैच्योरिटी के बाद हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं और तोड़कर पका सकते हैं, सामान्य भाषा में यदि हम बात करें। लेकिन लीची इसके विपरीत नॉन क्लाइमेक्टिक फल है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार आपने उसको तोड़ लिया पेड़ से, तो उसके बाद उसके रंग में, स्वाद में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए लीची को जो अब हम तोड़ते हैं, जब वो पूरी तरह से रंग आ जाता है, उसमें जो TSS एसिडिटी आ जाती है, तभी हम तोड़ते हैं। आम की जो हम बात कर रहे थे कि जो मैच्योरिटी इंडाइसेस होती हैं कि ये पक गया है, पहले के जमाने में बोलते हैं कि फल गिरने लगा है अपने आप, तो फल तोड़ सकते हैं, तैयार हो गया है। कुछ वैज्ञानिक विधियां भी हैं, किसान भाइयों को ये अंदाजा हो जाता है कि फल मैच्योर हो गया है। और अलग अलग किस्मों का जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जब आपका फल मैच्योर हो गया है पेड़ पर, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप उसकी बैगिंग किस तरह से कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने दूर के मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं बेचने के लिए। यदि आप पास के मार्केट में कर रहे हैं, तो आप जब हल्का रंग उसमें आ गया है तभी भी आप कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है।
1: अच्छा, हम लीची की बात करते हैं। जैसे लीची, मैंने देखा है कि जब लीची को ऊपर से निकाल के छिलके को अंदर से खाते हैं, उसके अंदर जो बीज होता है, हमने ज़्यादातर देखा है कि बीज में कीड़ा जरूर होता है, तो वो क्या कारण है कि क्या कीड़े से बचत नहीं की जाती है?
0: जी, वो कीड़ा जो होता है वो फ्रूट बोरर होता है। वो फ्रूट बोरर जो है वो अंदर उसके जो इल्लियां होती हैं वो आपको दिखाई देती हैं। लेकिन इसका जो प्रबंधन होता है ये काफी पहले ही कर लेना होता है। तो अभी आप सोचेंगे कि अभी कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो अभी कुछ छिड़क के हम उसका बचाव कर लें, तो वह संभव नहीं है। तो इसलिए जैसे मैंने फ्रूट फ्लाई की बात की, यदि अभी 2-3 बारिश हो गई, फल मक्खी ने फल में आम के अंडा दे दिया, तो उसके बाद आप कुछ भी डालें, बैगिंग करें, कुछ भी छिड़काव करें, आप फिर फलों को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए सही अवस्था में, जबकि बारिश नहीं हुई है, फल मक्खी का प्रजनन नहीं हुआ है, तभी आपको उसकी बैगिंग कर लेनी है। और फल मक्खी एक ऐसा कीट है जो अमरूद में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कीट है और बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो सही समय पर उसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और लीची की जैसे आप बात कर रहे थे, लीची एक ऐसा फल है जिसमें साल में 4 से 6 बार नए नए कोपलों का जो आना होता है, पत्तियों का वो होता है। तो उस वजह से क्या होता है, जैसी नई पत्तियां आती है बहुत सारे कीटों का उस पर अटैक होता है। तो लीची में समय समय पर कई बार बहुत सारे नए नए कीटों का प्रकोप देखा गया है। तो इसलिए जो भी लीची के किसान भाई हैं, उनको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि जब लीची लगे तभी आप बगीचे में जाकर देखें। आप पहले से ध्यान में रखें जिससे कि किसी भी नए कीट का प्रकोप ना हो, क्योंकि लीची का जो आप देखेंगे कल्टीवेशन या बागवानी है वो क्षेत्र विशेष पे सीमित है। तो यदि कोई भी नया कीट आता है तो वो बहुत तेजी से पूरे क्षेत्र में फैलेगा और वो लीची की पैदावार को बहुत अफेक्ट करेगा। इसलिए इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है जिससे समय पर उसका प्रबंधन किया जा सके।
1: अच्छा, लीची की तुड़ाई करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखते हैं?
0: लीची की तुड़ाई जो करते हैं, आप देखेंगे कि उसके डंठलों और पत्तियों के साथ में तोड़ते हैं। ठीक है,
1: उसका क्या कारण है?
0: उसका कारण ये होता है कि एक तो ये होता है कि यदि आपको एक एक फल को तोड़ेंगे तो वो जो ओपनिंग होगी, जो खुला हिस्सा होगा, उसमें कोई भी बीमारी कीट लगेंगे और जो फलों की शेल्फ लाइफ होगी वो कम होगी। तो डंठल के साथ तोड़ना, पैक हमेशा यही किया जाता है। दूसरा रीजन ये है कि जब आप डंठल के साथ तोड़ते हैं तो आपके जो लीची के पेड़ होते हैं उसकी प्रूनिंग भी साथ में हो जाती है। लीची जो है वो एक ऐसा फल है जिसमें कि जो उसका मंजर होता है जिसे बोलते हैं, वह आता है पुरानी टहनियों पे। और यदि उसमें प्रूनिंग का काम आपने लेट किया तो जब फरवरी मार्च में पुरानी शाखाएं होती हैं वो उतनी परिपक्व नहीं हो पाती कि उसमें नए कल्ले निकले और कल्लों के साथ में उसमें मंजर निकले। तो इसलिए लीची में समय पर तुड़ाई करना और ये जो प्रूनिंग का काम है ये होना बहुत आवश्यक है। और यही एक कारण है कि जो लीची की ऐसी किस्में जो थोड़ी लेट होती हैं उसमें ऑल्टरनेट बियरिंग, मतलब एक साल वो अच्छी आती हैं, एक साल वो कम।

0: आती हैं, यही एक उसका रीजन है।
1: आम में भी होती है
0: ये प्रक्रिया, आम में भी होती है, बट अभी हमारी जितने भी किस्में हैं संस्थान के द्वारा ये रेगुलर बियरिंग है, हर साल इसमें अच्छी फलत आती है।
1: तो जो हमारे आम के बागवान भाई हैं, लीची के, अपनी फसल को सही तरीके से तुड़ाई करके बाजार तक पहुँचाएं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो यह संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं मुनाफे के लिए या किसी भी वजह से। दूसरा ये कि जो आपके बगीचे की हीट है, ठीक है, गर्मी जो है, उससे आप लीची और आम दोनों को बचा कर रखें। आप तोड़ते समय बचा कर रखें, आप वहां से पैक हाउस तक ले जा रहे हैं वहां बचा के रखें, तो जो हैंडलिंग है वो अच्छे तरीके से करें।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी अच्छे तरीके से लीची और आम के जो बाग हैं उसमें किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन और तुड़ाई के बारे में बताया। निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई आपसे द्वारा दी गई जानकारी का फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बागवानी फसलों में सिंचाई और सुरक्षा, आम लीची के ऊपर जानकारी दे रही थी डॉक्टर मधुबाला ठाकरे, वैज्ञानिक फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान, पूसा, नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: देखो सरिता, लीची हम सभी खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लीची डंडी समेत क्यों आती है, आज इस बात की विशेष जानकारी मिली और सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाए तो अगर वो खुल जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो डंडी समेत आता है, तो फल भी ताजा बना रहता है और हमारी बीमारियों से भी हमें सुरक्षित करता है। तो फलों की जानकारी बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और आगामी कार्यक्रम के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो आगामी कार्यक्रम की जानकारी के तहत आपको हम सुनाएंगे कल बातचीत, इसमें सुन सकेंगे आप प्राकृतिक खेती और किसान की आय, और कृषि प्रत्योत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत लोक संगीत के साथ आप सुन सकेंगे।
2: और हम जाते जाते यही कहेंगे कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप प्लीज जरूर हमें मेल करके बताएं, और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com,
3: और पत्राचार का पता भी नोट कर लें, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 110001। कार्यक्रम की प्रस्तुत करते हैं,
2: बिल्कुल आज की कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करता है वो है तुषार पराशर, कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।
3: और आगामी कार्यक्रम में कल आप सुन सकेंगे 5:10 पर लोकरंजनी, और 6:30 से 7 के बीच ग्राम संसार, और 7:05 से लेकर के 7:30 तक कृषि जगत। तो इसी के साथ दीजिए हम सरिता और यमुना को
2: इजाजत,
3: तो मिलेंगे
2: सभी भाई बहनों को, सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारा राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे जगदीश सिंह की आवाज़ में गजल, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके? ना, पहले बचत।
4: पहले झुमके?
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि
4: हाँ?
2: लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
8: जैसे?
7: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
8: तो लेन देन?
7: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
8: ओ,
7: जैसे UPI से?
8: अच्छा।
7: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
8: वो क्या है मम्मी जी?
7: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
8: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। कहा, सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार तकनीक आधारित

0: अनुशासन को बढ़ावा दे रही है। क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। ये आयोजन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गुजरात के सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सनातन आस्था, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदियों के आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ मंदिर की आस्था कभी नहीं झुकी और हर बार देश की आध्यात्मिक शक्ति ने स्वयं को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास भी विरासत भी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देती हूँ, जिनके मूल मंत्र विकास भी और विरासत भी, जिसके विजन के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे अध्यात्म को, सनातन को बचाने का काम, उसे सजाने और संवारने का काम भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम, उसके विकास का भी काम कर रहे हैं।
0: इस अवसर पर दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सनातन परंपरा ने हजारों वर्षों के संघर्ष और आक्रमणों के बावजूद अपनी पहचान और आस्था को जीवित रखा है।
2: ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन प्रतीक है कि कितने भी आक्रांता आक्रमणकारी आ जाएं, अपनी शक्ति के बल पर मंदिरों और आस्था केंद्रों को नष्ट करने का सपना भी पाल लें, लेकिन समय के साथ सनातन अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा रहेगा और जो भी आक्रांता आक्रमणकारी बुरी नीयत के साथ आएंगे उनकी पराजय ही होगी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में इस अवसर पर श्री सोमनाथ की भव्य यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने आज बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष एम्बुलेंस और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विशेष एम्बुलेंस पूरे शहर में सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर रहने वाले बीमार और असहाय लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऐसे लोगों को अपना घर आश्रम में लाकर उनका उपचार, देखभाल, भोजन, चिकित्सा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: ये 5 दिवसीय अभियान आज से 15 तक राजधानी के सभी 13 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत राजधानी के सड़कों, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर रह रहे असहाय, बीमार, बेसहारा महिलाएं और पुरुषों का बचाव किया जा रहा है। अभियान के लिए 19 एम्बुलेंस, 10 सहयोगी वाहन, लगभग 100 सदस्यीय स्टाफ और 50 स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। इस अभियान में विशेष रूप से टीबी, कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। बचाव किए गए लोगों के लिए आश्रम में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अभियान के पहले चरण में अब तक लगभग 20 लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी और सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के समन्वय से 24 घंटे कार्य करने वाला विशेष वन विंडो सिस्टम भी विकसित किया गया है। ईशानी के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अपना आश्रम मानवता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।
1: अपना आश्रम हमारी दिल्ली सरकार द्वारा पोषित एक बहुत ही शानदार काम कर रही संस्था है, जो कि सही मायने में मानवता का ध्यान रखते हुए, मानवता के जितने भी हमारे मूल्य हैं उनका ध्यान रखते हुए काम करती है। और हजारों बुजुर्ग, हजारों महिलाएं अपना आश्रम के माध्यम से अपना जीवन दान पा रही हैं।
0: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने आज सिविल लाइन्स जोन के अंतर्गत बादली क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। महापौर ने क्षेत्र के निवासियों, दुकानदारों और व्यापारियों से भी संवाद किया और उनसे अपनी दुकानों के बाहर कूड़ेदान रखने की अपील की।
4: आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए, हमें किसी पे दबाव या किसी को हर्ट करने का हमारा मंशा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली खूबसूरत बने, हमारे क्षेत्र खूबसूरत बने, हमारे दुकानदार भाई भी हमारा सहयोग करें, हमारे लोग भी हमारा सहयोग करें, कूड़ा सेग्रीगेट करें, इससे जो है दिल्ली में कूड़े की समस्या निस्तारण जल्दी से हो सके।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

0: आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और वैज्ञानिकों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैक्सीन विकास तक भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो देश की नवोन्मेषी सोच और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि प्रौद्योगिकी, सतत विकास और आत्मनिर्भरता पर का समन्वय ही भारत के शहरी भविष्य को दिशा देगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री संधू ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और बौद्धिक आत्मविश्वास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 सशक्त अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। डॉक्टर सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है।
1: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: गृह मंत्री आशीष सूद ने राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया है। आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिल्ली अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने अग्नि सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री सूद ने आगजनी की घटनाओं की रोकथाम, आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमता, अग्नि सुरक्षा योजना, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और नए वाहनों की खरीद जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान नागरिकों और उद्योग जगत से व्यापक समर्थन मिला है। परिवहन विभाग के अनुसार लगभग 700 हितधारकों ने इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं दी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त सुझावों में करीब 400 प्रतिक्रियाएं आम नागरिकों से जबकि लगभग 200 सुझाव उद्योग जगत से मिले हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों से भी 50 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि में प्रति एकड़ 1,25,000 रुपये की वृद्धि करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पार्क और उद्यान समिति के माध्यम से RWA, गैर सरकारी संगठनों और पंजीकृत सोसाइटियों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी निर्माण और तोड़फोड़ यानी CND साइट्स पर 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सख्त नियम, तकनीक आधारित निगरानी और वैज्ञानिक उपायों से प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गाजियाबाद से सराय कालेखां कैरिजवे के बीच रखरखाव और सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। इस कार्य के चलते संबंधित मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 65 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। राजधानी में आज दिनभर आमतौर पर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। कहा, सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
7: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
6: अरे वही अपना 60 रुपया।
7: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
6: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
7: और दूसरा?
6: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
7: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
6: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
8: पापा, लाइए 3000।
6: क्यों भाई?
8: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
8: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
8: अपना मोबाइल लाओ,
6: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
9: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। श्रोताओं, संयुक्त परिवार अब केवल गांव में ही देखने को मिलते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उन सभी के बच्चे सभी मिलजुल कर रहते हैं। आज भी गांव में परिवार के मुखिया दादाजी होते हैं और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आज के समय में लड़कियां बचपन से ही छोटे परिवार में रहती हैं और शादी के बाद भी वह छोटे परिवार में रहना पसंद करती हैं। आजकल के बच्चे संयुक्त परिवार के महत्व को नहीं जानते, तो आइए सुनते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी कि कैसे एक संयुक्त परिवार छोटी सी गलती के कारण बिखर जाता है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।

0: कैसे तुमने शादी कर ली?
1: हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम अपने माता पिता को तो बता देता।
0: सोनू, तेरी शादी को लेकर हम सबके कितने अरमान थे, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि इस बात से कितना दुख पहुंचेगा।
2: दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं खुशी से बहुत प्यार करता हूँ और इसके माता पिता इसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे।
0: क्या क्या मतलब कहीं और शादी करवाना चाहते थे? क्या इसके माता पिता तुम्हारी शादी से खुश नहीं थे?
2: जी दादाजी, इसलिए खुशी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ गई और हम दोनों ने शादी कर ली।
0: सोनू, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारे पिताजी और चाचा जी आने के बाद ही बात करेंगे। जाओ इसे अंदर ले जाओ।
2: जी दादाजी, चलो खुशी अंदर चले।
3: सुनो, तुम्हारे दादाजी इतने गुस्से में क्यों थे? वो तुम्हें इतना क्यों डांट रहे थे?
2: खुशी, दादाजी इसलिए हमसे गुस्सा थे क्योंकि हमने जो किया है वो गुस्से की ही तो बात है। वो हमारे घर के बड़े हैं और मैंने इतना बड़ा फैसला उनसे बिना पूछे ले लिया। खुशी, तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि दादाजी के गुस्से में भी प्यार है।
3: फिर शाम को सोनू के पिताजी और चाचा जी दोनों घर आ जाते हैं और घर पर सभी को उदास बैठा देखते हैं और वह सीधे अपने पिताजी के पास जाकर पूछते हैं, पिताजी आज घर में क्या हुआ है? सभी चुपचाप क्यों बैठे हैं और आप भी उदास लग रहे हैं? फिर सोनू के दादाजी सारी बात जो है सोनू के पिताजी को बताते हैं।
0: बेटा, सोनू ने शादी कर ली है।
4: क्या, सोनू ने शादी कर ली है? पर कब और कैसे? सोनू की माँ, तुम्हें इस बारे में पता है?
5: जी नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। जब आज सोनू उसे घर लेकर आया तो ही मुझे पता चला। मैं तो खुद भी हैरान हूँ कि सोनू ऐसे कैसे कर सकता है।
0: अब करना क्या है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब बहू को कहो कि गुस्सा और नाराजगी को छोड़कर प्यार से उसका स्वागत करें।
4: ठीक है पिताजी। अरे सुनती हो सोनू की माँ?
5: जी कहिए, क्या हुआ?
4: अब गुस्सा छोड़ो और सोनू की चाची और माँ सभी मिल करके अब उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझना।
5: ठीक है जी, जैसा आप कहें।
3: फिर सभी मिलकर खुशी का स्वागत करते हैं और परिवार के बारे में बताने लगते हैं और सभी परिवार वालों से मिलाते हैं। इस प्रकार कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनू की माँ खुशी के पास आती है और उसे कहती है,
5: खुशी बेटा, अपनी ननद के साथ खेत में अपने पिताजी और चाचा जी के लिए खाना लेकर चली जाना। मुझे तुम्हारी चाची जी के साथ डॉक्टर के पास जाना है, कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है।
3: क्या, खेत में? माँ जी, मैं कभी खेत नहीं गई, मुझे तो घर का सारा काम भी नहीं आता।
5: कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे करोगी तो सब आ जाएगा। मैं हूँ ना, और तुम्हारी चाची जी भी तो है, हम तुम्हें सब सिखा देंगे।
3: ठीक है माँ जी।
6: भाभी जी, खाना बन गया क्या? जल्दी करो, पिताजी और चाचा जी खेत में दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे होंगे।
4: अरे खुशी बेटा, आज तुम खाना लेकर आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? वो क्यों नहीं आई?
6: पिताजी, चाची जी की तबीयत खराब हो गई थी, माँ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी, इसलिए माँ ने मुझे और भाभी को खाना लेकर भेजा है।
4: ठीक है बेटा, हमने खेत में थोड़ा सा घास काट कर रखा है, जाते समय उसे तुम दोनों घर ले जाना, हमें खेत में थोड़ी और देर लग जाएगी।
6: ठीक है पिताजी, भाभी आओ, हम घास लेकर घर चलते हैं।
3: घास लेकर? देखो लता, मैंने कभी खेतों में काम नहीं किया, मैं शहर में पली बड़ी हुई हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता।
6: ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, घास मैं उठा लेती हूँ, आप ये बर्तन उठा लो।
5: बेटा खुशी, तुम अपने पिताजी को खाना देकर तो आ गई हो ना?
3: जी माँ जी। माँ जी, चाची जी कैसी हैं? डॉक्टर साहब ने क्या कहा?
5: बेटा, तुम्हारी चाची जी पहले से थोड़ा ठीक हैं, बस उनको थोड़ा आराम करना है, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी।
6: माँ, पिताजी ने कहा है कि आज उन्हें खेत में देर हो जाएगी, वो देर से घर आएंगे।
5: ठीक है बेटा, लता जाओ, तुम्हारी भाभी को बुला कर ले आओ, आज तुम्हारी चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों शाम का खाना बनाने में मेरी मदद करना।
6: ठीक है माँ, मैं भाभी को अभी बुला कर लाती हूँ। भाभी, ओ भाभी, माँ तुम्हें रसोई में बुला रही है।
3: जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया।
5: हाँ खुशी बेटा, आओ खाना बनाने में मेरी मदद कर दो।
3: खुशी रसोई में अपनी सास के साथ खाना बनाने लगती है और मन ही मन में कुड़ती रहती है कि उसे कितने सारे लोगों का

0: खाना बनाना पड़ेगा। खुशी मन में सोचती है, अगर सोनू घर वालों से अलग हो जाए तो उसे ना तो इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा और ना ज्यादा काम करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोग घर पर आ जाते हैं, फिर सभी हाथ मुंह धोकर खाना खाने को बैठ जाते हैं। तभी सोनू के पिताजी सोनू की माँ को आवाज लगाते हैं।
1: अरे सोनू की माँ, जल्दी से खाना ले आओ, हमें बड़ी भूख लगी है।
2: जी अभी लाई। चलो बेटा खुशी, हम दोनों सभी को खाना परोस देते हैं।
3: खुशी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सबके साथ जल्दी ही घुल मिल गई और तुमने घर के काम भी सीख लिए।
4: देखो सोनू, बहुत हुआ मुझसे इतना काम नहीं होता। तुम तो जानते हो कि हमारे घर में ना तो इतने सारे लोग थे और ना ही इतना काम। यहाँ तो पूरा दिन घर का काम ही खत्म नहीं होता, फिर ऊपर से खेत भी।
3: अरे कोई बात नहीं खुशी, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। माँ और चाची भी तो ये सारे काम करती हैं और उन्होंने कितने अच्छे से घर को संभाला भी है। चलो छोड़ो ये सब बातें, बस तुम हंसती रहा करो, तुम उदास अच्छी नहीं लगती।
2: लता देखो बेटा, तुम्हारी भाभी उठ गई क्या? उसे रसोई में आने को कह दो, जल्दी से खाना तैयार करना है, सभी को बाहर जाना है।
5: जी माँ। भैया भाभी उठ गई क्या? माँ उन्हें रसोई में बुला रही है।
3: ठीक है लता, तुम चलो, मैं तुम्हारी भाभी को अभी भेजता हूँ। खुशी खुशी, अरे जल्दी उठो, माँ तुम्हें बुला रही है।
4: ओहो क्या हुआ, क्यों इतनी सुबह सुबह आवाजें लगा रहे हो?
3: खुशी जल्दी उठो, रसोई में माँ का खाना बनाने में हाथ बटा दो, क्योंकि चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है।
2: आ गई हो खुशी बेटा?
4: जी माँ जी।
2: बेटा अब जल्दी से तुम रोटियाँ बना लो, सब्जी मैंने बना दी है, तुम अपनी भाभी के साथ काम करने में मदद कर लो।
5: ठीक है माँ, और कुछ रोटियाँ मैं बना दूंगी।
4: माँ जी मुझसे नहीं बनती इतनी सारी रोटियाँ, आप खुद ही बना लीजिए।
5: भाभी अब माँ से ये कैसे बात कर रही हो, इतने सारे से आपका क्या मतलब है? क्या आपको नहीं पता था कि हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है?
2: लता तुम चुप रहो, तुम अपनी भाभी से ऐसी बात नहीं कर सकती। चलो माफी मांगो अपनी भाभी से।
4: रहने दीजिए माँ जी, पहले तो आप अपनी बेटी से मुझे भला बुरा बुलवाती हैं और अब माफी मांगने का नाटक करती हैं।
2: अरे खुशी बेटा ये क्या कह रही हो, मैंने तुम दोनों में कभी भी फर्क नहीं समझा, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझती हूँ।
3: क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या?
2: नहीं बेटा कुछ नहीं, ये लो आपका टिफिन और तुम अपने काम पर चले जाओ।
0: फिर सोनू अपने काम पर चला जाता है और खुशी अपने कमरे में चली जाती है। फिर लता और उसकी माँ मिलकर रसोई व घर का सारा काम कर लेती है। वह खुशी को कोई भी काम नहीं कहते, यदि वह खुशी को कुछ भी करने के लिए कहते तो खुशी हर बात का उन्हें उल्टा जवाब देती।
6: देखो बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हों, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि हम अपने सोनू को अलग कर दें, ताकि वो बहू को लेकर शहर चला जाए।
2: क्या अलग कर दें? नहीं पिताजी, मैं सोनू के बगैर कैसे रहूंगी, मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। उसे शहर ना भेजें, मुझे मेरे बेटे से अलग ना करें, आप कुछ कहते क्यों नहीं?
1: पिताजी ठीक कह रहे हैं, सोनू की माँ तुम अपने मन को समझाओ, मैं सोनू से बात करूँगा। सोनू बेटा जरा यहाँ आना।
3: जी पिताजी आया।
1: बेटा हम सब ने यह सोचा है कि तू बहू को लेकर शहर चला जा, तुम दोनों वहीं रहो, हमसे जो बन पाएगा हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे।
3: ठीक है पिताजी जैसा तुम कहो। खुशी खुशी कहाँ हो?
4: जी कहिए क्या हुआ, पिताजी ने आपको क्यों बुलाया था?
3: खुशी कल हम शहर जा रहे हैं, अब हम वहीं रहेंगे।
4: अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, और तुम इसे उदास होकर क्यों बता रहे हो?
0: यहाँ सोनू और उसके परिवार वाले सोनू के शहर जाने से उदास थे, वहीं खुशी बहुत खुश थी। फिर सोनू और खुशी शहर जाकर रहने लगते हैं। जब सोनू के परिवार वाले सोनू से बात करना चाहते थे तो खुशी कोई ना कोई बहाना बना देती और सोनू से बात नहीं करवाती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन सोनू काम से घर जल्दी आ गया।
4: अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
7: मुझे जॉब से हटा दिया है।
4: क्या जॉब से हटा दिया, पर क्यों?
7: पता नहीं क्यों।
4: हे भगवान अब हम क्या करेंगे, घर का खर्च और किराया कहाँ से देंगे?
7: तुम चिंता मत करो खुशी, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा।
4: सुनो जी शहर में काम ढूंढना आसान बात नहीं है, मेरी मानो तो एक बात कहूँ।
7: कहो क्या कहना चाहती हो?
4: तुम अपने पिताजी से गांव में अपना हिस्सा मांग लो,

0: उसे बेचकर शहर में अपना कोई काम शुरू कर लो।
1: तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, हिस्सा मांग लो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम पागल हो गई हो क्या?
0: हाँ हाँ, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। जो मैं आपके भले के बारे में सोच रही थी, आपको तो आज भी मुझसे ज्यादा अपने परिवार की चिंता है।
1: ऐसी बात नहीं है खुशी, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। यदि मैं पिताजी से अपना हिस्सा मांग लूंगा तो कल मेरे छोटे भाई बहन उन पर इसका क्या असर होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
2: ऐसे ही कुछ समय बीत गया और सोनू को कहीं पर भी काम ना मिला। इस परेशानी के चलते सोनू की तबीयत खराब रहने लगी और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसके घर की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। ना तो वह घर का खर्च चला पा रहा था, ना ही घर का किराया दे पा रहा था। मकान मालिक बार बार सोनू को घर खाली करने को कहता रहा। यह देखकर खुशी भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसे परिवार की याद आती है और वह रोने लगती है। एक दिन सोनू के पिताजी का फोन आता है और फोन खुशी उठाती है।
0: हेलो, कौन?
3: हेलो खुशी बेटा, मैं सोनू का पापा बोल रहा हूँ।
0: पिताजी, आप? पिताजी।
3: क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना?
0: पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आप लोगों को छोड़कर यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
3: कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही हमारे लिए काफी है। बस अब रोना बंद करो। सुनो बेटा, कल मैं और तेरे चाचा जी शहर आएंगे, तुम अपना सामान बांध के रखना।
2: इस प्रकार वह परिवार भी फिर से एक हो जाता है। श्रोताओं, बड़े बूढ़े हमारे परिवार में बोझ नहीं बल्कि एक मजबूत पेड़ है जिसके सहारे पूरा परिवार एक बना रहता है और परिवारों में खुशियाँ बनी रहती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोता, 8527449955 हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

अपने के साथ बहुत वक्त बाद मुलाकात होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। लगता है कि जो बातें हम करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी कर लें और बहुत सारी बातें करें, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत वक्त बाद किसी से मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये एक दिन या ये कुछ पल का जो समय है ये तो बहुत कम है, पूरा एक दिन रुक कर खूब सारी बातें की जाए, है ना। तो ये मिक्स फीलिंग होती है जब हम किसी से मिलते हैं। और अगर बात करें पहली मुलाकात की, तो उसमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी शर्म होती है, बहुत सारी जो उसमें भी कहते हैं ना कि एक अलग तरह के भाव होते हैं। लेकिन हाँ, जब हम किसी अपने से, किसी खास से मिलते हैं ना, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आपका इंतजार कर रहा है, उसे सुनते हैं और फिर आपसे करते हैं बातें।

वैसे हम सबका नसीब तो बहुत अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें ये खूबसूरत सी ज़िंदगी जो मिली है तोहफे में। लेकिन हाँ, उससे भी अच्छी बात तब हो जाती है जब आपको अपने अच्छे जो आपके करीब होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, वो आपको हिम्मत देते हैं, आपका साथ देते हैं, मुश्किल वक्त में आपको मोटिवेट करते हैं और आपको कहते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो जब आपको ज़िंदगी मिली और उसके बाद ज़िंदगी में खूबसूरत लोग मिलते हैं ना, तो आप अपने आप को अकेला नहीं समझ सकते और आप परेशानी में ज़रूर घेर सकते हैं, क्योंकि सुख दुख जो है वो ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं, लेकिन लेकिन क्योंकि आपके साथ अपने अपनों का यानी ख़ास लोगों का साथ होता है ना, तो आप उस मुश्किल से ना बिल्कुल यूँ निकल के पार हो जाते हैं, है ना। फिलहाल चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस गीत को सुनते हैं।

आपकी खास दोस्त हैं और आप हमारे खास दोस्त हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम जो है वो पसंद आ रहा होगा। और अगर बात करें ज़िंदगी में ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि

आपको कई जगह ना चुप रहकर खामोश होकर भी बहुत जो मुश्किलों के हल है ना वो मिल जाते हैं, और कई बार आप चुप रहकर भी ना किसी की मदद कर पाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अगर आप उसको जवाब नहीं देते हैं और उसको सुन लेते हैं चुपचाप, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जो उसका गुस्सा है ना वो थोड़ी देर में शांत हो जाता है और फिर जो कहते हैं ना कि वो जो एक माहौल बिगड़ने वाला था वो संभल जाता है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वैसे तो ये तरीका होता है कि अगर कोई भी आपस में मतभेद होता है तो बोलना चाहिए, बात करके हल निकलता है, लेकिन कभी कभी अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है या परेशान है तो चुप रह के खामोश रहकर भी मुश्किलों को कम किया जा सकता है।

हम तो चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपसे बात नहीं करेंगे तो कैसे बनेगी बात। अब एक और गीत है जो अब होगा हमारे साथ, चलिए सुन लेते हैं उसे।

जी हाँ, ये गीत है जो होगा हमारे साथ, और फिलहाल इसी गीत को सुनकर आपको क्या लगता है और आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ देर में यानी कि ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद आप 9:00 सुनेंगे अंग्रेज़ी में समाचार। ठीक 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
5: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
6: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक

0: की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: Prime Minister Modi said the government

0: मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। ये कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि यह कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोज़गार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़आल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं।
1: विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोज़गार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोज़गार गारंटी के ज़रिए देही तरक्यात की रफ़्तार में तेज़ी, आमदनी के तहफ़ुज़ की बेहतर ज़मानत और देही कुंबों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बरवक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही VBG रामजी कानून में मुकर्रर वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा सरमा ने मुत्तला किया कि हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और BJP सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वजरा और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमन व कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरीट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें कीं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल हुकूमत के 5 वजीरों में आज मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए। इन वजरा ने 9 मई को वजीर आला सुविंदो अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आज जराए इब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते BSF को अगले 45 दिन के अंदर ज़मीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका TMC हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड मौसू होने के बावजूद ज़रूरी खत्ते आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेरों की कुदरती पनाहगाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज़ के लिए कॉरपोरेट फंडिंग ज़रूरी है। नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ़ुज़ से मुतालिक पहली बैनुल अक्वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ़ुज़ से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद का मकसद शेर, बबर शेर, चीते और बर्फानी तेंदुए समेत इस नस्ल की 7 बड़ी इकसाम का तहफ़ुज़ करना है। पंजाब के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 76 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 21 नगर पंचायतों समेत 105 मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। ये इंतखाब 26 मई को होंगे जबकि वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इन इंतखाबात में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 मई को शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। पर्चों की जाँच पड़ताल 18 मई को होगी जबकि 19 मई तक कागजात नामजद

0: वापस लिए जा सकते हैं। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इंतखाबी कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबात वाली सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनिसिपल कौंसिलों और नगर पंचायतों की हदूद में मिसाली जाब्ता अखलाक फौरी तौर से नाफिजुल अमल हो गया है। आईसीसी की जानिब से आज जारी की गई मर्दों की एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा है। ताहम भारत की दर्जाबंदी में एक पॉइंट की कमी आई है और वो 119 पॉइंट से कम होकर 118 पॉइंट रह गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 2 पॉइंट हासिल करते हुए 113वां मकाम हासिल कर लिया है। इस मामूली गिरावट के बावजूद भारतीय टीम आलमी क्रिकेट में अब भी सरफहरिस्त एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी टीम है और गुज़िश्ता हफ्ते की अपडेट के बाद मर्दों की T20 बैन अल-अक़वामी दर्जाबंदी में भी अपना पहला मकाम बरकरार रखे हुए है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल गर्मी की लहर की हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेगी। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए ज़खीरा मौजूद है। मरकज़ ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BJP लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहाँ इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7116 2371 7106 और 2331444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक बस, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी AC ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती हैं घरों में जो होती हैं, वो दो तरह से लगती हैं मेनली। वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज़ किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पर ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब

0: 60-70% का लोअर आ
1: कम हो
0: जाएगा।
1: जाएंगे।
0: आप कोई भी इक्विपमेंट को आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएंगे,
1: जी
0: तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल ज़रूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
1: अप्रैल
0: हुआ
1: मई के महीने में
0: जी
1: बहुत लगती है।
0: आग लगी, और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी।
1: जी
0: उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग
1: जी
0: लगने वाली है।
1: जी शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
1: जी
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है।
1: प्रशांत जी,
3: जी
1: जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कम्बस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ़ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें अब एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-60 70-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट
1: जी
4: में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार
3: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
0: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यू एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी। तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज़ कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग ख़राब हो चुकी है, आपका लोड ज़्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज़ कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीज़ों पर देना है, ना कि सबके 60 AC चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि AC का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि AC अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
0: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप AC को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने AC सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका AC ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाज़ा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और AC कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट AC होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार, रमाशंकर वाजपेयी जी नमस्कार। आपका सवाल जो है, बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है AC में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत ज़रूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहाँ रहते हैं, उनको ये चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहाँ जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम दो एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो, और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, DFS दिल्ली फायर सर्विस या कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है, और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
3: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
6: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
6: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूँगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: उस धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
6: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं। प्रशांत
6: नहीं, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
6: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हज़ारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
0: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिक सिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है वो बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24

0: घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है।
1: जी
0: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं। तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो है
1: जी,
0: इंस्पेक्शन करेगी।
1: जिस चीजें फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी
0: जी
1: देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार,
2: हाँ,
1: स्वागत है।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल
2: हाँ,
1: पूछिए।
2: सर नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी, भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील सीहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से।
1: जी
3: नमस्कार विजय।
2: हाँ
3: जी।
2: सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहाँ से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी, फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमिजिएटली फ़ोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं,
3: जी
1: सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
3: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीज़ें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से।
1: जी
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो समझे पानी की कमी है आजू बाजू में, कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब ये मेरा प्रश्न।
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहाँ दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
3: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहाँ पे जो जलने की चीज़ें जितनी ज़्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहाँ से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहाँ, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए।

0: और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर कहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: लवली जी नमस्कार,
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं, और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर हैं, आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
3: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है और लीकेज नहीं है तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जा के उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज़। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है, कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
3: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता है, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेडर, मान लीजिए वो 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
3: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैं एक और चीज़, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: आरडब्ल्यूजे हो या कुछ भी,
0: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है पानीपत से, हैं ये शैलेंद्र शेंदुड़ कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकें? सीएनजी की भी हम बात करें तो सीएनजी वाहनों में बहुत आग लग रही है।
0: या इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफ़ी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी

0: आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से
1: गाड़ी
0: निकल
1: से
0: जाना
1: बाहर
0: है,
1: निकलना
0: और
1: है।
0: उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो
1: जी
0: वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है, और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और
1: जी
0: उसके
1: जी
0: उसमें उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है, कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना ज़रूरी है।
1: प्रमोद हैं जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद
2: जी
1: नमस्कार, स्वागत
2: हाँ
1: है।
2: जी नमस्कार, मैं जयपुर
1: जी
2: से बोल रहा
1: जी
2: हूँ।
1: जल्दी से
2: मेरा
1: सवाल
2: निवेदन
1: पूछिए।
2: ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो
1: जी
2: कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिसेज वगैरह हैं, या मतलब शटडाउन करके वो वहां से निकले, आप
0: जी
2: प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर अगेल आप टेम्परेचर बताएं जैसे
1: जी जी हम
2: प्लीज।
1: जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज़्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी एलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा मेजर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर 1।
1: जी
3: नंबर 2, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका
1: जी
3: हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है 1-2 घंटे बाद
1: जी
3: उसको बंद करना है,
1: अतुल
3: तभी
1: जी और
3: जाके
1: प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय
3: समय
1: बहुत
3: होगा।
1: दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
3: नमस्ते।
0: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
5: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
4: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का भी आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का 4था सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।

0: असम में कल हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। SBI की मई 2026 की शोध रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में GDP वृद्धि दर 7.5% रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं और क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक रात में गर्मी रहने की आशंका है। वहीं IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 211 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 32 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे कॉल्ड अपॉन द सिटीजन्स टू यूनाइट टू ईज बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, terming the West Asia conflict one of the decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas, and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster countries' readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ram Mohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. The centre has notified the implementation of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, that is Viksit Bharat GRAMGI. The act will be rolled out nationwide from the 1st of July this year. The Rural Development Ministry said

श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसके अंतर्गत आज आपने सुनी चंद खूबसूरत सी कवालियाँ। कलाकार थे साइम निज़ामी और साथी कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोता, आइए अब सुनते हैं राग रंजन कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज लेकर आए हम ध्रुपद पर बजाया राग जोग। कलाकार हैं भव्या सारस्वत। आइए सुनते हैं ये रचना।

0: राग रंजन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना ध्रुपद में गाया राग जोग, कलाकार रही भव्या सारस्वत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ ही पलों में होंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगरपालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

है मेरे हमसफर। बहुत ही खूबसूरत से इस गीत के साथ हमने कार्यक्रम का आगाज किया। आप सभी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वंदना, और संदेशे जो है मेरे पास इतने सारे और इतने बेशुमार हैं कि मैं क्या बताऊं और किस किस को लूं, किस किस को छोड़ूं, क्योंकि जैसे ही 11-10 के बाद जो ये स्थिति आती है तो कभी कभी धर्म संकट की भी बन जाती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बेशुमार संदेश। चलिए कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना हो सके उन्हें शामिल करूँ। हरजिंदर शिंदे हमारे साथ हैं, अक्रम हुसैन हमें सुन रहे हैं, यासीन अंजन है, ताज मोहम्मद है, सतीश अनेजा साहब भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंकर लाल जायसवाल हैं, राजकुमार धोंदी है, गगनदीप है, सुदर्शन शाह हैं, पणजी नवहानकर साहब हैं, रास क्रिएशन की तरफ से भी संदेश आया है, और सबसे प्यारे संदेश है वो जो कह रहे हैं कि आप कोई भी गीत सुना दीजिए, हमारा नाम ले लीजिए। भाई बहुत ही खूब, और आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो गीत के और संगीत के मामले में आपको निराश बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सुनील पाठक जी हैं हमारे साथ, अहमद फूल वाले हैं, और आर कुमार हैं, स्वीटी हमें सुन रही हैं, बसंत कुमार सिन्हा हैं, राजपाल शर्मा, अब्दुल गफ्फार, और साथ में है फगु राम यादव, और बहुत सारे संदेश और भी आ रहे हैं जिन्हें शामिल करते चलेंगे। और जैसा कि कहा आप

सभी ने कि आपका जो गीतों का दारोमदार है वो मुझ पर छोड़ा है। तो भाई मेरे लिए तो ये जो मौसम है या जो वक्त है ये बहुत बहुत सुहावना हो गया।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हा? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

संदेशों को पढ़ने का सिलसिला भी अभी बाकी है। और देखिए, बहुत सारे संदेश मेरे पास इसी बीच और आ गए हैं। राजेश वर्मा साहब इस समय हमें सुन रहे हैं, गीतांजलि हमें सुन रही है, टीडी मल्होत्रा साहब भी हमें सुन रहे हैं, साथ में हैं ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह, पूनम गंगेजा हैं, राहुल कुमार रवि, हाजी मंजर साहब हैं, नवी हसन हैं, रश्मि भी चाय के साथ वंदना सखी स्वागत करें। भाई रश्मि, गुजरात से तुम्हारी चाय आती है ना, तो आधी थकान तो मुझे लगता है फिर दूर हो जाती है। किशन सपकाल साहब हमें सुन रहे हैं, रियासत हुसैन हैं हमारे साथ, नारायण खर्चे हैं और साथ में हैं हमारे बहुत सारे साथी, कल्पना झा है। और फिर से मैं गुजारिश करूंगी दोस्तों कि एक संदेश आपका हमारी बेशकीमती है, तो अगर बहुत तादाद में आप भेज देते हैं ना, तो कुछ और दोस्त हैं हमारे जिनका संदेशा पढ़ने से हम वंचित रह जाते हैं, फिर उनके कोपभाजन का शिकार भी बन जाते हैं। रामेश्वर साहब इसी बीच हमारे साथ हैं और मुकेश भट्टा साहब ने हमें ट्यून करके सुना है, और अररिया कॉलेज से भी हमारे कुछ साथी हमें सुन रहे हैं, आमिर हुसैन साहब हमें सुन रहे हैं, अश्विनी चुग हैं और साथ हैं हाजी मंजर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यूं ही बने रहे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि गानों की आज बागडोर आपने मेरे हवाले की है, तो चलिए एक और खूबसूरत संगीत वीर जारा से आप सभी के नाम।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वंदना। और इसी बीच हमें ज्वाइन किया है अरुण कुमार पांडे ने और साथ है हमारे नवी हुसैन साहब जिनका संदेश हम तक आया है लेकिन कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई, आपने हमारा मैसेज नहीं लिया। तो नवी साहब ये लीजिए, आपकी शिकायत भी हमने दूर की। और जैसा कि मैंने कहा कि कई बार इतने ज़्यादा संदेश आ जाते हैं कि वो कहते हैं ना आपस में ही मिलजुल गए, घुल गए या फिर कहीं सफल हो गए, तो वो संदेश हम तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे सभी साथी दोस्तों के जो प्यारे प्यारे से संदेशें हैं वो हम इस कार्यक्रम में शामिल करें। आइए एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम जो है समापन की ओर आ गया है। और आप सभी को बताएं, इसी बीच हमारे साथ हाजी मंजर साहब, दारा सिंह और दिलावर खां भी जुड़े रहे और 12:10 पर कार्यक्रम होगा शुरू का सफ़रनामा। चाहेंगे आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, बरकरार रहें और इसी के साथ अपने प्यारे प्यारे से संदेश हमारे सभी जो हमारे प्रोग्राम के कार्य करने वाले हैं उन सभी तक अपने संदेश भेजते रहें। तो चलिए आज की सभा को हम यही संपन्न करते हैं। आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को है इन मीटरों पर। अब हमारी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 4:50 पर एक बार फिर से आप सभी की सेवा में हम उपस्थित होंगे, परंतु AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगसामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की शहरी बेरोजगारी दर इस वर्ष की जनवरी से मार्च तिमाही में घटकर 6.6% हो गई। इससे पिछली तिमाही में ये दर 6.7% थी। अमेरिका के राष्ट्रपति

0: was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc and Madhav Tiwari scabbed 2 wickets each. Madhav Tiwari was adjudged player of the match. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
1: AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर आप सभी का स्वागत है और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चुका है रात के 12:10। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ और ये जो वक्त होता है वो होता है कार्यक्रम सुरों के सफ़रनामा का। आज का सुरों का सफ़रनामा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के सुरों का सफ़रनामा में हम बात करेंगे उस मशहूर संगीतकार जोड़ी की जिसने 90 के दशक में रोमांस को संगीत के जरिए एक नई और बुलंद पहचान दी, जिनके गीतों ने सुरों की सादगी को समेटे रखा और दिल को छू लेने वाली गहराई को भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार जतिन और ललित की। तो आज का सुरों का सफ़रनामा आधारित है संगीतकार जतिन ललित को।

दोस्तों, आज के सुरों का सफ़रनामा में हम बात कर रहे हैं उस मशहूर संगीतकार जोड़ी की जिसका नाम है जतिन और ललित। जतिन ललित दोनों ही मेवाती भाई घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनके चाचा पंडित जसराज जी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकार थे। अगर उनके परिवार में और लोगों की बात की जाए तो उनकी बहन सुलक्षणा और विजयता पंडित भी मशहूर गायिकाएं थीं और साथ ही साथ अभिनेत्री भी रहीं, यानी कि संगीत इन्हें विरासत में मिला था।

आज की सुरों के सफ़रनामा में हम बात कर रहे हैं उस मशहूर जोड़ी की जिसे संगीत विरासत में मिला था। जी हाँ, ये वो जोड़ी थी जिसने यारा सीली सीली से लेकर मुझसे दोस्ती करोगी तक हमें झूमने पर मजबूर कर दिया। दिग्गज संगीतकार जोड़ी हुसन लाल भगत राम के परिवार से ताल्लुक रखने वाली थी और इन दोनों भाइयों ने बॉलीवुड को वो धुनें दी, वो फनकार दी कि आज भी हर आशिक की प्लेलिस्ट में इनके गाने टॉप पर बजते हैं।

हाँ दोस्तों, हमें भी कुछ कुछ होता है जब हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे श्रोता देश दुनिया के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात हमसे साझा करते हैं। टी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से और पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, ये सभी हमारे साथ कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में जुड़े हुए हैं और इन्होंने किसी भी गीत की फरमाइश की है। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि आज का जो सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम आधारित है, वो आधारित है संगीतकार जतिन और ललित की जोड़ी पर। बात करें जतिन ललित की, तो इनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत फिल्म यारा दिलदारा से, ये फिल्म 1991 में आई थी, उससे शुरू हुई थी। इसका गाना बिन तेरे सनम आज भी रिमिक्स की दुनिया में

समझ आता है। लेकिन अगर इनकी पहचान की बात की जाए कि इस संगीतकार जोड़ी को पहचान किस गीत से मिली, किस फिल्म से मिली, तो 1992 में आई थी फिल्म जो जीता वही सिकंदर। और जो अगला गीत है इसी फिल्म का है। इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक को और जुड़े रहिए हमारे साथ एआई लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल पर। आज है आपके साथ आपकी अपनी दोस्त सरिता।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन और ललित की। आपको मैं यहाँ याद दिला दूं कि पहला नशा पहला खुमार, जी हाँ, बॉलीवुड का ये पहला ऐसा गाना है जिसे पूरी तरह से स्लो मोशन में शूट किया गया। इसकी धुन ने जतिन और ललित को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था।

दोस्तों, जब हम बात करते हैं 90 के दशक की, और 90 के दशक में हो अगर रोमांस की बातें, तो शाहरुख खान के गानों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जी हाँ, ये वो फिल्म थी जिसका संगीत इतना खूबसूरत था कि उस संगीत ने इतिहास रच दिया। आनंद बख्शी साहब के बोल और जतिन ललित का खूबसूरत संगीत का समागम था ये दिलवाले दुल्हनिया फिल्म का संगीत। दोनों ने तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने को कालजयी बना दिया, और इस जोड़ी ने कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, यस बॉस और भी बहुत सारी फिल्में हैं। इन फिल्मों में शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस बनाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम आपको बता दें कि शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट्स जो जोड़ी थी वो इसी जोड़ी ने दिए थे म्यूजिकल हिट्स, और शाहरुख खान खुद मानते हैं कि जतिन और ललित की धुनें हो और उनकी एक्टिंग हो और ये जो जोड़ी है उनकी एक्टिंग की और उनके संगीत की खूबसूरत रोमांटिक समावान देती है। और आदित्य चोपड़ा को संगीत के लिए ऐसी धुन चाहिए थी जो भारतीय भी हो और मॉडर्न भी दिखे, तब जाना सनम की धुन, जी हाँ, ललित जी ने तैयार की। और इसे सुनकर यश चोपड़ा जी ने तुरंत हाँ कर दी। तो अगला जो गीत है वो फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ही है, और खूबसूरत गीत है। इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कीजिए, और गीत के उस पार हम एक बार फिर बात करेंगे संगीतकार जोड़ी जतिन और ललित की। और दोस्तों, आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने ईमेल, अपने संदेशों के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, हम यहाँ पर पलक पावड़े बिछा कर बैठे हैं, आपके मेल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रेजेंस हमें, जी हाँ, ज़रूर दर्शाइए। फिलहाल अगला म्यूजिकल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: आज के सुरों के सफ़रनामा में जतिन ललित के संगीत की बात हो रही है तो उनके संगीत की खासियत थी उनकी सादगी। उन्होंने भारी भरकम वाद्य यंत्रों की जगह धुन और गायकी को ज़्यादा महत्व दिया। उदित नारायण हो, कुमार सानू हो या फिर हो अलका याग्निक की आवाज़, उन्होंने जिस तरह से इन आवाज़ों को तराशा वो काबिले तारीफ था। जतिन जी ने हमेशा कहा कि संगीत दिल से निकलना चाहिए, शोर से नहीं।
1: जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

दोस्तों, जतिन ललित को सिर्फ रोमांटिक गाने के लिए ही हम नहीं जानते थे, लेकिन हम आपको बता दें कि सरफरोश जैसी फिल्म में उन्होंने गजलनुमा संगीत भी दिया। ये संगीत सुनकर सब चौंक गए।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, जतिन ललित की जोड़ी ने न सिर्फ नए गायकों के साथ काम किया, बल्कि जो नई प्रतिभाएं थीं, उनको भी अपने संगीत में गाने का पूरा मौका दिया। क्या आप जानते हैं, उस समय संगीत की दुनिया, जो संगीत की दुनिया थी, उसमें नई नई गायिकाएं थी। सुनिधि चौहान, अपना पहला फिल्मी गीत लड़की दीवानी देखो, जी हाँ, फिल्म शास्त्र का गीत इन्हीं के लिए गाया था। जतिन ललित को लगातार 11 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि उन्हें कभी ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन करोड़ों दिल पर राज किया उनके संगीत ने, और ये प्यार किसी अवार्ड से कम नहीं। वक्त बदला, संगीत बदला, लेकिन जतिन ललित की का जो जादू था वो लगातार चलता रहा और फिलहाल भी बरकरार है। जतिन ललित के धुनों का जादू। और फिलहाल अगला म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय कीजिए।

तो हम बात कर रहे थे आपके ईमेल्स की, तो जल्दी जल्दी आपका ईमेल लिए लेते हैं। जो अगला मेल हम तक पहुंचा है, श्रोता का नाम है उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और संपूर्ण पाल परिवार, ये हम तक अपना ईमेल पहुंचा रहा है। ग्राम रजौनी, ज़िला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने सादर नमस्कार किया है और किसी भी गीत में शामिल करने को कहा है। तो लीजिए जनाब, हमने आपको अपने गीत में शामिल कर लिया, अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया। और जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारी स्टूडियो की घड़ी अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है और हम बात कर रहे हैं आज संगीतकार जोड़ी जतिन ललित की। तो सन 2006 में फिल्म आई थी फना, इस फिल्म के साथ इस महान जोड़ी ने अपने रास्ते अलग कर दिए, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो गीत लिखा वो हर दिल के लिए यादगार बन गया। भले ही आज ये जोड़ी एक साथ नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी हर संगीत प्रेमी के कानों में मिश्री घोलती है। और जो इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है वो फिल्म फना से ही है। इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीत को।

आज का सुरों का सफ़रनामा इसी खूबसूरत गीत के साथ यहीं संपन्न होता है। और फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर किसी दिन फिर किसी मोड पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल के साथ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को हैं।

0: अब पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यात्रा के दौरान व्यापार वार्ताओं में भी तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच श्री ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से भेजा गया नवीनतम प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए।

ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा का। आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आनंद लीजिए खूबसूरत गीतों का। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम है आंधी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और जो अगला गीत है फिल्म का नाम है आ पाए बाहर आई। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी की और गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आंचल और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। संगीत दिया है सी रामचंद्रा ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर, गौरी शंकर और यूनुस की। संगीतकार हैं मानस मुखर्जी।

0: अरे एक तरकीब याद आई।
1: क्या?
0: अरे जल्दी बोल भाई। ये कैसी रहेगी, अरे बन जाए जो डाकू। ये कैसी रहेगी, बन

0: बोले अपने नाम सारी तुम लिख दो अब रकम।
1: Let us discuss.
2: चुप।

0: ऐसी हसीना चाचा जिसको देखे और तौबा तोड़ दे। फिर ओ कैसी बहना ये चाचा मस्ताना दुनिया ही छोड़ दे।
1: He is right.
2: अरे भाई माजरा क्या है?
0: ये चाचा को ठीक करने की दवा है।
2: अरे इसे लेकर तो सुस्त भी चुस्त हो जाता है,
0: यानी मस्ती में आ जाता है।
1: अच्छा
2: हम भी शामिल।

इस गीत के साथ लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म आपके दीवाने से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है आपकी कसम। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इस खूबसूरत से गीत के बाद लीजिए सुनते हैं एक और गीत फिल्म कल आज और कल से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो
0: नाना,
1: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: दोस्तों गीत सुने रहे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता और आवाज़ें हैं एस जानकी और मोहम्मद अजीज़ की। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, one, two, three, four.

गीत सुनहरे कार्यक्रम का अगला गीत पेश है। फिल्म का नाम है राजा और रंक, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की हैं। और इसी खूबसूरत से गीत के साथ फ़िलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। यह आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु आने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नागरिकों और विदेशी नागरिकों से कानून का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने ये अपील ऐसे समय की है जब सरकार अवैध प्रवासन को रोकने के प्रयास तेज कर रही है। अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में रामाफोसा ने देश के कुछ हिस्सों में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हालिया हिंसक प्रदर्शनों और आपराधिक घटनाओं की निंदा की। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the

श्रोताओं, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर किसी दिन फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और यूं ही जुड़े रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 1-2 दिन में वर्षा हो सकती है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of the decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की

एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के अवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं?

0: आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात के 4:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना। स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में टीके रंगाचारी का गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। 5:10 पर एक कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसमें आज आप उष्ट्रासन और योग से संतुलित जीवन कैसे पाएं इसके बारे में जानेंगे। 5:20 पर देशभक्ति फिल्मों से गीत सुनेंगे और 5:30 पर कार्यक्रम होगा स्वर मंजरी का। सुबह 6:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे हम कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में होंगे आज रहीम के विचार। सुबह 6:45 पर श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ होगा और 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे। श्रोताओं, हम आपके लिए 7:10 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर गीतों भरी कहानी फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम होगा और सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे और 8:45 पर स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। श्रोताओं, सुबह के 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। साथ ही स्थायी शांति बहाल होने की संभावना भी धूमिल हो गई है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया और ये $105 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई। सऊदी अरब ने भी कहा कि अमरीका ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। उसने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुलने के बाद भी तेल की वैश्विक कीमतें 2027 तक स्थिर नहीं होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। In Assam, the stage is set for the swearing-in of Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term today. Preparations at the Veterinary College ground in Khanapada, Guwahati for the historic political event are almost complete. Caretaker Chief Minister and Chief Minister-designate Dr. Himanta Biswa Sarma has yesterday visited the venue and took stock of the preparations underway. Later, speaking to the media, Dr. Sarma informed that Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nabin will attend the swearing-in ceremony today. He added that several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states will also attend the event. Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of a decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप

विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे पोस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो डीएनए है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस तीन नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना। और अभी उल्टा हो गया है, अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ में घर जाना ही रोके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़े, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लें कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, फिर चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा है या कितना देसी डब्बा है, हटा दे, रिप्लेस कर दे गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी है। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न करने, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं खाऊं कि ना खाऊं, है ना। और अगर मन में आ रहा है, दुविधा है खाऊं कि ना खाऊं, तो बिल्कुल मत खाओ,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये रूल याद रखना है, खाऊं कि ना खाऊं बिल्कुल मत खाओ, जाऊं कि ना जाऊं यानी फ्रेश होने तो जरूर जाओ। ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट और बिल्कुल पतली सी कमर। तो हम बस ऐसा भोजन ही करें कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और छोटा सा डिनर। लेकिन अभी हम उल्टा करने लगे, हम भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम ऑफिस में लंच करते हैं थोड़ा ज्यादा सा, और घर आके बहुत, इसीलिए अब हमारी बॉडी की शेप उल्टा भी बनती जा रही है ना, पेट तो इतने बड़े बड़े हो और अपर बॉडी आपकी कम हो, तो बस वी शेप भोजन करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ रहेंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24 7 चैनल है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रजनी में प्रतिमा चौधरी का राग बैरागी में सितार वादन।